मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्य

0: सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से

बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, और आराधना के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं ईश्वर वंदन के साथ, ईश्वर के सिमरन के साथ। कहते हैं प्रार्थना के साथ अगर दिन की शुरुआत होती है तो दिन बहुत ही अच्छा बीतता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईश्वर की प्रार्थना का अर्थ है जगत नियंता से अपने विकास की याचना करना, अपनी कमियों की पूर्ति की याचना करना। हम अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर कई दुर्बलताएं हैं, कई कमियां हैं। हम अनुभव ये भी करते हैं कि उनकी पूर्ति सर्वथा हमारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी पूर्ति होती हुई लेकिन हम देखते हैं, और जब ये देखते हैं तो अनायास ही हमें उसकी शक्ति का स्मरण होता है, हमें उसकी शक्ति का आभास होता है, उसके होने का आभास होता है, और उसी अदृश्य शक्ति का नाम है ईश्वर। तो आइए दिन की शुरुआत ईश्वर की आराधना, सिमरन और समर्पण के साथ।

ईश्वर की प्रार्थना करने जब भी बैठें तो मन में ये ज़रूर कहें एक बार कि हे ईश्वर, अपनी कृपा इतनी बनाए रखना कि मेरे मन से आपका सिमरन कभी भी ना छूटे, क्योंकि वो ईश्वर अदृश्य शक्ति है और अपने भक्तों की परीक्षा लेता है, और परीक्षा इतनी ही लेता है, कष्ट इतनी ही देता है कि हम उसमें पास हो जाएं, हम उसमें उबर जाएं, क्योंकि कभी कभी वो परीक्षाएं हमारी प्रारब्ध का फल होती हैं, तो कभी कभी संचित कर्मों का भी फल होती हैं, और उनसे निकलने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है इन दुखों को झेलना, इन दुखों से मुक्ति पाना। और अगर ये मन में विश्वास है कि वो परमात्मा सदैव हमारे साथ है, वो हमारी रक्षा सदैव करेगा, तो आप यकीन जानिए कि मुश्किल वक्त में मन में धीरे से आवाज़ आएगी जो कहेगी सब अच्छा होगा, और यही आवाज़ परमेश्वर की होती है, और वो परमेश्वर की आवाज़ हमें तभी सुनाई पड़ती है जब हमारे

हमारे अंदर उनका सिमरन सदैव बना रहता है। तो हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना कि हम किसी भी पल उनका सिमरन न भूलें, उनका स्मरण न भूलें और उनके अंदर अपना समर्पण बनाए रखें।

देखिए ना, इस भजन ने भी हमारी बात को समर्थन दिया और ईश्वर का नाम लेकर के उसकी शक्ति को आंका नहीं जा सकता है। उसका नाम ही लेना अपने आप में सभी दुखों को पार करने का रास्ता होता है। और कोई भी समस्या संसार में ऐसी नहीं जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। आपके मन में अगर ईश्वर का सिमरन है तो वो सिमरन आपको हर समस्या से बाहर निकालेगा। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और ईश्वर का अंश हर जीव के अंदर वास होता है और वो ईश्वर अपनी शक्ति का एहसास कराता है। वो शक्ति उसके नाम सिमरन में होती है। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, और हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग में अगर हम नाम का सिमरन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें अपने अंदर शक्ति का एहसास होता है, अपने अंदर आत्मविश्वास का एहसास होता है और अपने अंदर हर दुख से निकलने की शक्ति का भी एहसास होता है।

0: जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक और भक्ति रचना कार्यक्रम के अंत में, इस भाव के साथ कि अगर मन में सिमरन है, विश्वास है, समर्पण है, तो हमारा ईश्वर सदैव हमारे साथ है, सदैव हमारी शक्ति है, सदैव हमारी ताकत है।

0: जी हाँ, मन के अंधकार रूपी जमुना नदी के किनारे जो ईश्वर की मुरली बाजती है वो भक्ति की मुरली है और कहती है कि कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति। तो ईश्वरीय गुणों कर्तव्य, प्रेम, सेवा और सत्य को अपनाएं और ईश्वर की भक्ति को अपनाएं। इसी के साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है विचार बिंदु। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय के विचार।
1: हमारे समक्ष एवं इर्द गिर्द जो भी

0: वस्तु है, वो ईश्वर के अस्तित्व का ढिंढोरा पीटती है। ईश्वर संसार की प्रत्येक वस्तु में है। संसार में वही वास्तविक सत्य है, उससे परिचित होना जीवन का सर्वोच्च सुख है। दूसरों के साथ आप ऐसा व्यवहार न करें जो कि आप दूसरों को अपने प्रति करने देना नहीं चाहते। आप निद्रा त्याग कर उठ खड़े हों और साहस के साथ अपने कामों में जुट जाएं, हृदय में ये दृढ़ विश्वास रखते हुए कि हमें अपने प्रयास में विजय अवश्य प्राप्त होगी। अपनी इच्छा से बिना किसी प्रकार के बंधन व स्वार्थ के दीन दुखी प्राणी की सेवा करना, इससे परे क्या यज्ञ है, क्या तप है, क्या दान है, क्या सुख है। असहाय प्यासे को पानी, भूखे को अन्न, शीत से सताए हुए को वस्त्र देना, जले हुए के घाव पर मलहम लगाना, डूबते को बचा लेना, जिसके घर में आग लगी हो उसके घर की आग बुझाना, उसके प्राणियों को आग से बचा लेना, रोगी को औषध देकर रोग की पीड़ा से छुटा देना, अंधों को सहायता देना, अनाथ बच्चों और विधवाओं के माता पिता भाई बनना, मेलों में निराश बिछड़े हुए को मिलाकर उन्हें नया प्राण देना, जो अजान अकिंचन प्राणी विदेशों में अकेले लुट गए हों उनको सहायता देकर उनके घर पहुंचाना, ठग लुटेरों और अन्यायियों से सताए जाने वालों का रक्षक होना, सेवा करना, इससे पवित्र और क्या मार्ग हो सकता है। देशभक्ति का संचार हमारे हृदय से स्वार्थ को निकाल कर फेंक देगा। हम अदूरदर्शी, स्वार्थी और खुशामदियों की तरह ऐसे कार्य कदापि न करेंगे जिनसे कि देशवासियों को हानि पहुंचे, बल्कि दूरदर्शी, परमार्थी, सत्यशील और दृढ़ता प्रिय आत्माओं की भांति असंख्य कष्ट उठाते हुए भी वही करेंगे जिसमें देश का भला हो। निर्धन धनवान, निर्बल और मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाएं, प्रत्येक प्रकार के सामाजिक दुख मिटें और दुर्भिक्ष आदि विपत्तियां दूर होकर लाखों बिलबिलाती हुई आत्माओं को सुख पहुंचे। देशभक्ति द्वारा इतने धर्मों का संपादन होता हुआ देखकर भी यदि कोई धर्म के आगे देशभक्ति को कुछ नहीं समझता, उस पुरुष को जान लीजिए कि वो धर्म के तत्व ही कोई नहीं पहचानता। इस विचित्र सृष्टि का वैभव एक परमात्मा दिखा रहा है। वो सब करता हुआ दृष्टा है, खुद ही सब देखता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कैलाश पर और समुद्र के गंभीर तल में उसकी लीला का नृत्य होता रहता है। वो गर्भ में बच्चे की रक्षा करता हुआ पालन करता है, वो उसकी रचना करता है, शरीर के भिन्न भिन्न अंग बनाता है और उनको सुंदर रचकर दिव्य रूप में प्रकट कर देता है। कैसा सुंदर बालक पैदा होता है कि उसकी बनावट देख आश्चर्य होने लगता है। उसके कैसे छोटे छोटे अंग प्रत्यंग बनते रहते हैं। उस कारीगर की रचना अनोखी है। वो अंतर जगत में जैसा कार्य करता रहता है, वैसा ही बाह्य जगत में भी करने लगता है। कभी प्रातःकाल की शोभा, कभी संध्या काल की लालिमा, कभी इंद्रधनुष और मेघाच्छन्न आकाश, कभी शरद पूर्णिमा की शांति, उसकी ज्योति सूर्य की किरणों के रूप में, चंद्र की चांदनी में, पुष्प की सुगंध में और भिन्न भिन्न पदार्थों के स्वरूप में दृष्टिगोचर होती रहती है। जब कोई भारी सहायता कर देता है तो हम उसके आभार को मानते हैं, उसके कृतज्ञ होते हैं और धन्यवाद देते हैं। तब जिस प्रभु ने हमारे जीवन के लिए सब कुछ दिया है, सुंदर शरीर, दिव्य रूप दिया, उसका उपकार मानना चाहिए या नहीं?
1: अभी आप सुन रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय की विचार। इसके साथ ही विचार बिंदु कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर जय प्रकाश यादव से सुरेश कुमार की बातचीत, इस मौसम में पशुओं की बीमारी और उनसे बचाव।
1: किसान भैया बहनी हैं, पशुपालन करत हैं तो ये देखा जात बा कि तरह तरह के रोग बिरामी घेर लेते हैं जौने से बड़ा नुकसान हो जाते हैं। तो विशेष तौर से इस मौसम में पशुओं की बीमारी एवं बचाव खातिर हमार किसान भैया बहनी हैं कौन बातन का ध्यान रखें, इस विषय पर आज अपने बीच डॉक्टर जय प्रकाश यादव भैया आए हैं। हम आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और हम आपसे पहले ये जानना चाहे थे कि गर्मियों में होए वाली जौन विशेष तौर से जौन बीमारी होते पशुओं में, ये पशुओं का रोकथाम बदे हमारे किसान भैया बहनी हरिन कौन कौन बातन का ध्यान रखें।
2: जैसे किसान भाइयों, आप लोग अपने घर में पशुपालन करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, अगर उनको अच्छे से रख रखाव से आप अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं। हाँ। लेकिन रख रखाव में गड़बड़ी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिनमें पहली बीमारी अक्सर ऐसे देखने को मिलता है कि किसान भाई गर्मी में ध्यान नहीं देते हैं और अपने पशुओं को ऐसे धूप में बांध देते हैं जिससे उनमें डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी की समस्या आ जाती है। उसके अलावा हीट स्ट्रोक की समस्या होती है जिससे पशुओं में धंसी हुई आंखें लक्षण दिखाई देते हैं, पीले गाढ़े पेशाब, उसके अलावा बुखार आ जाता है। तो किसान भाइयों, सबसे अगर पशु को आपको स्वस्थ रखना है तो तीन मुख्य बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला है खान पान की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए।
1: अच्छा।
2: और पशुओं को रखने के लिए उचित आवास, उसके अलावा अच्छी रख रखाव से आप अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: यानी पौधा अपने जो है पशुओं का पेड़ पौधों के बीच में आए छप्पर के बीच में नीचे रखें ताकि उनका गर्मी का प्रभाव न पड़े और अपन पशु बच बचाव से रह सकें। भैया साथ ही साथ हम यह देखे थे कि अपने पशुओं में जैसे कि छुटवार पशु हैं तो तरह तरह के रोग जो उन्हें लग जाते हैं तो बड़ी समस्या आ जाते हैं, अपन पशु कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसे दशा में हमारे किसान भैया बहनी हरिन कौन कौन बातन का ध्यान रखें।
2: एक दूसरी समस्या होती है जो छोटे जानवरों जैसे बछड़े बछड़ियों में वो एक दस्त की समस्या होती है।
1: हाँ।
2: वो दो तरह की होती है, एक संक्रमण के द्वारा होती है जो कि जीवाणु विषाणु और परजीवी के द्वारा होती है।
1: अच्छा।
2: दूसरी समस्या होती है जो छोटे जानवरों के रख रखाव में उनको ध्यान न देना, उनकी गड़बड़ी से होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उनको सबसे महत्वपूर्ण है माँ का पहला दूध अच्छी तरह पिलाएं, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। जन्म के बाद 2 घंटे के पहले ही बच्चों को पिलाना चाहिए। उस दूध में बहुत सारी एंटीबॉडीज और ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बछड़ों को रोग से मुक्ति दिलाने में बहुत कारगर होती हैं। लापरवाही करते हैं दूध को पिलाने में तो बछड़ों की वृद्धि में रुकावट आ जाती है और इतनी ग्रोथ उनकी अच्छी से नहीं होती है।
1: हाँ। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब, हम आपसे एक बात और ही जानना चाहते हैं कि जैसे कि गर्मी के मौसम बा और धीरे धीरे आगे चल के बरसात के भी मौसम आवे वाला बा, तो किसान भैयान का ये देखा थे कि जैसे कि अपने गाय भैंस में हैं कौनों के खुरपका रोग हो जाते हैं, मुँहपका रोग हो जाते हैं, तो ऐसे दशा में हमारे किसान भैया बहनी हरिन ये रोग से बच बचाव खातिर पहले कौन कौन उपाय करें ध्यान दें।
2: जैसे किसान भाई, जैसे जैसे गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है तो बरसात के मौसम में अक्सर देखने को मिलता है कि जानवरों का प्रतिरक्षा तंत्र जो उनको रोग से लड़ने के लिए ज़रूरी होता है वह कमज़ोर हो जाता है।
1: हाँ।
2: तो हमको बरसात के पहले ही कुछ मुख्य रोग हैं जिनका टीकाकरण कराना बहुत ज़रूरी है। इस टीकाकरण से पशुओं में रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है।
1: हाँ।
2: उसमें मुख्य जो रोग का टीका लगता है उसमें है गलघोटू, जिसे हम हिमरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं, गिल्टी रोग है, उसके अलावा मुंह या खुर पका जिसे FMD हम कहते हैं।
1: हाँ।
2: उसके अलावा ब्लैक क्वार्टर और थाइलेरियोसिस का मुख्य रूप से टीका दिया जाता है।

0: जी
1: बरसात के पहले।
0: हाँ, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे किसान भैया बहनी हरनी टीकाकरण के लिए अपन सरकार की तरफ से कोनो मदद मिलत बा, सहयोग होत है, तो ऐसे दशा में जोन जानकारी हुई बता में।
1: इसे आप आसपास के जो पशु चिकित्सक हैं
0: जी
1: उनसे आप संपर्क करके, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं उनसे आप संपर्क करके उनसे सलाह ले सकते हैं।
0: हाँ
1: और टीके मुफ्त में भी आपके सरकारी हॉस्पिटल में रहते हैं, आप अपने आसपास के पशु चिकित्सक से संपर्क करके उनको उचित समय पर बरसात के पहले टीकाकरण आप करवा सकते हैं।
0: अच्छा, साथ ही साथ हम आपसे और जानना चाहते कि किसान भैया बहनी हैं अपन, और एक ही पहले और कौन कौन बातन का ध्यान रखें कि जरूरी बा, ताकि ये बीमारी से पहले बच बचाव बना रहे, निजात मिले, ताकि ये रोग न घेरे।
1: एक समस्या और देखने को मिलती है गर्मियों में,
0: जी
1: पशुओं में एक ब्लॉट की समस्या आ जाती है,
0: हाँ
1: क्योंकि गर्मी में चारे की कमी होती है। उस समय हमारे किसान भाई जानवर को चरने के लिए छोड़ देते हैं,
0: जी
1: तो खेतों में बहुत सारी चीज़ें जैसे रबड़ की बॉल होती है, प्लास्टिक्स फैले होते हैं, जानवर चरते चरते कभी उस प्लास्टिक को और रबड़ की बॉल को भी खा लेते हैं, तो
0: जी
1: वह सब चीज़ें जाके पेट की नली में फंस जाती है
0: हाँ
1: और जो पेट में गैस बनती है वह गैस बाहर नहीं निकल पाती है
0: जी
1: और जिससे पशु का पेट फूलने लगता है और
0: हाँ
1: उनको सांस लेने में समस्या होती है।
0: हाँ
1: अगर ऐसी स्थिति देखने को मिले तो किसान भाई अपने आसपास के पशु चिकित्सक से संपर्क करें और इस रोग से उपाय के लिए दो तरह से इसका इलाज कर सकते हैं।
0: हाँ
1: एक
0: हाँ
1: मिनरल्स ऑयल होता है और पैराफिन, उसको हम पशु को मुंह के द्वारा देते हैं जिससे गैस निकलने में इससे रिलीव होती है।
0: जी
1: दूसरा, जटिल केस में हम उसको पेट को पंक्चर करते हैं,
0: हाँ
1: किल
0: हाँ
1: से पंक्चर करते हैं जिससे गैस निकलती है।
0: जी
1: लेकिन ये सब चीज़ें किसान भाई पशु चिकित्सक के उपस्थिति में ही ये सब चीज़ें करनी चाहिए, अनजाने में ये सब चीज़ें करने से पशु की जान का भी खतरा रहते हैं।
0: जैसे कि जानकारी दीहन कि बहुत से जानवर है जैसे कि पेट फूल आवत है, तो ऐसे दशा में पशु जो है उसकी मौत हो सकत है, तो जानकारी किसान भैया बहनी हरिन जो हैं अपन नज़दीकी जो उन्हें पशु चिकित्सक से अपन सलाह लेके करें। साथ ही साथ डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते कि जैसे कि बहुत से हमारे जानवर के किलनी लाग जाते, बहुत तरह के ऐसे परजीवी रोग हो जाते, तो ऐसे दशा में किसान भैया बहनी हरिन का कोनो सामान जानकारी हो तो बता में।
1: देखें, ये सबसे समस्या एक होती है जब छोटा बच्चा पैदा होता है
0: जी
1: तो डीवर्मिंग का हमको टेबलेट देते हैं। छोटे बच्चों में हम सिरप की तरह एक लिक्विड होता है जो
0: हाँ
1: जन्म के एक सप्ताह के अंदर हमको देना रहता है, तो
0: जी
1: उसे हम डीवर्मिंग का लिक्विड होता है बच्चे को देने से जो भी कीड़े मकोड़े उसके पेट में रहते हैं वह निकल जाते हैं।
0: जी
1: पहला उसका डोज हमको एक सप्ताह, जन्म के एक सप्ताह के अंदर देना रहता है।
0: हाँ
1: उसके बाद 6 महीने तक हर हर महीने देना पड़ता है। उसके
0: जी
1: बाद 6 महीने के बाद 3 महीने पे एक बार देना रहता है। तो डीवर्मिंग से जो पेट में कीड़े रहते हैं वह देने से निकल जाते हैं और पशुओं की ग्रोथ भी अच्छी होती है, उनकी खान पान जो खाना खिलाते हैं उससे लगता भी है और
0: जी
1: दूध भी उसमें मतलब दूध बढ़ता है
0: अच्छा
1: और पशु स्वस्थ रहते हैं।
0: डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम आए और इस मौसम में पशुओं की बीमारी एवं बचाव खातिर जो आप बढ़िया जानकारी दीन, ये जानकारी दे खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इस मौसम में पशुओं की बीमारी और उनसे बचाव, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर जयप्रकाश यादव से सुरेश कुमार की बातचीत। इसके साथ ही कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: डॉक्टर विजय शर्मा, आज आपको पायरिया कारण लक्षण और उपचार के बारे में जानकारी दूंगा। पायरिया क्या है? पायरिया मसूड़ों और दांतों में होने वाली एक आम समस्या है। पायरिया सबसे पहले कई तरीके के बैक्टीरिया और इन्फेक्शन की वजह से मसूड़ों को अपनी चपेट में लेता है। मसूड़ों का इन्फेक्शन फैलने के बाद धीरे धीरे दांतों और फिर दांतों की हड्डियों तक फैल जाता है। पायरिया मसूड़ों की बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। जैसे ही पायरिया बढ़ने लगता है, इसके प्रभाव से दांत और आसपास की हड्डियां क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। इससे दांतों को सहारा देने वाले ऊतक और हड्डियां सड़ने और नष्ट होने लगती हैं। इसके लक्षण क्या है? पायरिया मसूड़ों की गंभीर बीमारी है। यह बीमारी लोगों में आम है। बताया जाता है कि दुनिया में 90% आबादी इस संक्रमण से जूझ रही है। इसे कैसे पहचाने? सांसों से बदबू आना, लाल कोमल और सूजे हुए मसूड़े, खाना चबाने में दर्द होना, दांतों की स्थिति में बदलाव, आपके मुख से खराब स्वाद आना, मसूड़ों से खून आना, दो दांतों के बीच की दूरी बढ़ जाना, मसूड़ों का लाल होना, मसूड़ों का सॉफ्ट होना या मसूड़ों में सूजन होना, चबाकर खाने में परेशानी होना, खाने में स्वाद का एहसास कम होना। रिस्क फैक्टर, कुछ कारणों की वजह से पायरिया का जोखिम बढ़ जाता है, जैसे धूम्रपान करना, आनुवंशिकता, दवाएं, डायबिटीज़, पोषण में कमी, हार्मोन में बदलाव। पायरिया से कैसे करें बचाव? दांतों को स्वस्थ बनाने के लिए ओरल हाइजीन बहुत जरूरी है। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश अवश्य करें। ब्रश करने की तरह फ्लॉसिंग करने की भी आदत डालें, इससे दांतों की सफाई सही तरीके से होगी। दांतों से जुड़ी छोटी से छोटी परेशानी या दर्द को इग्नोर ना करें। नियमित जांच से परेशानी को कम करने की कोशिश होगी। सिगरेट या तंबाकू जैसे चीज़ों का सेवन बंद कर दें। कोशिश करें मुंह को गीला रखने की, इससे सलाइवा बनेगा जो इन्फेक्शन बचाने में मदद करेगा। खुद से इलाज ना करें और सावधानी बरतें। पायरिया की समस्या होने पर या इससे दूर रहने के लिए कुछ आवश्यक खाद्य पदार्थ। पोषक तत्व और एंटीबायोटिक से भरपूर क्रैनबेरी दांतों और मसूड़ों के लिए अच्छा स्रोत है। अदरक और लहसुन के सेवन से दांतों और मसूड़ों की परेशानी कम होती है। दिन में 1 से 2 कप ग्रीन टी सेहत को स्वस्थ रखने के लिए और दांतों को भी स्वस्थ रखने के लिए अच्छा है। सोयाबीन में मौजूद विटामिन और मिनरल फायदेमंद होता है। आहार में ब्रोकली के सेवन से भी फायदा मिलता है। स्वस्थ मुख के लिए च्युइंगम चबाने की आदत डालें, लेकिन ध्यान रहे इसे बहुत देर तक नहीं चबाना चाहिए। लाल और हरी मिर्च के शौकीन हैं तो इसके सेवन करने से फायदा होगा। पायरिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, जाने और बचाओ। विटामिन B12 की कमी। शरीर में विटामिन B12 की कमी के कारण आपको पायरिया की परेशानी का खतरा रहता है। विटामिन B12 आपके मसूड़ों और दांत को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। लंबे समय तक शरीर में विटामिन B12 की कमी होने से इस समस्या के शिकार हो सकते हैं। इसकी वजह से आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और पायरिया इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए आपको डाइट में दूध और डेयरी प्रोडक्ट, मांस और मछली आदि को शामिल करना चाहिए। विटामिन सी की कमी। शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण भी आपको पायरिया हो सकता है। दरअसल शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और इसकी वजह से दांतों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। शरीर में विटामिन सी की कमी से बचने के लिए खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, अंगूर आदि का सेवन करें। विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी आपको हड्डियों और दांतों के लिए काफ़ी गंभीर मानी जाती है। विटामिन डी की कमी के कारण पायरिया का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में विटामिन डी की कमी से बचने के लिए आपको कुछ देर धूप में टहलना चाहिए और डाइट में सैल्मन और टूना फिश, मांस, अंडा, दूध आदि का सेवन करना चाहिए। पायरिया से लड़ने के कुछ घरेलू नुस्खे। पायरिया से निपटने के लिए घरेलू उपाय जैसे हल्के गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला करना, पानी में फिटकरी डाल के भी कुल्ला किया जा सकता है, माउथ वॉश का प्रयोग करें, दिन में कम से कम एक बार फ्लॉस करें, धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ दें, रात में सोने से पहले दांतों को जरूर साफ करें, फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, खाद्य कणों को हटाने के लिए टूथपिक, सेफ्टी पिन या किसी अन्य प्रकार की नुकीली वस्तु से बचें, प्लाक हटाने के लिए रोजाना फाइबर से भरपूर भोजन का सेवन करें, गाजर और पालक का रस पीने से भी फायदा होता है, सेंधा नमक या अनार के छिलके का पाउडर बनाकर नियमित दांतों पर मसाज करें, खाने के बाद ठीक तरह से कुल्ला करने से दांतों की सफाई हो जाती है, डॉक्टर के सलाह अनुसार रोजाना ब्रश करने के बाद माउथ वॉश से कुल्ला करें। दांतों की देखभाल बेहद जरूरी है, थोड़ी सी लापरवाही भी आपको परेशानी में डाल सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि किसी भी परेशानी को टालें नहीं और डेंटिस्ट से संपर्क करें।
1: पायरिया कारण लक्षण और उपचार, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विजय शर्मा की ये वार्ता। इसके साथ ही स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर विजय शर्मा की वार्ता, पायरिया, कारण, लक्षण और उपचार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण रूपरेखा आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आज रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 7:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन। दिन में 12:15 पर आपको सुनवाएंगे उस्ताद अली अकबर खां का सरोद वादन और रात में 10:30 पर सुनेगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। नमस्कार, प्रयागराज के साथ आपके साथ रूबरू होंगी आपके विचारों और आपके पसंदीदा गीतों की साथ 8:45 पर।

उर्दू कार्यक्रम होगा 9:30 पर। इसमें आपको सुनवाएंगे प्रोफेसर सालेहा रशीद का मकाला शिबली नोमानी की मायानाज तसनीफ शेरुल अजम, और कलाम शायर होंगे डॉक्टर जफरुल्ला अंसारी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:50 पर सुनेगा प्रियंका त्रिपाठी के स्वर में भजन और गीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 10:30 पर। आपके फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीत लेकर आएंगे। 12:30 पर कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश।

बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी होगा 1:15 पर। दिन में 2:30 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा। आज के कलाकार होंगे सुखनंदन और साथी विनीता तिवारी और विकास चंद्र पांडे। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी 5:15 पर होगा। आज युवजन सुनेंगे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पर केंद्रित प्रेरणापुंज। पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे राजेश राज पुरोहित से नीति वचन और बरमदीन यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत बोलते नगमे। हमारा ये विशेष कार्यक्रम होगा 7:31 पर। स्वर होंगे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर की। सबरस कार्यक्रम होगा 8:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:00, दिन में 11:00, 11:30 पर, शाम 5:00 और रात 10:00।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6:55 होना चाहते हैं। अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिन्हें अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचक।

जहां कहीं भी रामचरित का गान होता है, ब्रह्म में सदैव तल्लीन रहने वाले मुनिगण वहां खींचे चले आते हैं। राम के राज्यकाल में अवधपुरी में चहुं ओर सुख और शांति व्याप्त है और इसी कारण सनकादि मुनि वहां पधारे हैं। इनके रूप में मानो चारों वेदों ने बाल रूप धारण कर लिया है।

जहां कहीं भी रामचरित का गान होता है, ब्रह्म में सदैव तल्लीन रहने वाले मुनिगण वहां खींचे चले आते हैं। राम के राज्यकाल में अवधपुरी में चहुं ओर सुख और शांति व्याप्त है और इसी कारण सनकादि मुनि वहां पधारे हैं। इनके रूप में मानो चारों वेदों ने बाल रूप धारण कर लिया है। अगस्त्य मुनि के आश्रम से आए इन पुण्यात्माओं का श्री राम ने सादर सत्कार किया, दंडवत प्रणाम निवेदित कर अपना पीतांबर बिछाकर उन्हें आसन दिया। प्रभु की इस विनम्र भंगिमा और अद्भुत रूप ने उनका मन मोह लिया, वे प्रेम विफल हो गए। स्वयं श्री राम इस अवस्था में भाव विभोर हो बोले, बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है, साधु संगति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत विषय वासना में रत लोगों का संग जन्म और मृत्यु अर्थात आवागमन के कुचक्र में डालने वाला होता है। ये वचन सुनकर मुनिगण उनसे अखंड और अचल भक्ति की याचना करते हैं।

मानस से संगीत में पाठ, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्मों से भजन। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं पोस्टर फिल्म से महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में शंकर शेष का लिखा गीत, संगीत गोपाल ज्वाला का।

कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं ओ मई गॉड फिल्म से कैलाश खेर और मीत अनजान की आवाजों में कुमार का गीत मीत अनजान का संगीत।

0: फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का

0: किया गठन। एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी यह समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। नई दिल्ली में आज आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होगी आगरा जिले की बिरहरू ग्राम पंचायत। और वाराणसी में कल से शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक। संस्कृति विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे 11 देशों के प्रतिनिधि। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया। यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। CBSE के सचिव का भी तबादला कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। श्री योगी ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।
2: मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है। अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन मुख्यमंत्री आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल आगरा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही

0: निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनाव में अपना वोट डालें।
1: आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने दो दिवसीय आगरा दौरे के दौरान कल वहां के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसमें प्रदेश के आगरा जिले के बिरहरू ग्राम पंचायत को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार आज नई दिल्ली में यह सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सरकार और ग्राम पंचायत का विशेष आभार जताया।
2: ये गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनू और लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की इंटरलॉक सीसी सब कराई गई। बाकी पंचायत घर सचिवालय RRC सेंटर लैब लाइब्रेरी ऐसे बहुत से कार्य करे गए। सरकार को बहुत धन्यवाद।
0: वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी वाराणसी डॉ. राम नरेश पाल ने बताया कि प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट।
3: साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का किया गठन। 1 माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी यह समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। नई दिल्ली में आज आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होगी आगरा जिले की बिरहरू ग्राम पंचायत।

0: वाराणसी में कल से शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक। संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे 11 देशों के प्रतिनिधि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सितार वादन। कलाकार हैं कार्तिक कुमार। तो आइए सुनते हैं सितार पर राग अहिर भैरव। आलाप, जोड़ और छाला गत 3 ताल में निबद्ध हैं। तो आइए सुनते हैं सितार पर राग अहिर भैरव, कलाकार कार्तिक कुमार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग अहिर भैरव में सितार वादन। कलाकार थे पंडित कार्तिक कुमार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उस्ताद निजामुद्दीन खान और तानपुरे पर थी श्रीमती लीना कार्तिक कुमार। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आप हमें न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं, जिसके लिए आप अपने फ़ोन सेट पर डाउनलोड कर सकते हैं न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप। और इस ऐप पर लाइव रेडियो वाले बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको टाइप करना है आकाशवाणी प्रयागराज, और आप सुन सकेंगे हमें मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर। साथ ही आप हमें FM पर भी सुन सकते हैं 100.3 मेगा हर्ट्स पर। हमें इंतज़ार रहता है आपकी प्रतिक्रियाओं का। हम आपके लिए तरह तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत ज़रूर कराएं। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस फ़ोन नंबर पर। फ़ोन नंबर है 8004926250। जी हाँ, फ़ोन नंबर है 8004926250। इस नंबर को हमेशा याद रखें और अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही अनमोल हैं। हमें पता लगता है कि हम कहां तक आपके लिए साथ निभा पा रहे हैं, कहां तक आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। तो सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। साथ ही अपने फ़ोन सेट पर डाउनलोड करिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप।

हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आपके संदेशों और आपके पसंदीदा गीतों से जुड़ा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज आप सुनते हैं रोज सुबह 8:45 पर। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। आज के कार्यक्रम के लिए, अपने नाम को शामिल करने के लिए और संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए जुड़िए हमारे आकाशवाणी पेज पर

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज 10:05 पर सुबह हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज, जिसमें बात होगी प्रयागराज की जानी मानी हस्तियों के बारे में। तो सुनना न भूलिएगा कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज।

0: साथ ही याद रखिएगा शाम 7:31 पर आप सुनेंगे बोलते नगमे कार्यक्रम। जी हाँ, फिल्मी गीतों से जुड़ी चटपटी बातें और रोचक तथ्य। स्वर होंगे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर। कार्यक्रम का नाम बोलते नगमे, समय 7:31 शाम। यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिव कुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1

0: बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा, इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्ज गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। नवान्नों में दोपहर 12:30 उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं। सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43 करोड़ 52 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर

0: स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है।
1: इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग एक साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
0: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
3: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a 5-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman, elected President of 81st Session of UN General Assembly, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New Delhi says the move will further enhance people-to-people ties between India and Germany. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1. And now the news in detail. Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 5-day visit

0: वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्स आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान वो भारत वेनेजुएला के ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा बातचीत करेंगी। दोनों ममालिक तिजारत सरमायाकारी तवानाई काबिल तजदीद तवानाई हिफ्जान सेहत और दवासाजी समेत अहम शोबों में बाहमी तआवुन के इम्कानात का जायजा लेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के उमूर खारजा मीशत खजाने और साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक वजरा पर मुश्तमिल एक आला सतही वफद भी मोहतरमा रोड्रिग्स भी के हमरा भारत पहुंचेगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारत और वेनेजुएला के दरमियान खास तौर पर तवानाई और तजारत के शोबों में दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस दौरे से दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तहकम होने और मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन में मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। वजीर आजम के साथ बातचीत के दौरान तवानाई की यकीनी फराहमी, तजारत और सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, नकलो हमल और काबिल तजदीद तवानाई समेत बाहमी मफाद के शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वेनेजुएला का वफद तवानाई, दवासाजी और ऑटोमोबाइल से मुतालिक शोबों से वाबस्ता इदारों का दौरा करेगा। इस दौरे का मकसद इश्तराक के मौके का जायजा लेना और भारत की तकनीकी और सनती सलाहियतों के बारे में अहम मालूमात हासिल करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: भारत की ब्रिक्स सदारत में आज ओडिशा के शहर पुरी में ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की पहली जाती तौर पर तकनीकी मीटिंग शुरू हो रही है। इस 3 रोजा मीटिंग में 11 ब्रिक्स और पार्टनर ममालिक के मंदुबीन, पॉलिसी साज और आफात के बंदोबस्त के माहिरीन शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में आलमी खित्ते जनूब में आफात के ताल्लुक से लचकदारी को मुस्तहकम करने, पायदार तरक्की को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डी के शिवकुमार को आज सपहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। रियासत के गवर्नर थावरचंद गहलोत आज शाम 4 बजे बेंगलुरु में वाकई लोक भवन में जनाब शिवकुमार और नई काबीना के अरकान को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। इससे पहले जनाब सिद्धरमैया के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद जनाब शिवकुमार के लिए इस आला ओहदे के लिए रास्ता साफ हो गया था। इसके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस में लंबे अरसे से इक्तदार के लिए जारी रस्साकशी भी खत्म हो गई। जनाब शिवकुमार को 2023 के असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जीत के वक्त से ही इस आला ओहदे के लिए उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। जुमेरात को जनाब सिद्धरमैया ने बेंगलुरु में वाकई अपनी रिहाइशगाह पर सुबह मुनाकिद होने वाली एक मीटिंग में अपनी काबीना के वजरा को अपने इस्तीफे के ताल्लुक से बताया था और इस बात का इशारा दिया था कि कांग्रेस आला कमान की हिदायत के मुताबिक जनाब शिवकुमार वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। मगरबी बंगाल हुकूमत आज समाजी फलाह बहबूद की एक बड़ी पहल अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेगी। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी इस स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। इस इफ्तिताही तकरीब में अन्नपूर्णा योजना के मुस्तफिदीन तमाम ब्लॉक्स, म्यूनसिपलिटियों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। मकामी सतह पर शिरकत को यकीनी बनाने के लिए अरकान असेंबली को मकामी सतह पर प्रोग्रामों में मदऊ किया गया है और वजीर आला का असल प्रोग्राम तमाम ब्लॉक और म्यूनसिपल हेडक्वार्टर्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बराह रास्त नशर किया जाएगा। वजीर आला के इफ्तिताही खिताब के फौरन बाद इजाजतनामे तकसीम किए जाएंगे। हर ब्लॉक म्यूनसिपलिटी और कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 100 मुंतखब मुस्तफिदीन बाकायदा इजाजतनामे हासिल करेंगे। पहले मरहले में आज से मुस्तफिदीन को 3,000 रुपये बराह रास्त उनके खातों में मिलने शुरू हो जाएंगे। नाबंदा में इफ्तिताही तकरीब 12:30 बजे मुनाकिद की जाएगी जिसमें खवातीन, बच्चों की तरक्की और समाजी बहबूद से मुतालिक महकमे की वजीर अग्नि मित्र पाल शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदामात किए। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आपके लिए अहम शोबों में गुज़श्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर लेकर आया है। आज हम मुतवस्सित तबके की बहबूद के

0: के विकास में सहभागी बने।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र और आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 292.4 मीटर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। नमस्कार प्रयागराज के संघ के साथ मैं हूँ शिप्रा श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक प्यारी सी खूबसूरत सी कविता के साथ, जो याद दिला देगी आपके बचपन को। और कविता कुछ इस तरीके से कि दोनों पैदल पिता के पांव हैं, दोनों पैदल पिता के पांव हैं, टायर पिता के जूते, मुठिया उनके हाथ, कैरियर उनका झोला। हर रोज़ जाती उन्हें लेकर और लाती है लाद कर, गाते हुए लहराते हुए बिना किसी हेडलाइट के भी वो घुप अंधेरे में चीन लेती है अपनी राह और मुड़ जाती है घर की ओर। हर रात पिता को घर तक छोड़कर फिर खुद सोती है साइकिल, भूखी दीवार से सटकर साइकिल, जो पिता की अभिन्न साथी है, किसी पेट्रोल पंप तक नहीं जाती है, कोई पेट्रोल नहीं पीती, जिसका अक्षय ईंधन छिपा है पिता के पांव में।

आप सोच रहे होंगे कि साइकिल की बात क्यों, और ये साइकिल की बात इसलिए श्रोताओं क्योंकि ये साइकिल जुड़ी है हमारे बचपन की यादों से, हमारे पिता के फरियादों से और ऊंचे सपनों की दरकार से। और इस साइकिल की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है 3 जून और 3 जून को हम मनाते हैं विश्व साइकिल दिवस। और इसका उद्देश्य श्रोताओं अगर हम आपको बताएं तो वो ये है कि साइकिल स्वास्थ्य के प्रति हमारे बहुत ही फायदेमंद होती है, स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूक करना और परिवहन के इस सस्ते पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ साधन को बढ़ावा देने के लिए आज के दिन हम मनाते हैं विश्व साइकिल दिवस। और बताओ आपको हम ये बताएं कि संयुक्त राष्ट्र सभा ने इसका प्रस्ताव पारित किया था 2018 अप्रैल में और तब से प्रथा शुरू हो गई विश्व साइकिल दिवस मनाने की। अगर बात करें इसकी कि क्यों मनाते हैं साइकिल दिवस, तो भाई जाहिर सी बात है कि आज जब पेट्रोल का संकट हमारे देश पर है, पूरे विश्व पर है और हम पर्यावरण प्रदूषण के दंश को झेल रहे हैं, तो भाई और अगर स्वास्थ्य की भी बात आती है, ज़्यादातर लोग ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट और तमाम बीमारियों से पीड़ित हैं, तो एक्सरसाइज करने जिम जाने के बजाय अपनाएं आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए साइकिल चलाने के फॉर्मूले को। और पर्यावरण संरक्षण की बात है तो भाई ज़ीरो एमिशन वाली जो ये हमारी साइकिल है ना, ये बहुत ही फायदेमंद है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और हमारे पर्यावरण के लिए भी। हमसे अगर साइकिल चलाने की ये जो मुहिम है अगर सफलतापूर्वक हो जाती है तो हम अपनी हृदय गति को कंट्रोल कर सकते हैं, वजन कंट्रोल कर सकते हैं, मांसपेशियां मजबूत कर सकते हैं और मानसिक तनाव को भी दूर कर सकते हैं। और ये साधन ऐसा है जिसमें आप समझ सकते हैं कि ईंधन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती। अगर बात करते हैं कि कैसे ये विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, तो भाई देश के कई हिस्सों में रैलियां मनाई जाती हैं, साइकिलिंग अभियान चलाए जाते हैं जैसे फिट इंडिया अभियान जैसे, और लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी अपनी दैनिक यात्राओं में साइकिल के उपयोग का संकल्प लेते हैं। तो आज वो दिन है जब हम साइकिल चलाने का संकल्प लें।

लेटे लेटे साइकिलिंग की एक्सरसाइज के बजाय वास्तव में साइकिल चलाएं, पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाएं और अपने जीवन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें, क्योंकि भाई आपका स्वास्थ्य हमारे आने वाले कल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देश को मजबूत बनाने के संकल्प की ओर आगे बढ़ने का एक बहुत ही अच्छा साधन है साइकिल। और बातें अभी और भी करेंगे, आइए सुन लेते हैं साइकिल के ऊपर ही एक खूबसूरत सा नगमा।

तो भाई श्रोताओं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए वादा करिए खुद से कि आप साइकिल का प्रयोग करेंगे। और इस साइकिल ने पुराने ज़माने में जाने कितनी प्रेम कहानियाँ भी रच दी, और ये बात जाहिर कर रहा था ये खूबसूरत सा नगमा। और अब आपसे जुड़ते हैं, आपको आपके ही संदेशों से रूबरू करवाते हैं। उत्तम सिंह जंघेल हमारे नियमित श्रोता हैं और फेसबुक पे लगातार हमसे बने रहते हैं। आप अपने साथियों के साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल, और साथ ही आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष कुमार जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ हमसे संदेश साझा कर रहे हैं कि गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। भाई मेरी बात को आपने बिल्कुल ताकत दे दी अपनी इस बात से कि हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, अपनी अर्थव्यवस्था से जुड़े रहें, अपने देश की विकास के साथ जुड़े रहें और साइकिल चलाएंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। इन्होंने एक गीत की फरमाइश की है, निकाह फिल्म से सुनना चाहते हैं, चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में। आइए आपको सुनाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा आपके लिए।

हमारे और श्रोता जो फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, हम उनका धन्यवाद भी प्रेषित करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं उनका संदेश। हमारे अगले श्रोता हैं राम कुमार रेवार, साधुल शहर राजस्थान से। राम कुमार रेवार जी लिखते हैं, जिस व्यक्ति ने स्वार्थ त्याग दिया उसने जंग ही नहीं जग जीत लिया। बहुत ही खूबसूरत विचार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नीरा त्रिपाठी जी लिखती हैं, जो व्यक्ति विश्वास और समझ के बीच संतुलन बना लेता है वही जीवन में सही निर्णय ले पाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, और सही निर्णय लेने की क्षमता अपने अंदर विकसित करना बहुत बड़ी बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी है। अगले श्रोता जिनका संदेश हम इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं वो हैं बनवारी जयपाल जी। बनवारी जयपाल जी को हमारी तरफ से नमस्कार, आपने हमारी टीम को भी नमस्कार भेजा है। डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल जी अपने दोस्तों, अपने जानने वालों बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, गांव अरायन, जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लिखते हैं कि पीपल के पत्ते जैसा कोई न बने जो समय आने पर सूख कर नीचे गिर जाता है। बनना है तो मेहंदी के पत्ते जैसा बनो जो सूख कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देता है। भाई परमार्थ की बात जो आपने इस संदेश के माध्यम से लिखी है बखूबी, बहुत ही प्रेरणादायक विचार है आपका। और नीरा त्रिपाठी जी ने एक और संदेश भेजा है कि अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी हमें यह खुद को समझने और अपनी ऊर्जा को फिर से संचित करने का मौका भी देता है। बहुत अच्छा विचार नीरा त्रिपाठी जी आपने दिया है। अगले श्रोता अरुण कुमार भारतीय जी लिखते हैं कि जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर सुकून चाहिए तो दूसरों को बदलने की जगह खुद को बेहतर बनाओ, क्योंकि पेड़ पत्ते बदलता है जड़ नहीं। वाह क्या बात कही आपने अरुण कुमार जी। और साथ ही अब हम अपने श्रोताओं को बता दें कि किन श्रोताओं ने हमारे फेसबुक पे कार्यक्रम को लाइक किया है। शुभ्रा श्रीवास्तव, सुधांशु पांडे, नीरा त्रिपाठी जी, बनवारी जयपाल जी, नीलम श्रीवास्तव, अतुल कुमार गुप्ता, लक्ष्मण देश पांडे, राम कुमार रेवार, तपन ज्योति, उत्तम सिंह चंखेल, अरुण कुमार भारतीय, ये सब आप सभी श्रोताओं को आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रयागराज से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना इतना प्यार हमसे बांटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का नमस्कार प्रयागराज का अंक यहीं समाप्त होता है। अपनी रेडियो से के शिप्रा श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त।

ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र और आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुबह का वक्त है, चाय का प्याला आपके हाथों में होगा और आप अखबार की सुर्खियों में डूबे होंगे। तो लीजिए ये नगमा पेश है आपकी मसरूफियत को और शानदार बनाने के लिए।

जब वी मेट, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मीका सिंह की आवाज़ में, इरशाद कामिल के बोल थे और प्रीतम का संगीत था। और अब जो गीत हमने आपके लिए चुना है वो है रब ने बना दी जोड़ी से सुखविंदर सिंह की आवाज़।

0: मुसाफिर।
1: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण होगा बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
3: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए लखनऊ और गाजियाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मई 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया, जिनमें से लखनऊ भी एक था। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा,
5: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
4: लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय सामाजिक न्याय, अधिकारिता, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने 300 से अधिक उम्मीदवारों को सरकारी सेवा की सौगात दी, जिनमें से 198 उम्मीदवार भारतीय रेलवे का हिस्सा बने। श्री वर्मा ने कहा कि रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी गई हैं। केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 मई को 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर प्रदेश की राजधानी पहुंचे। 6 मई की रात को उन्होंने लखनऊ के निजी होटल में फल निर्यातकों के साथ निर्यात को बढ़ाने पर चर्चा की। अगले दिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत

0: आने वाले केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा में उन्होंने फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। श्री चौहान ने साफ कहा कि अब केवल ज्यादा उत्पादन से बात नहीं बनेगी, बल्कि भारत को वैश्विक फल बाजार में मजबूत पहचान दिलाने के लिए गुणवत्ता, शेल्फ लाइफ, प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक और निर्यात मानकों पर गंभीरता से काम करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि खेती को खेत तक सीमित नहीं रखा जा सकता, अब उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, बाजार और निर्यात तक पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना समय की मांग है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए किसानों का विकास आवश्यक है। श्री चौहान ने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए बागवानी क्षेत्र के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 मई 2026 को लखनऊ वासियों को विकास की सौगात दी। उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में 413 करोड़ की 342 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ, सुंदर, समर्थ लखनऊ पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान लघु फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने सभी 17 नगर निगमों के महापौर, 200 नगर पालिका परिषद, 545 नगर पंचायतों के चेयरमैन और लगभग 14,000 पार्षदों को 3 वर्ष का कार्यकाल संपन्न होने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा जनहित में खर्च होगा। उन्होंने कहा लखनऊ को स्वच्छता रैंकिंग में 3रा स्थान मिला है, अब इसे पहले स्थान पर लाना है। श्री योगी ने कहा
1: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाना है।
0: जनगणना 2027 के तहत स्वगणना का काम लखनऊ में 7 मई 2026 से शुरू हुआ और 21 मई 2026 तक चला। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न मंत्रियों और अधिकारियों ने स्वगणना में भाग लिया। अब जनगणना के प्रथम चरण के तहत प्रगणक घर घर जाकर मकान की गणना कर रहे हैं। 22 मई को शुरू हुआ यह कार्य 20 जून 2026 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी और निदेशक शीतल वर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मकान की गणना के पहले दिन 1 करोड़ से अधिक मकान को सूचीबद्ध किया गया है। लखनऊ में जेठ आज के बड़े मंगलों की धूम मची हुई है। लखनऊ के अलीगंज स्थित पुराने हनुमान मंदिर से शुरू हुई यह परंपरा अब प्रदेश के कई जिलों तक पहुंच चुकी है। लखनऊ में प्रत्येक बड़े मंगल पर हनुमान जी के विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक हजारों भंडारे आयोजित हो चुके हैं। इस बार अधिमास लगने के कारण 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 28 मई को ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। 30 मई तक चले बकरीद पर्व पर लोगों ने कुर्बानी की परंपरा का निर्वहन किया। लखनऊ स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए 12 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की थी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2026 के संस्करण में 7 मुकाबले लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले गए, जिनका लुत्फ शहरवासियों के साथ साथ अन्य राज्यों और शहरों से आए लोगों ने भी उठाया। अब इकाना स्टेडियम में 17 जून 2026 को भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला जाएगा।
2: लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज शर्मा का।
3: भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के साथ साथ समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के भी सपने पूरे हो रहे हैं। सरकार का संकल्प है कि हर वर्ग को सरकार द्वारा चलाए जा रही योजनाओं का लाभ मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे गरीबों को रहने के लिए अपना छत मिली है जो किराए पर रहते थे। गाजियाबाद के रहने वाले पवन कौशिक ने बताया कि पहले वो किराए के मकान में रहते थे और हर एक 2-4 साल में उनको मकान बदलना पड़ता था, जिससे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गाजियाबाद की बापूधाम योजना में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना मकान लेने का सपना देखा, जो कि पूरा भी हुआ। लाभार्थी पवन कौशिक ने बताया,
4: मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू जो है वो GDA में फ्लैट आवंटन के लिए योजना निकाली गई है, तो मैंने उसमें 2020 में आवेदन किया था। अभी मुझे 1-1.5 महीने पहले मेरी रजिस्ट्री हुई है, साथ के साथ कब्जा भी हो गया। सरकार ने बहुत अच्छा किया।
3: वहीं गाजियाबाद के अभिषेक कुमार कहते हैं कि एक मकान हर इंसान का सपना होता है। भारत सरकार ने मकान देकर निम्न वर्ग के सपने को पूरा किया। उन्होंने सरकार की भागीदारी से कम कीमत में उपलब्ध हुए मकान के लिए सरकार का आभार भी जताया। वहीं GDA उपाध्यक्ष नंद किशोर कलान ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न आवासीय योजनाओं के बारे में बताया। सरकार समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को हर वो सुविधा देना चाहती है जिससे वह अपने आप को सक्षम महसूस कर सके। मकान हर किसी का एक बहुत बड़ा सपना होता है, उस मकान को सरकार गरीबों के लिए भी आसानी से उपलब्ध करा रही है। उन्होंने जनपद गाजियाबाद में चल रही अन्य आवासीय योजनाओं के बारे में बताया और EWS के तहत भविष्य में आने वाले

0: योजनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया,
1: सरकार की भी नीति है कि गरीब लोग अधिकतम से अधिकतम इसमें लाभान्वित हो। जो हमारे प्राधिकरण की खुद की योजना है उसमें भी हम छोटे साइज के 40 स्क्वायर मीटर के, 60 स्क्वायर मीटर के, 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स जो कि निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सुलभ होते हैं उसको हम लॉटरी के माध्यम से अधिक जनता को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं।
0: गाजियाबाद के सिकंदरपुर में बने हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। हवाई अड्डे का विस्तार 14 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। इसमें से 6.8 एकड़ जमीन की खरीद को लेकर किसानों ने सहमति बनाने का जिला प्रशासन द्वारा प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। शेष 7.2 एकड़ जमीन की खरीद के लिए सिकंदरपुर गांव के किसानों से अब जिला प्रशासन द्वारा वार्ता शुरू कर दी गई है। ऐसे में हिंडन हवाई अड्डे की उड़ान बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ जैसे सीमित शहरों तक नहीं बल्कि देश के कोने कोने तक होगी। इससे गाजियाबाद के विकास को पंख लगेंगे और आसपास के जिलों के लोगों के लिए भी एयर कनेक्टिविटी की सुविधा बेहतर होगी। शासन के निर्देश पर जनपद की 67,000 ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करने के लिए उनको सिलाई कढ़ाई से लेकर मोबाइल रिपेयरिंग, खेती करने, बैंकिंग कार्य करने सहित अन्य कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रशिक्षण देने के बाद सरकार की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह को कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक रूप से सहायता भी दी जाती है। कम ब्याज पर बैंक से लोन दिलाया जाता है। वर्तमान में 2400 महिला स्वयं सहायता समूह हैं। वित्तीय वर्ष 26-27 में सरकार ने जिले में 6,700 नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाने के निर्देश दिए हैं। एक महिला स्वयं सहायता समूह में न्यूनतम 10 महिलाएं शामिल होती हैं। ऐसे 67,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6,700 महिला स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। सरकार की एक जिला एक उत्पाद और एक जिला एक खेल की सफलता के बाद अब ODOC एक जनपद एक व्यंजन योजना शुरू की गई है। इसमें स्थानीय खान पान और स्वाद को ध्यान में रखते हुए इसे प्रदेश द्वारा और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना आवश्यक है। इसी क्रम में गाजियाबाद को सोया चाप के बाद हरी मिर्च के अचार को भी इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है। जनपद में सोया चाप के कारोबार से 10,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। वहीं हरी मिर्च से तैयार अचार को भी एक जनपद एक व्यंजन योजना में शामिल किया गया है। इस अचार के निर्माण और व्यापार से 2500 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति रचना समूह स्वरों में।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। सभी सुनने वालों को शमीम का आदाब। सामईन हजरात, उर्दू अदब में जब भी तनकीदी अदब की बात होगी, हाली और आज़ाद के साथ शिबली का नाम भी लिया जाएगा। शिबली नुमानी ने मुख्तलिफ मौजू पर तनकीदी व तहकीकी किताबें लिखीं। सहाबाए कराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर खामा फरसाई की, हालांकि उसको तकमील तक उनके शागिर्द ने पहुंचाया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शिबली की दस्तरस अदब पर कितनी थी। बयक वक्त उर्दू, अरबी, फारसी व तारीख़ की किताबें तसनीफ़ व तालीफ़ करना और इदारों में दर्स व तदरीस का काम अंजाम देना, इदारे कायम करना अहमियत के हामिल हैं। कल यानी 4 जून को उनकी योम विलादत है। इसी को जहन में रखते हुए हमने अपने स्टूडियो में प्रोफेसर सालेहा रशीद को मदऊ किया है। समाप्त करिए मकाला शिबली नुमानी की मायानास तसनीफ़ शेरुल अजम।
0: अल्लामा शिबली नुमानी का शुमार 19वीं सदी की उन नामवर हस्तियों में होता है जिन्होंने अपनी तलाश, जस्तजू, तहकीक और तनकीद के जरिए उर्दू अदब को न फकत वाफिर सरमाया अता किया बल्कि उसे एक खास मकाम तक पहुंचा दिया। दुनिया अदब आपको एक अजीम सवाने निगार, नक्काद और मुअर्रिख की हैसियत से याद करती है। आप 4 जून 1857 ईस्वी को

वो बिनवल आजमगढ़ में पैदा हुए। आपके वालिद ने आपको उस वक्त के जय्यद उलमा से फारसी, अरबी और दीगर राइज उलूम की तालीम दिलवाई। ताहम मौलाना फारूक चिड़ियाकोटी का नाम आपके मखसूस उस्ताद की हैसियत से लिया जाता है। आपने वकालत का इम्तिहान भी पास किया और कुछ वक्त के लिए वकालत की, मगर ज्यादा दिन तक आप उससे जुड़े ना रह सके। फिर अलीगढ़ में सर सैयद के कायम करदा कॉलेज में अरबी व फारसी के उस्ताद की हैसियत से तकर्रुर मिला और अलीगढ़ चले गए, जहां सर सैयद की सोहबत से फैजियाब होने के मौके मिले। यहीं से शिबली की इल्मी व तहकीकी जिंदगी का आगाज होता है। यहां आपकी मुलाकात प्रोफेसर ऑर्नॉल्ड से हुई, जो एक मारूफ मुस्तशरिक और अलीगढ़ के MAO कॉलेज में फलसफा के उस्ताद थे, जिनके तवसुत से आपने मगरबी तहजीब व मुआशरत के महासिन जाने और मशरकी तहजीब के साथ उसकी आमेजिश भी की। अलीगढ़ की मुलाजमत के दौरान शिबली ने तुर्की, शाम और मिस्र का सफर किया। 1898 ईस्वी में सर सैयद की वफात के बाद शिबली ने अलीगढ़ को खैरबाद कहा और अपने वतन वापस आकर अपने कायम करदा नेशनल स्कूल को फरोग देने में मसरूफ हो गए। फिर वो हैदराबाद गए और वहाँ 4 साल तक क्याम किया। हैदराबाद क्याम के दौरान ही शिबली ने मुतअद्दिद अहम शख्सियात की सवाने उम्रियाँ, जैसे सवाने मौलाना रूम, अलगजाली, सादी, सीरत, अल फारूक, अल मामून, मौजने अनीसो दबीर वगैरह तालीफ की। इसके बाद वो लखनऊ आ गए और नदवतुल उलमा के तालीमी मामला देखने लगे। इसी असना आपने शेरुल अजम तालीफ की। शिबली खुद भी फारसी और उर्दू में शेर कहते थे। आपकी फारसी गजलों को शराबे दो आतशा कहा गया। इसके अलावा बेशुमार तनकीदी व तहकीकी मजामीन लिखे, इस गरज से कि तारीख दानी और तारीख नवीसी का रुझान आम हो सके। आपका ख्वाब था कि एक ऐसा इदारा कायम हो जहां उलमा और मुहक्किकीन जमा होकर इल्मी तहकीक और इशात का काम अंजाम दें। 1913 ईस्वी से आपने इस मुहिम पर काम करना शुरू कर दिया था, मगर उम्र ने साथ ना दिया और 18 नवंबर 1914 को आपने इस दारे फानी को खैर बात कह दिया। अल्लामा शिबली नोमानी की शोहरे आफाक तालीफ शेरुल अजम फारसी शायरी की तारीख और तनकीद का मंबा है। ये 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसकी 4 इब्तदाई जिल्दें उनकी जिंदगी में, जबकि 5वीं जिल्द उनकी वफात के बाद मंजरे आम पर आई। मौजूआती एतबार से देखें तो हिस्सा अव्वल में फारसी शायरी की तारीख, जिसके ज़ैल शायरी की इब्तदा, उसकी अहद बहद तरक्की, खसूसियात और असबाब पर मुफस्सल गुफ्तगू और मशहूर शोरा का तफसीली जिक्र और उनकी शायरी पर तकरीर और तनकीद है। शिबली ने फारसी शोरा के 3 दौर कदमा, मुतवस्सितीन और मुताखरीन के नाम से कायम किए हैं। पहला दौर जो कदमा का है वो हंजला से शुरू होकर निजामी पर, दूसरा कमाल इस्माइल से लेकर जामी तक, और तीसरा जो मुताखरीन का दौर है वो फुगानी से लेकर अबू तालिब कलीम पर ख़त्म होता है। पहले हिस्से में तमहीद और सबब तालीफ, शेरुल अजम के माखज़, मसलन नाम किताब लुबाबुल अलबाब, नाम मुसन्निफ औफी यस्ती, कैफियत के ज़ैल में लिखते हैं, सबसे पहला तस्करा है, मुसन्निफ 7वीं सदी हिजरी में था और अपने अहद तक के हालात लिखे हैं। प्रोफेसर ब्राउन ने तस्सी व तशिया करके शाय किया है। इसी तरह इस सफ़े पर 4 मकाला और तस्करे दौलत शाह समरकंदी की तफसीलात दर्ज हैं। हिस्सा दोवम में ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार, कमालुद्दीन इस्माइल, शेख सादी, अमीर खुसरो देहलवी, सलमान सावजी, हाफिज और इब्न यमीन, यानी 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी तक के शोरा का जिक्र है। हिस्सा सोवम में फुगानी शिराजी, फैजी उर्फी नजीरी, तालिब आमली, मिर्जा साहिब और अबू तालिब कलीम के हालात दर्ज हैं। बकौल शिबली, कलीम के बाद शायरी शायरी न रही बल्कि चीस्तान बन गई।

0: से कट रहे हैं तेरे दीवाने के दिन। क्या तुझे इसकी खबर है ऐ बुते मस्ते शबाब, किस तरह से कट रहे हैं तेरे दीवाने के दिन। काट लेंगे उनको आसानी से हम खाना खराब, काट लेंगे उनको आसानी से हम खाना खराब। वो हकीकत के हो दिन चाहे वो अफसाने के दिन, काट लेंगे उनको आसानी से हम खाना खराब। वो हकीकत के हो दिन चाहे वो अफसाने के दिन। ये खबर सुनकर न क्यों हो बुलबुले शैदा उदास, ये खबर सुनकर न क्यों हो बुलबुले शैदा उदास। आ गए हैं बाग में फूलों के मुरझाने के दिन, ये खबर सुनकर न क्यों हो बुलबुले शैदा उदास। आ गए हैं बाग में फूलों के मुरझाने के दिन। कायनाते दिल में फैली है उदासी दूर तक, कायनाते दिल में फैली है उदासी दूर तक। हैं ये पैगाम वफा हर समत फैलाने के दिन, फूल उम्मीदों के हर सू मुस्कुराएंगे यहाँ, फूल उम्मीदों के हर सू मुस्कुराएंगे यहाँ। देखना एक दिन फिरेंगे मेरे वीराने के दिन, फूल उम्मीदों के हर सू मुस्कुराएंगे यहाँ। देखना एक दिन फिरेंगे मेरे वीराने के दिन। आज तक हम तशना लब हैं बस इसी उम्मीद पर, आज तक हम तशना लब हैं बस इसी उम्मीद पर। जाने कब गुजरेंगे तेरे साथ मैखाने के दिन, आज तक हम तशना लब हैं बस इसी उम्मीद पर। जाने कब गुजरेंगे तेरे साथ मैखाने के दिन। क्यों न वो बामे तकब्बुर से उतरते हैं जफर, क्यों न वो बामे तकब्बुर से उतरते हैं जफर। हैं यही अहदे वफा के गर्चे दोहराने के दिन, याद आते हैं तेरी जुल्फों के बल खाने के दिन। जो गजल कहने के दिन थे, जो गजल गाने के दिन।
1: डॉक्टर जफरुल्ला अंसारी के कलाम के साथ ही आज का उर्दू प्रोग्राम खत्म होता है।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था। प्रत्येक बुधवार शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान विविध भारती पर
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं प्रियंका त्रिपाठी। आइए इनके स्वर में सबसे पहले सुनते हैं ये भजन।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक

कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से

0: जिसमें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पूर्व में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। एलिस कैप्सी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, साथ ही उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। वॉइस ऑफ प्रयागराज के साथ मैं हूं शिप्रा श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। सुस्वागतम वड़क्कम श्रोताओं। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रयागराज की महान विभूतियों के बारे में। जी हाँ, प्रयागराज वो शहर है जो विश्व गुरु भारत जब बना था तो उस क्रम में भारत के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में प्रयागराज था, जिसको आध्यात्मिक उत्थान का केंद्र माना जाता था। और यह वो क्षेत्र है जो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का क्षेत्र है। और यहाँ पर आ करके लोग जब कुंभ, महाकुंभ के अवसर पर पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं तो अनुभव करके जाते हैं कि क्यों इस नगरी को आध्यात्मिक नगरी कहा जाता है। आज इस कार्यक्रम के जरिए हम जिन विभूतियों की बात करेंगे उनमें आध्यात्मिक जगत की अगर बात करें, धार्मिक जगत की अगर हम बात करें, तो इसमें अग्रगणी नाम है महर्षि भरद्वाज का और शंकराचार्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी का। तो इनके योगदान के बारे में जब हम बात करते हैं तो रामायण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिसमें भगवान श्री राम जब माँ सीता की खोज में जाते हैं तो भरद्वाज मुनि उनका मार्गदर्शन करते हैं। और उनके बारे में अगर हम बात करें तो उनके जीवन में अनंत ज्ञान और इंद्र की सीख का एक उदाहरण सामने आता है कि जब महर्षि भरद्वाज ने अपनी लंबी आयु का एक बड़ा हिस्सा वेदों के अध्ययन में बिता दिया था, तब भी उन्हें लगा कि ज्ञान का सागर

0: असीमित है और वो उसका बहुत ही छोटा सा अंश है। उन्होंने एक बार फिर भगवान इंद्र से लंबी आयु की प्रार्थना की। इंद्रदेव ने उन्हें एक बड़ा सबक सिखाने के लिए हिमालय में पत्थरों के 3 बड़े पहाड़ बनाए और महर्षि के सामने आकर एक मुट्ठी भर रेत उन पहाड़ों से निकाली। इंद्रदेव ने उनसे कहा, हे ऋषि, ये 3 पर्वत तो वेदों के ज्ञान के प्रतीक हैं। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया वह आपके हाथ में आई रेत के बराबर है। जो ज्ञान पाना अभी बाकी है वो इन 3 पर्वतों के बराबर है। ये देखकर महर्षि भरद्वाज को एहसास हुआ कि केवल लंबी आयु बढ़ा लेने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, बल्कि इसके लिए सही दिशा और समर्पण जरूरी होता है। इसके बाद उन्होंने सांसारिक और किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर ब्रह्म विद्या को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य माना।
1: भैया, आज तो हम तुम्हें एक नए जमाने की कथा सुनाएंगे।
2: अरे बाबा, किसी भी जमाने की सुनाओ, मगर सुनाओ जरूर।
3: सियावर रामचंद्र की।

0: वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम के मंच से प्रयागराज शहर में आए विभिन्न यात्रियों और जो गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए आए हैं, उनसे मेरी ये अपील है कि अगर आप इलाहाबाद आए हैं तो इसकी एक ऐतिहासिक धरोहर भरद्वाज आश्रम आप ज़रूर जाएं। वो याद दिलाएगा आपको भरद्वाज मुनि के योगदान के बारे में। और अब चलते हैं साहित्य की ओर। साहित्य समाज का दर्पण होता है और वही एक अंग है जो समाज में एक नई पहचान दिलाता है किसी शहर को। अगर प्रयागराज से जुड़े महान साहित्यकारों की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, अकबर इलाहाबादी, ये ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने साहित्य जगत में प्रयागराज का नाम बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। और इस कड़ी में हम अपने श्रोताओं से बात करते हैं और अपने श्रोताओं में से एक हमें श्रोता जुड़ने की उम्मीद से हमसे जुड़े और वो कुछ हमसे कहना चाहते हैं। आइए, निराला जी से जुड़ी हुई कुछ प्रेरक प्रसंग हम आपको सुनवाते हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं विवेक निराला, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रपौत्र, एक पारिवारिक विरासत और परंपरा में निराला को जैसा मैंने पाया, निराला की बनावट में ही ऐसा था, उनकी निर्मिति ही ऐसी थी कि उनके लिए किसी भी सत्ता का कोई अर्थ नहीं था जब तक कि वह लोकोन वह महात्मा गांधी से लड़ चुके थे, वह हिंदी कविता के प्रश्न पर नेहरू से भिड़ चुके थे, तो अपने समय की बड़ी बड़ी सत्ताओं से भिड़ना उनके लिए एक बहुत सामान्य बात। 1953 के आसपास जो कुंभ हुआ था और उसमें जो दुर्घटनाएं हुई थी, उन दुर्घटनाओं के बाद भारत के राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद का इलाहाबाद आना हुआ, वह जहां कुंभ मेला लगा था वहां गए, उस दुर्घटना के कारणों की और तमाम उसकी और कालती अधिकारियों के साथ थे, एक बड़ा हुजूम था उनके साथ। अधिकृत कार्यक्रम को तोड़ करके, सारा प्रोटोकॉल तोड़ करके उन्होंने तय किया कि निराला से मिलना है। निराला दारागंज की एक पकड़ी सी गली में एक कमरे के मकान में रहते थे, वो भी किराए का मकान। जाहिर सी बात है कि पूरा नाव लश्कर वह उस गली में जाना, कम से कम गाड़ियां तो जा ही नहीं सकती थी, तो बाहर ही तक छोड़ छाड़ के लोग अंदर तक गए और भारतीय राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद के साथ भारत कला भवन की स्थापना करने वाले बड़े कला प्रेमी बाबू राय कृष्णदास भी थे, तो राय कृष्णदास निराला अपने कमरे से बाहर आए क्योंकि कमरे में सबको बैठाने की जगह न थी, गली में सकरी थी, गली में बाहर ही निराला मिले। तो राय कृष्णदास ने कहा परिचय कराते हुए कि अरे पंडित जी, आप जानते हैं इनको? तो निराला ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरे प्रेसिडेंसी कॉलेज के मित्र हैं, इनको भला मैं क्यों न जानूंगा। हाँ, इन्हीं के नाम के राष्ट्रपति हैं, उनको मैं नहीं जानता। और फिर दोनों गले लग के मिले, आपस में हालचाल की और भारत के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद वहां से विदा हुए।

0: किया संस्मरण इसलिए जरूरी है कि इस समय और तमाम समयों में कला के प्रति जो समर्पित लोग हैं, साहित्य के प्रति जो समर्पित लोग हैं, वो प्रायः सत्ता से, अपने समय की बड़ी सत्ताओं से, राजनीतिक सत्ताओं से अनुमोदन चाहते हैं। वो उनसे अपने संबंधों को बनाए और बचाए रखना चाहते हैं उसी रूप में जब तक कि वह राजनीतिक सत्ता के सर्वोच्च पदों पर, उच्च पदों पर अधिष्ठित है। लेकिन निराला की स्वभाव की निर्मित ऐसी थी कि वह अपने समय की बड़ी राजनीतिक हस्ती, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो और चाहे बाबू राजेंद्र प्रसाद, वह निजी संबंधों का तो अनुमोदन करते हैं, निजी संबंधों को तो अनुमन्य करते हैं, लेकिन एक राजनीतिक शिखर के तौर पर उनसे अपनी किसी पहचान, उनके किसी या उनसे किसी तरह के संबंधों को वह तुरंत नकारते हैं। और यह सारे कलाविदों को, सारे साहित्यविदों को निराला से यह सीखना चाहिए।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमारे इन श्रोता के माध्यम से वॉइस ऑफ प्रयागराज के मंच से मिला, और ये संदेश ये दिखाता है कि उनके फक्कड़पने, उनके सरलता की मिसाल कहीं ढूंढी नहीं मिल सकती, बावजूद इसके कि उनकी रचनाओं में वो ओजस्वी स्वर था जो काबिले तारीफ था। आइए सुनते हैं ये गीत। ये गीत दर्शाता है कि किस तरीके से शब्द वाणी से ज़्यादा काम करते हैं, और जो काम तलवार नहीं कर सकती वो काम शब्द कर जाते हैं।

साहित्य जगत की बात हम कर रहे थे, एक बड़ा नाम हरिवंश राय बच्चन जी का था। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जब बात करते हैं तो ये आपको बता दें कि उनका असली नाम था बच्चन, यानी बच्चा करके सब लोग उनको घर में बुलाते थे। बाद में इसी को उन्होंने अपना उपनाम ले लिया था। इतने बड़ी कवि होकर भी नाम में कोई दिखावा नहीं, बस सादगी। वो ये सिखाते हैं हमको कि बड़ा बनने के लिए बड़ा नाम नहीं, बड़ा काम चाहिए। और जब उनकी पत्नी की मौत हुई तो क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, उन्होंने ये संदेश दिया कि पैसे के अभाव में हम अपने दर्द को भूल करके उधेड़ भुन में एक नई रचना कर सकते हैं। और इस रचना ने बता दिया कि इन हजारी प्रसाद जी के शब्दों में अगर कहें तो उन्होंने कहा कि ये रचना जो है सिर्फ बच्चन जी की कहानी नहीं है, इसमें पूरा काल और पूरा क्षेत्र उभर कर आता है। और ये संदेश देता है कि दुख को भी रचना बना दो, नीरसता में भी सरजता खोजो। और यही उनका जो जीवन का संदेश था वो उनके पुत्र अमिताभ बच्चन में भी आया। उन्होंने फिल्म जगत में अपना नाम यूं रोशन किया कि बिग बी बन करके पूरे विश्व में उन्होंने फिल्म जगत में अपना नाम रोशन किया और अपने नाम के साथ साथ प्रयागराज का गौरव भी बढ़ाया। तो आइए उनकी रचना उनके पुत्र अमिताभ बच्चन पर फिल्माई गई आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सिलसिला से।

प्रयागराज ऐसी महान विभूतियों के इतिहास से भरा हुआ है जिन्होंने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया। उनमें से एक नाम स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला में आता है, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों को बचाने के क्रम में उनके बारे में ये बात सामने आई थी कि उन्होंने बिना कोई फीस लिए 153 स्वतंत्रता सेनानियों की अदालत में सफल बचाव किया और उनको फांसी से बचाया। ये देश प्रेम की बहुत बड़ी मिसाल है। उस दौरान जिन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, मालवीय जी ने हाई कोर्ट में वकालत छोड़ रखी थी, लेकिन इन भारतीयों को बचाने के लिए उन्होंने अपना गाउन दोबारा पहना और पैरवी की और 170 से 153 लोगों को फांसी से बचा लिया। उनके अगर व्यक्तिगत क्षमा और मानवीय दृष्टिकोण की बात करें तो एक बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के दौरान कुछ छात्र अनुशासनहीनता के कारण आर्थिक दंड से दंडित किए गए थे। मालवीय जी के पास वो आए।

माफ़ी मांगने के लिए। प्रोफेसरों ने इसका विरोध किया। जब मालवीय जी ने बताया कि वो खुद जब छात्र थे तो गंदे कपड़े पहनने पर उन पर 6 पैसे का जुर्माना लगा था और उन दिनों 6 पैसे की बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। उस घटना को याद करके उनका दिल छात्रों को माफ़ कर देता था। ऐसी थी उनकी महानता, उनका सादगी भरा व्यक्तित्व। और इन सभी महान विभूतियों के लिए कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं ये खूबसूरत सन्नाकमा।

आज के वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम का हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, हमें अपनी प्रतिक्रिया से अवगत ज़रूर कराइएगा। हमारा फ़ोन नंबर है 8004926250। आप हमें फेसबुक पर भी अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत करा सकते हैं। आकाशवाणी प्रयागराज के पेज पर जाइए और अपनी प्रतिक्रियाएं टाइप करिए। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का रहेगा इंतज़ार। इसी के साथ वॉइस ऑफ प्रयागराज समाप्त करने की शिप्रा श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, अरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
3: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल।

0: स्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी चर्चा को विस्तार दीजिए।
1: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
0: जी।
1: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
0: जी
1: विमलेश जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
1: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
0: जी।
1: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
0: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी।
1: जी
0: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
1: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले।
0: जी।
1: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
0: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
1: जी हाँ जरूर।
0: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं
0: जी।
1: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं।
0: जी।
1: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
0: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
1: जी
0: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
1: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
0: जी।
1: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
0: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं जैसे मोरिन खोर।
1: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
0: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे। ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात ये है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोभी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
0: तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी गोभी के शीत मरुस्थल की।
1: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं?
1: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं।
0: जी।
1: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक

0: सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
1: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
2: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
3: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
2: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
3: अरे वो देखो बंदर।
4: ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
2: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
5: हाँ, ये तो सही कह रहे हो।
3: अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
2: क्या करेंगे, देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
1: अचानक
3: ओ, ये तो रीच की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीच आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
2: क्या करें क्या करें, जल्दी सोचो क्या करें।
3: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
2: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
1: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
2: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
1: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
3: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
1: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
3: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
1: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
3: ये रीच तो मुझे सूंघ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
1: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
3: बच गए, लगता है रीच चला गया।
1: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
2: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
1: और अपने साथी से जाकर पूछा,
2: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
1: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
3: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
1: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
6: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम अकादमिक समन्वय, डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: अरे इस बार भी नहीं लगी। अरे
5: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको, रुको। मैं
7: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
5: हा?
7: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
7: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
6: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
7: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

0: अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं की रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है, चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगों का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: नहीं करने देंगे।
5: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
6: गौरमा, गौरमा,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
6: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
2: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
6: गौरमा,
2: हाँ,
6: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
2: क्या?
6: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
2: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
7: हाँ गौरमा,
8: हाँ गौरमा,
2: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
1: बिल्कुल,
2: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
7: हाँ गौरमा,
8: हाँ,
7: सब तैयार
8: हैं। किसी भी हाल में जंगल कटने नहीं देंगे।
7: बिल्कुल नहीं कटने।

0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
1: ये है जंगल के उपकार,
2: मिट्टी पानी और बयान,
1: मिट्टी पानी और बयान।
3: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
4: अरे क्या कर रहे हो?
5: मेरा मुंह के ताक रहे हो? बजाओ शुरू।
4: अरे भाई कौन है? रुको, हम चिपक जाएंगे पेड़ से।
1: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
5: आगे बढ़ो।
4: अरे कहां से
5: तुम इनकी बातों में बताओ? मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए।
4: चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम।
1: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
6: नहीं लगाने देंगे।
1: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
4: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
5: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
3: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
5: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
3: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
3: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
1: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।

अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहायक कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। फिल्म संगीत एक ही कलाकार, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में। एहसास की धूप छाओं में, हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 FM आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

पेशे खिदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत एक ही कलाकार। सभी सुनने वालों को अतुल यादव का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस सितारे की जिसकी शख्सियत में नवाबी ठाट भी है, आधुनिकता भी और अभिनय की विविधता भी। जी हाँ, आज के हमारे कलाकार हैं सैफ अली खान। सैफ अली खान का जन्म 16 अगस्त 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी और मां बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा शर्मिला टैगोर हैं। श्रोताओं, सैफ अली खान उस पटौदी परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसे नवाबी परंपरा के लिए जाना जाता है और उनकी शख्सियत में ये बात साफ नजर आती है। अपनी शुरुआती पढ़ाई से लेकर कॉलेज कंप्लीट करने के बाद सैफ ने विज्ञापन के क्षेत्र में काम करना शुरू किया और फिर फिल्मों का रुख किया। साल 1992 में फिल्म परंपरा से करियर की शुरुआत करने वाले सैफ को पहचान मिली ये दिल्लगी फिल्म से। साल था 1994 और उसके बाद जो ये सफर शुरू हुआ तो दिल तेरा दीवाना, हमसे बढ़कर कौन, बीवी नंबर वन, आरजू, कच्चे धागे और परिणीता जैसी न जाने कितनी फिल्मों में यादगार भूमिकाओं के साथ चलता रहा।

1990 के दशक के मध्य तक सैफ अली खान रोमांटिक और कॉमेडी भूमिकाओं में अपनी पहचान बना चुके थे। उनकी सहज अभिनय शैली दर्शकों को पसंद आने लगी थी, लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ आया साल 2001 में, जब दिल चाहता है रिलीज हुई। इस फिल्म में समीर के किरदार ने उन्हें यंगस्टर्स का चहेता बना दिया था।

श्रोताओं, सैफ अली खान ने केवल रोमांटिक भूमिकाओं तक ही खुद को सीमित नहीं किया, बल्कि उन्होंने अलग अलग किरदार निभाकर अपनी अभिनय क्षमता को साबित भी किया। साल 2004 में फिल्म आई हम तुम, जो उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही। इसके बाद उन्होंने ओमकारा, लव आजकल और न जाने कितने फिल्मों में अपनी शानदार अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया।

श्रोताओं, सैफ अली खान की खासियत रही कि वे हर दशक में खुद को नए रूप में प्रस्तुत करते रहे। फिल्म ओमकारा में लंगड़ा त्यागी का रोल निभाकर उन्होंने आलोचकों को भी प्रभावित कर दिया था। तो वहीं साल 2009 में आई लव आजकल के यंगस्टर्स के बीच उन्हें जो पहचान मिली वो आज तक मिट नहीं पाई।

श्रोताओं, व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो सैफ ने साल 1991 में अमृता सिंह से शादी की, जिससे उनके दो बच्चे सारा और इब्राहिम हैं। आगे चलकर सैफ और अमृता के रास्ते अलग हो गए और फिर 2012 में उनकी जिंदगी में आई करीना कपूर। सैफ अली खान को वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सिल्वर स्क्रीन के बाद जब दौर आया ओटीटी का, तो यहां भी सैफ ने खुद को बखूबी साबित किया।

0: तो श्रोताओं, ये थी कहानी उस अभिनेता की जिसने विरासत में नवाबी शान तो पाई लेकिन अपनी पहचान बनाई अपने हुनर, अपनी मेहनत और अपने अभिनय से। जी हाँ श्रोताओं, सफलता केवल परिवार के नाम से नहीं मिलती, ये मैसेज कन्वे किया कहीं ना कहीं सैफ अली खान ने अपनी इस जर्नी से। ये पता चलता है कि अपने काम से साबित करना पड़ता है अपने खानदान का नाम। जी हाँ, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। और अब अपने दोस्त अतुल यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ मैं, आपका अपना दोस्त अतुल यादव। प्रोग्राम है फिल्म संगीत। जी हाँ श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको गाने तो सुनवाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ट्रैफिक व्यवस्था पर। सड़कें केवल रास्ते नहीं होती, ये लोगों को जोड़ती हैं, सपनों को मंजिल तक पहुंचाती हैं और विकास की रफ्तार तय करती हैं। लेकिन जब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी होती है ना, तो यही सड़कें दुर्घटनाओं का कारण भी बन जाती हैं। तो अब से लेकर के आधे घंटे में हम बात करेंगे सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों, नागरिक जिम्मेदारियों और बेहतर यातायात व्यवस्था की। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसे गाने की जो जीवन की राहों को और सफर की बात करता है। जी हाँ, अंदाज फिल्म का एक गाना है। हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने, आवाज किशोर कुमार की।

श्रोताओं, आज की जो यंग जनरेशन है, ये जब गाड़ी लेकर रोड पर चलती है ना, तो इट्स माय लाइफ के अंदाज में चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एक मैसेज ज़रूर देना चाहेंगे अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से। इट्स योर लाइफ, नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ आप जब सड़क पे चलते हैं तो बहुतों की ज़िंदगी और भी होती है, तो उनका भी अपना जीवन है और उन्हें सुरक्षा का पूरा अधिकार है। आपकी फ्रीडम का बिल्कुल भी ये मीनिंग नहीं होता कि आप मनमानी करें। सड़क पर चलते समय हर व्यक्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। भारत में हर साल लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें से बड़ी संख्या ऐसी होती है जिन्हें थोड़ी सी अगर हम सावधानी बरतें तो रोका जा सकता है। ट्रैफिक व्यवस्था का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं है, बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, सड़क पर अनुशासन बनाए रखना है, समय की बचत करना है, प्रदूषण कम करना और आपात सेवाओं यानी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको फ्रीली लोगों तक पहुँचने देना है, यानी सुगम बनाना है। क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत से परिवारों की खुशियाँ छीन सकती है। बातें और भी करेंगे, लेकिन सुनते हैं अगला गाना जो कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों को इंडिकेट करता है अपने लिरिक्स के द्वारा। जी हाँ, ये प्यारे से बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत ओपी नैयर का और आवाज़ गीता दत्त की।

इस खूबसूरत से गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का और उन बातों पे ध्यान देने का जिन पे कि हम चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, आम गलतियां जो दुर्घटनाओं को न्योता देती हैं। बात कर लेते हैं सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में जो शामिल हैं, उनमें से हैं तेज गति से वाहन चलाना, मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, शराब पीकर वाहन चलाना, गलत दिशा में यानी रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाना और एक सबसे ज़रूरी कारण रेड लाइट जंप करना। जी हाँ, कई बार लोग सोचते हैं कि जो येलो लाइट है उसके होते ही लोग और स्पीड बढ़ा करके क्रॉस करना चाहते हैं कि रेड सिग्नल होने से पहले हम जंप कर जाएं, लेकिन उन्हें बता दें कि आप तो येलो लाइट लास्ट टाइम पे क्रॉस कर रहे हो येलो सिग्नल होने के बाद, लेकिन दूसरी तरफ उसी वक्त ग्रीन सिग्नल भी हो चुका होता है और ये वो वक्त होता है जबकि अगला भी अपनी पूरी रफ्तार से होता है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आमने सामने एक्सीडेंट होने की। तो दोस्तों प्लीज़ आप इस बात का ख्याल रखिए कि येलो सिग्नल आपको रफ्तार बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि रफ्तार धीरे करने के लिए होता है। अपनी सुरक्षा भी रखें और दूसरे की सुरक्षा का भी पूरा का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि बस दो मिनट की तो बात है, यहाँ कौन देख रहा है। लेकिन आपको ये जानना होगा कि ये सड़क पर जो नियम बनाए गए हैं ना, ये पुलिस के लिए नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो ध्यान रखिए, ना पहुँचने से ज़्यादा बेहतर है देर से पहुँचना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं परिचय फिल्म का वो गाना जिसके लिए गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत आर डी बर्मन का है, आवाज किशोर कुमार की।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: हाँ तो अब बात कर लेते हैं एक बार अपने पैदल चलने वाले साथियों से और साथ ही साथ टू व्हीलर वाले अपने दोस्तों से। जी हाँ, ट्रैफिक के नियम केवल वाहन चालकों के लिए नहीं होते, पैदल चलने वालों के लिए भी होते हैं। और उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें चाहिए कि जब भी वो रोड क्रॉस करें तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें, चलते समय फुटपाथ पर चलने की कोशिश करें और ट्रैफिक सिग्नल्स का पूरा पालन करें। और वहीं हमारे जो टू व्हीलर वाले साथी हैं उन्हें हमेशा हेलमेट पहनकर रखना चाहिए, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रिपलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके साथ साथ सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जो भी हमारे टू व्हीलर्स डिज़ाइन होते हैं वो दो सवारियों के लिहाज से डिज़ाइन होते हैं, और जब आप उन पर तीन लोगों को बैठाते हैं तो कहीं ना कहीं ओवरवेट होने के चलते उनका अलाइनमेंट गड़बड़ हो सकता है और उसके चलते वो डिसबैलेंस हो सकते हैं और वो आपके साथ साथ सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए घातक हो सकता है। इसके अलावा ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि स्पीड लिमिट शहर के लिए जगह जगह इंडिकेट की होती है, उनको समय निकाल करके आप पढ़िए जरूर। जब भी आप सिग्नल पे खड़े हुई है तो अगल बगल देखिए कि वहां पे दीवारों पे या होर्डिंग्स पे कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन लिखे होते हैं जो कि आम जनता के लिए होते हैं। तो जल्दबाजी करने से बेहतर है उस समय का उपयोग आप नियमों को पढ़ने में लगाइए और उसके बाद उन नियमों को आत्मसात भी करिए, क्योंकि एक बात कही जाती है कि जब तक हम किसी भी नियम को, किसी भी प्रिंसिपल को एप्लीकेशन फॉर्म में न लेके आए, यानी कि उनको हम लागू न करें अपने जीवन में, तब तक उन नियमों का कोई महत्व नहीं होता है। और इसके साथ साथ जो हमारी जेन जी है उनसे ये निवेदन है कि स्टंट करने से हमेशा बच के रहिए, क्योंकि आप जो सड़क पे स्टंट करते हो आप कहीं ना कहीं खुद को भी खतरे में डालते हो और चलने वाले दूसरे लोगों को भी खतरे में डालते हो। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, काला पत्थर फिल्म का गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं, साहिर लुधियानवी का बोल है, संगीत है राजेश रोशन का, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, आज देश के कई शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे सीसीटीवी कैमरे, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम, डिजिटल चालान, ऑटोमेटिक सिग्नल कंट्रोल, जीपीएस आधारित निगरानी। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि सुरक्षित और सुचारू यातायात सुनिश्चित करना है। अगर हर नागरिक नियमों का पालन करे तो ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाएं और तनाव काफी हद तक कम हो सकते हैं। और साथ ही साथ तनाव कम करने के लिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी से प्यारे प्यारे गाने। अगला गाना मधुमति फिल्म से है, शैलेंद्र का गीत, सलिल चौधरी का संगीत और आवाज मुकेश की है।

श्रोताओं, सड़क सुरक्षा किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। जब हम हेलमेट पहनते हैं, जब हम सीट बेल्ट लगाते हैं, जब हम निर्धारित गति का पालन करते हैं और ट्रैफिक नियमों का सम्मान करते हैं, तब हम केवल अपना नहीं बल्कि दूसरों का जीवन भी सुरक्षित करते हैं। याद रखिए, नियमों का पालन मजबूरी नहीं समझदारी है। सड़क पर जल्दबाजी नहीं जिम्मेदारी दिखाइए। सुरक्षित सफर ही सफल सफर कहा जाता है। इसी संदेश के साथ मैं अतुल यादव आपसे विदा लेता हूं। सुनते रहिए हमारा ये आखिरी गाना।

सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी संभल कर निकल सको तो चलो। उम्मीद है ट्रैफिक जागरूकता पर यह प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और यातायात नियमों का सम्मान कीजिए। नमस्कार।

इस खूबसूरत से गाने के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 12 बजे हैं, सुनिए समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। राष्ट्रपति इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: खेलकूद में आज भी एक ऐसे वाला कपड़ा का बॉल बना के वो खेलते हैं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत। आज भी गांव-गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव-गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एकलव्य विद्यालय को दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस क्यों है, किट नहीं किस फेमस आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ ट्राइबल्स 25,000 या 30,000 बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
2: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्य

मंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुबर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर

0: कागार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुबर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। President Draupadi Murmu today inaugurated the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi. Addressing the occasion, the President said that tribal society living across the country is culturally very rich and efforts must be made to bring the tribal community forward. She said development must reach the last home and the last village. Ms. Murmu expressed concern that there are still some sections of tribals who are unaware of the various schemes of the government.
2: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े अभी भी कोई पेड़ के मंच के रहते रहते हैं। उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
1: West Bengal's former ruling party, the Trinamool Congress, is in turmoil and on the verge of split. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee claims the support of nearly 60 MLAs, a number that could decisively shift control of the assembly. His faction has already written to Speaker Rathindra Bose asking to be recognized as the real TMC. In a counter-move, TMC announced Shobhanand Deb Chattopadhyay as the leader of the house with Ashima Patra and Nayan Bandopadhyay as deputies and Farhad Hakim as chief whip. Former Chief Minister Mamata Banerjee at a rally in Kolkata accused the BJP of orchestrating the split. The Central Board of Secondary Education CBSE has said that nearly 40,000 students have successfully submitted their re-evaluation applications and completed the application process without facing any issues. CBSE had yesterday opened the online portal for verification of issues observed in scanned copies of answer books and re-evaluation of answers for class 12 students. The facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. India has surpassed the United States in annual solar capacity additions to become the world's second largest solar growth market in 2025. Highlighting the remarkable achievement, Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi today said that the country's solar growth story is setting global benchmarks and driving record capacity additions through strong policy support, innovation and world-class infrastructure. Senior Congress leader D.K. Shivkumar will be sworn in as the Chief Minister of Karnataka today. Governor Thavarchand Gehlot will administer the oath of office and secrecy to Mr. Shivkumar and members of the new cabinet at Lok Bhavan in Bengaluru. Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandviya has urged India's youth to embrace cycling and lead the movement for a fitter, healthier and greener nation. Sharing a video message on the World Bicycle Day, the minister noted that adopting cycling as a regular habit can encourage a balanced and disciplined lifestyle while also supporting environmental

0: sustainability and cleaner mobility.
1: Cycling hame fit rakhti hai.
2: Cycling keeps us fit, energizes the body and improves mental health. The more we use the cycle, the less pollution there will be and the country will benefit from the saving of petrol and diesel. In this era of global challenges, Prime Minister Narendra Modi has also urged the people of the country to reduce their dependence on petrol and diesel vehicles. In this regard, cycling can become an effective and positive solution.
0: Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a five-day visit to India from today. During the visit, she will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi to review the full spectrum of India-Venezuela relations. Benchmark domestic equity indices were trading with losses in the forenoon session today. The Sensex shed 948 points to 73,702, while the Nifty fell 268 points to 23,216 when reports last came in. In Indonesia Open Badminton today, H.S. Pranoy will face Ireland's Nat Nguyen and Ayush Shetty will meet China's Wang Hongyang in men's singles. In women's singles, Unnati Huda will take on Japan's Nozomi Okuhara this evening. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से लड़े करेंगे रात 9:30 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों के अंतर्गत उस्ताद अली अकबर खां का सरोदवादन सुनिएगा अब से कुछ ही देर में यानी 12:15 पर और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन हम आपको सुनवाएंगे रात 10:30 बजे। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश हम लेकर आएंगे दिन में 12:30 बजे। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। 1:15 पर महिलाओं का अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी होगा। ढाई बजे लोकगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे सुखनंदन और साथी विनीता तिवारी और विकास चंद पांडे।

फिल्म संगीत कार्यक्रम शाम 5 बजे और रात 10 बजे होगा। इसके अलावा फिल्मी गाने ही आप सुनेंगे चित्रपट संगीत कार्यक्रम में रात 8 बजे। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी रोजाना की तरह 5:15 पर होगा। 6:30 बजे ग्रामीण भाई अपने कार्यक्रम पंचायत घर में राजेश राज पुरोहित से नीति वचन सुनेंगे, साथ ही आनंद लेंगे बरमदीन यादव और साथियों के गाए लोकगीतों का।

बोलते नगमे यह विशेष कार्यक्रम 7:31 पर प्रसारित किया जाएगा। स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का होगा। और रात 8:30 सुनिएगा प्रोग्राम सबरस। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद अली अकबर खां का राग मधमात सारंग में सरोदवादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली अकबर खां का राग मधुमाद सारंग में सरोदवादन। अब आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: हाँ नमस्ते मैडम, मैं महेंद्रनाथ कुशवाहा प्रयागराज हवेलिया झूंसी से महेंद्र कुशवाहा बोल रहा हूँ।
0: महेंद्रनाथ कुशवाहा जी हवेलिया झूंसी से कॉल कर रहे हैं, तो किस गाने को सुनना चाहते हैं?
1: मैडम सूरज का बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है।
0: राजेंद्र कुमार के ऊपर फिल्म आया हुआ ये
1: हाँ
0: गाना।
1: मैडम राजेंद्र कुमार ऊपर गया हुआ है।
0: जी
1: और
0: जी
1: आप प्रोग्राम सभी मैडम बहुत अच्छे करते हैं, चाहे वो धरती के गीत हो चाहे लोकगीत हो, कोई भी प्रोग्राम सब बढ़िया जो है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी।
1: हाँ मैडम और थोड़ा सा नाम लेने हैं जो है।
0: हाँ
1: सुकुम
0: हाँ ले
1: कुशवाहा,
0: लीजिए।
1: शिवम कुशवाहा, सत्यम कुशवाहा, सुमिता कुशवाहा, दीपिका कुशवाहा।
0: तो सुनिए सूरज फिल्म का ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: इस दुनिया में अगर रेडियो न होता तो डांस कौन के सदाओं होता है? राजेंद्र कुमार नाम के आचार्य
0: विविध भारती का श्रोता। तो राजेंद्र जी विविध भारती के श्रोता हैं, तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, इस ऐसे तड़पते हुए मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी है।
0: जी जी,
1: तो इन्हीं सब बातों पर ध्यान देते हुए आज हम ये फरमाइश को जो किया है वो फिल्म अपना देश से है। लो रे ले लो बाबू,
0: पी लो नारियल पानी। वही नारियल पानी
1: कहना। हेलो,
0: हाँ हाँ बोलिए राजेंद्र जी, सुन रहे हैं।
1: मौसम आया धूप का गर्मी का महीना, मौसम आया धूप का गर्मी का महीना है। सूखे सूखे होंठ और माथे पे पसीना है, इस गर्मी से छुटकारा पाने की बस नारियल पानी पीना।
0: जी, नारियल पानी के साथ साथ नींबू पानी भी पीजिए और सत्तू का शरबत भी पीजिए।
1: हाँ,
0: तो चलिए आपकी पसंद का ये गाना सुनवाया जाए।
1: जी नहीं, जी नहीं।
2: ले लो ना नारियल।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: मैम नमस्ते, मैं प्रयागराज से शिवानी यादव बोल रही हूँ।
0: शिवानी जी नमस्कार, कैसी हैं आप?
1: मैम मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, और आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ शिवानी जी। कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम दो को हमारे भाई का और तीन को, दोनों मतलब जिस को हमारे भाई का बर्थडे है, तो
0: अरे
1: मैं
0: वाह
1: अपने भाई को बर्थडे गीत पे डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: जी,
1: बार बार ये दिल आए, बार बार ये दिल गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी याद। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सुनीता, हैप्पी बर्थडे।
0: अच्छा, 2 तारीख को आपके एक भाई का और 3 तारीख को दूसरे भाई का है,
1: यस मैम,
0: अगल बगल एकदम बर्थडे है।
1: मतलब दोनों चाची के बेटे हैं।
0: अच्छा, चलिए भाई, हमारी तरफ से भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और
1: जो
0: शिवानी जी,
1: तीन को,
0: हाँ
1: जो भाई का 3 जून को बर्थडे है, वो भाई हमारे घर के सबसे बड़े बेटे हैं, सबसे
0: अच्छा
1: बड़े भाई
0: अच्छा
1: हैं।
0: चलिए तो ठीक है
1: जो वो
0: शिवानी जी।
1: इनका दो को है
0: हाँ
1: वो छोटे हैं,
0: अच्छा, तो आपको
1: उनका नाम
0: सुनवाएं?
1: सनी है। मैम
0: हाँ
1: नाम ले
0: हाँ
1: सकते हैं?
0: बिल्कुल ले सकते हैं, बताइए। एक
1: मैम
0: एक तो
1: जिनका
0: सनी है।
1: दो को बर्थडे है उनका नाम सनी है, और जो भाई का 3 को है उनका नाम पवन भैया है।
0: तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: हाँ, मैं लाली बोल रही हूँ, नैनी शंकर ढाल से।
0: हाँ जी लाली जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: बेताब का,
0: बेताब फिल्म का। ये सनी देओल अमृता सिंह की फिल्म थी।
1: अमिता सिंह, हाँ
0: हाँ
1: सनी देओल
0: पहली
1: अमिता
0: फिल्म
1: सिंह।
0: थी। बताइए कौन सा गीत सुनेंगी?

0: जी
1: तुमने दिया वाजिलो
0: आ गया,
1: मैया।
0: आ गया। और आपकी पसंद का गाना भी आ गया है, बेताब फिल्म से। तो लाली जी, किसी का नाम तो नहीं लेना चाहती हैं आप?
1: नहीं, नाम नहीं लेना, मेरी छोटी बहन है गुड़िया।
0: अच्छा, चलिए तो आप गुड़िया के साथ मिलकर सुनिए बेताब फिल्म का ये गाना।

अभी श्रोता सुन रहे थे अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। ये कार्यक्रम पेश कर रही थी मधु कुमार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

ईश्वर एक है, हम सब उसकी संतान हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई हम बाद में हैं, सबसे पहले हम एक इंसान हैं।

0: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। एक बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
2: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
1: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की

शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविधि सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।

0: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीराला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मुश्तरका डिवीज़नल खरीफ पैदावारी सेमिनार 2026 का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीराला ने कहा कि खरीफ सेमिनार के ज़रिए हुकूमत किसानों को बीज के मेयार, टेक्नोलॉजी और जदीद ज़रई तरीक़ों के साथ साथ हुकूमती मंसूबों और तैयारियों से आगाह करती है। वज़ीराला ने कहा कि उत्तर प्रदेश अनाज पैदा करने वाली सबसे बड़ी रियासत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उत्तर प्रदेश चीनी, आलू, दूध और एथेनॉल पैदावार में पहले नंबर पर है। वज़ीराला ने कहा कि खरीफ सेमिनार कीमियाई खादों और कीड़े मार अदवियात को कम से कम करने और ज़रात को मज़ीद कुदरती सतह पर बहाल करने में फ़ायदेमंद साबित होगा। अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन वज़ीराला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इलाके में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तामीरशुदा फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। इससे कबल कल वज़ीराला ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत के 270 तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीराला ने कहा कि डबल इंजन हुकूमत ने तरक्की, तहफ़ और रोज़गार का नया माहौल बनाया है। जनाब योगी ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि स्कीमों का फ़ायदा आखिरी शख्स तक पहुंचे।
1: मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं।
0: वज़ीराला ने कल ही गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से सियाहत की तरक्की और खूबसूरती के मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबका हुकूमतों ने झीलों और तालाबों को नज़रअंदाज किया, लेकिन डबल इंजन हुकूमत उनकी हिफाजत कर रही है। ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की एक अहम मीटिंग 4 और 5 जून को वाराणसी में होगी। इस बैन अल-अक़वामी इवेंट में ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहदा अरब अमीरात समेत 11 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मुलाकात के दौरान सकाफत, विरसे के तहफ़ और बाहमी सकाफती तआवुन से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ब्रिक्स के मंदूबीन के काशी दौरे को यादगार बनाने के लिए सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। वाराणसी के रीजनल कल्चरल ऑफिसर डॉक्टर राम नरेश पाल ने बताया कि मंदूबीन की आमद पर हवाई अड्डे से लेकर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फोक डांस पेश किया जाएगा। हुकूमत ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ज़रिए अख्तियार करदा ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक मामलात की जांच के लिए एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सरबराही कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरमैन एस राधा चौहान करेंगी। कमेटी एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पर्सनल और ट्रेनिंग महकमे को पेश करेगी। इस दरमियान बोर्ड ने कल दर्जा 12 के तलबा के लिए स्कैन शुदा जवाबी पर्चों में पाई जाने वाली गलतियों की तस्दीक और जवाबात का दोबारा जायज़ा लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सहूलत सिर्फ उन तलबा के लिए दस्तियाब होगी जिन्होंने अपनी जाँच शुदा जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपियां हासिल कर ली हैं। इस दरमियान इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सीनियर अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया चेयरमैन मुकर्रर

0: किया गया है। जनाब सीताराम इससे कबल वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। CBSE सेक्रेटरी का भी तबादला कर दिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने गुज़िश्ता 12 बरसों में गैर मामूली तब्दीली देखी है, जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूल पर कार फरमा है। आज हम ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर एक खसूसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
1: साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं का अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: नमस्कार, आप सभी श्रोता सुन रहे हैं आज का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी और मैं आ गई हूँ रितिका
1: और मैं पूनम।
0: आप सभी का स्वागत करने आज के कार्यक्रम में। तो पूनम, हर बार तो हम अपना कार्यक्रम इस तरह शुरू करते थे कि क्या मौसम है और क्या हो रहा है, लेकिन आज जो हमारा कार्यक्रम है वो एक बहुत ही रोचक विषय पर आधारित है, या ये कहें उसकी चर्चा बहुत ही रोचक विषय पर आधारित है, और वो है गर्मी की छुट्टियां और बचपन। तो जब बात छुट्टियों की होती है तब ना मौसम समझ में आता है ना उसकी रंगत समझ में आती है, ना ही सर्दी समझ आती है और ना ही गर्मी समझ आती है।
1: ये शायद इसलिए होता है क्योंकि इन गर्मी की छुट्टियों का हम लोग साल भर से इंतजार करते हैं।
0: बिल्कुल, जब गर्मी की छुट्टियां हमारे बचपन की, यही गर्मी की छुट्टियां हमारे बचपन की सबसे सुनहरी यादों में से एक होता है, यादगार दिनों में से भी एक होती है। जैसे ही स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा होती थी, बच्चों के चेहरे पर खुशी से एकदम मुस्कुराहट खिलखिलाहट थी।
1: ना स्कूल जाने की चिंता, ना सुबह जल्दी उठने की जल्दबाजी, बस खेल मस्ती और नई नई गतिविधियों का आनंद। बचपन में गर्मी की छुट्टियों की सबसे खास बात होती थी दादी नानी के घर जाना, वो भी ट्रेन के सफर में या फिर बस के सफर में। रास्ते भर का उत्साह, फिर गांव या कस्बे में पहुंचकर रिश्तेदारों से मिलना।
0: अच्छा, ये सारे अनुभव आज भी हमारी स्मृतियों में इस तरह से ताज़ा हैं पूनम, कि जैसे ऐसा लगता है मानो कल की ही बात है। आम के बागों में घूमना, पेड़ों से आम तोड़ना, कुएं या हैंडपंप के ठंडे पानी से नहाना और रात में खुले आंगन में चारपाई पर सोना हमारी छुट्टियों का अनमोल हिस्सा हुआ करता था। और उस समय मनोरंजन के साधन थे हमारे खेल, जिसका आनंद असीम था। हम सभी बच्चे मिलकर कभी गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, लुका छिपी, पिट्ठू, क्रिकेट, न जाने कितने ही खेल खेलते थे पूरी दोपहरी। और तब न गर्मी महसूस होती थी और ना ही कोई थकान, डांट अलग पड़ती रहती थी, लेकिन तब भी बस घंटों दोस्तों के साथ खेलना, बिना समय का ध्यान दिए मस्ती करना, यही हमारे बचपन का सबसे अनमोल स्मृतियों में से एक है।
1: बिल्कुल, और बचपन में दोपहर को कूलर के सामने जब सभी लोग इकट्ठा होकर बैठते थे तो माँ और दादी नानी के हाथों से कटे हुए ठंडे ठंडे ताज़ा आम तरबूज खाना, रू अफजा का शरबत पीना, दही या फिर ठंडी ठंडी लस्सी पीना, है ना, ये सब भी तो हमारी

0: बचपन की यादों में शामिल हैं। और बचपन की उन तपती दोपहरी में जब माँ और नानी सोने के लिए डांटती थी, जैसा कि आपने कहा भी, तब हम सारे भाई बहन, सहेलियाँ, दोस्त सब मिलकर चुपके से बिस्तर पर ही लूडो और ताश की गड्डियाँ खोल देते थे, है ना?
1: बिल्कुल। अच्छा, गर्मी की छुट्टियां ना केवल मनोरंजन का समय ही नहीं होती थी, बल्कि हर बार हमारे लिए कुछ ना कुछ नया सीखने का हमें अवसर भी देती थी। कोई चित्रकला सीखता था, कोई संगीत, कोई नृत्य, तो कोई अपने अंदर किताबें पढ़ने की आदत को विकसित करता था। परिवार के बड़े बुजुर्गों से कहानियां सुनना और उनसे जीवन के अनुभव जानना भी एक अलग ही आनंद सा होता था।
0: बिल्कुल। और शाम को छत पर पानी जब छिड़का जाता था, तो उस मिट्टी की जो सौंधी सौंधी खुशबू
1: आज भी याद
0: आज
1: है।
0: भी हमारे मन में है, हमारे दिमाग में है, और आज के महंगे रूम फ्रेशनर से भी वैसी खुशबू नहीं मिलेगी।
1: बिल्कुल।
0: और रात को जब छत पर चारपाई लगाकर तारों की छांव में दादी नानी की कहानियां सुनते थे हम लोग और सो जाते थे, आज के दौर में वो मुमकिन नहीं है शायद।
1: नहीं, आज के दौर की अगर बात करें ना पूनम, तो आज के समय में तकनीक और मोबाइल फोन्स ने बच्चों की दुनिया को काफी बदल दिया है, या ये कहें कि हमारे बचपन से बहुत अलग कर दिया है।
0: बिल्कुल।
1: फिर भी गर्मी की छुट्टियों का महत्व आज भी उतना ही है। गर्मी की छुट्टियां हमें परिवार के साथ समय बिताने का, प्रकृति के करीब जाने का और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है। जिन्हें अगर हम गर्मी की छुट्टियों की बात करें, तो ये हमारे बचपन की वो सभी उन सभी यादों को समेटती है अपने अंदर। हम सभी के लिए ऐसी अमूल्य धरोहर है, जिन्हें याद करके हमारे चेहरे पर मुस्कान आती है और ही मन उन स्मृतियों से मन चहक उठता है। ये यादें हमें सिखाती हैं कि सच्ची खुशी छोटी छोटी बातों और अपनों के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों में छिपी होती हैं। इसलिए गर्मी की छुट्टियों की अगर बात करें, तो ये हमारे जीवन के अमूल्य धरोहरों में से एक रही है, इससे जुड़ी स्मृतियाँ। और अब जब बात गर्मी की छुट्टियों का कर रहे हैं, आनंद का कर रहे हैं, मनोरंजन की कर रहे हैं, तो चलिए आज के मनोरंजन की ओर ले चलते हैं, आज के पहले गीत की ओर ले चलते हैं अपने श्रोताओं को।

0: तो जब बात कर ली है गर्मी की छुट्टियों की, तो अब बात कर लेते हैं कि इन्हीं गर्मियों में या ग्रीष्म ऋतु में हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए। इस वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर ऋतुराज, आइए सुनते हैं।
1: दोस्तों, जैसे धरती का तापमान बदलता है ना, जैसे हवा में नमी का जो उसकी तीव्रता होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी रूखी हो जाती है, उस अनुसार ही हमें अपना आहार विहार रखना चाहिए। तो आज हम ग्रीष्म ऋतु में कैसा हो आहार विहार, उस पर बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ऋतुराज त्रिपाठी, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हंडिया में पढ़ाते हैं, लोगों को गाइड करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य को सुधारा है आपने। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, जितने विनम्र हम होते हैं, जैसा हमारा व्यवहार होता है, क्या हमें अपने सिस्टम के प्रति भी उतना ही विनम्र होना चाहिए, जो इंटरनल सिस्टम है, ताकि वो अच्छे से पचे। कई बार हम भोजन करते हैं और यूं दौड़ दौड़ के खाया और फिर विदाउट थिंकिंग कि नहीं वो पच जाए या उसे किसी खास स्थिति की ज़रूरत है, हम अगले काम पर निकल लेते हैं।
2: इस संबंध में मैं आयुर्वेद की एक उक्ति का जो
1: जी
2: है जिक्र करना चाहूँगा
1: हाँ
2: कि आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य है
1: जी
2: उसको लेकर के बहुत ही स्पष्ट जो है वो हमारे आचार्यों ने कहा है कि समदोषा समाग्निश्च सम धातु मलक क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीते। अर्थात इसका मतलब केवल अगर हम सामान्य शब्दों में समझें तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इसकी प्रकृति का निर्धारण हो जाता है। और जो प्रकृति है वो वात पित्त कफ, वैसे हमें लगता है कि सामान्य श्रोतागण से परिचित होंगे,
1: जी जी
2: आयुर्वेद में इसका बड़ा महत्व है। तो अगर ये वात पित्त कफ जो दोष कहलाते हैं और ये
1: जी
2: प्रकृतियां भी, शारीरिक प्रकृति, ये समावस्था में रहे, इसके साथ साथ हमारा जो बल है वो समावस्था में रहे, जिसको हम धातु से हम बल प्राप्त करते हैं, हमारा जो मन है वो प्रसन्न रहे, तो और इंद्रियां यानी जैसे हमारी आँख है, हमारे जो नाक है या त्वचा है जिससे जो हम सेंसेशन ले रहे हैं, वो सब अगर कार्य करते रहें तो हम शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से जो है वो स्वस्थ रहते हैं। और अगर ये सब तंत्र, इसके साथ साथ आपका पाचन तंत्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो अगर सही से कार्य कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा कि बल प्रदान करना शरीर को ज़रूरी है, मन को प्रसन्न रखना ज़रूरी है, और इंद्रियों का काम होना भी ढंग से, वो भी ज़रूरी है। तो हम बल भोजन से प्राप्त करते होंगे। एक हम कहते हैं कि भाई चंद्रमा से भी, जो
2: जी
1: चंद्रगुण होता है, उससे भी हम बल प्राप्त करते हैं। कई बार हमने देखा है कि लोग जो है सुबह नाश्ते में भी रोटी सब्जी खा रहे हैं, दोपहर में खूब बढ़िया दाल चावल खाया, शाम में भी लिट्टी वगैरह खा लिया, तो बल तो खूब प्राप्त कर रहे हैं। तो बल की भी कोई सीमा होती होगी ना डॉक्टर साहब?
2: जी देखिए, आयुर्वेद कहता है लोक पुरुष सात्म की बात करता है, अर्थात वातावरण का जो प्रभाव है वो शरीर पर अवश्य पड़ता है। हम

0: सामान्यतः अगर सामान्य भाषा में समझें तो तीन मौसम हम मानते हैं, शीत, ग्रीष्म और वर्षा।
1: जी
0: पर अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें या आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो अभी भी हम सब 6 ऋतुओं की बात करते हैं। सीजन और ऋतुओं में थोड़ा सा अंतर समझना होगा। तो जैसे अभी हम लोगों का नववर्ष शुरू हुआ, चैत्र प्रतिपदा से रामनवमी का प्रारंभ है, तो यहाँ से हमारा नववर्ष शुरू होता है और हम 12 महीने अपने रखते हैं। प्रत्येक 2 महीने को जो है एक ऋतु में कन्वर्ट किया गया। मैं सामान्य जनमानस के लिए इसे बहुत ही साधारण रूप से प्रस्तुत कर देता हूँ, क्योंकि हम जनवरी से अपना माह मानते हैं और जो मकर संक्रांति होती है इसमें सूर्य उत्तरायण में आ जाता है। तो जैसा कि आपने अभी चर्चा की
1: जी
0: कि चंद्रबल की और सूर्यबल की, तो जो मकर संक्रांति है इसमें आ जाता है सूर्य उत्तरायण में। इसको आयुर्वेद में कहा गया है आदान काल। तथा जब ये 6 महीने व्यतीत हो जाएंगे, ग्रीष्म ऋतु व्यतीत हो जाएगी, उसके पश्चात हमारा विसर्ग काल शुरू हो जाएगा। उस समय शरीर को पोषण मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझें कि जैसे ही सूर्य उत्तरायण में आया या मकर संक्रांति में आया, सूर्य का जो ऊर्जा है, सूर्य का जो ताप है, वो धीरे धीरे वृद्धि
1: बढ़
0: पर आना शुरू हो
1: जी
0: जाएगा
1: जी डॉक्टर
0: और
1: साहब
0: हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। अर्थात जैसे जैसे प्रकृति में, संसार में तापमान बढ़ेगा सूर्य का, वैसे वैसे बल का ह्रास उत्तरोत्तर होता चलेगा।
1: जी
0: फिर आएगी बारिश और इसके पश्चात जो है वो उत्तरोत्तर वृद्धि हमारे जो है बल की होती चलेगी। जब मैं बल की बात कर रहा हूं तो केवल शारीरिक बल की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, मैं शारीरिक बल की भी बात कर रहा हूं, मानसिक बल की भी बात कर रहा हूं और व्याधि क्षमत्व अर्थात इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं उसकी भी बात कर रहा हूं। तो इनका तीनों का प्रभाव जो है वो हमारे शरीर में पड़ता है। अभी हम अगर उत्तरायण से लेना शुरू करें तो 3 ऋतुएं जो हम मानते हैं वो हैं शिशिर, बसंत एवं ग्रीष्म।
1: जी
0: अभी जो चल रही है वर्तमान में चैत्र और बैसाख, इनको हम बसंत ऋतु में लेते हैं। और जब अगला शुरू होगा जिसको हम ज्येष्ठ और आषाढ़ बोलेंगे, अर्थात लगभग मिड मई के आसपास से हमारी जो है वो ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। तो शिशिर से जैसे हम ग्रीष्म की ओर चलेंगे, सूर्य का ताप उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा,
1: जी
0: वैसे वैसे हमारे जो शरीर में बल की हानि होती चली जाएगी
1: जी
0: और उसकी पूर्ति के लिए हमको जो है वो ऋतुचर्या का पालन करना पड़ेगा। और हमको अचानक एक से दूसरी ऋतु में परिवर्तन के लिए खाना पीना तुरंत नहीं बदल देना है। इसके लिए हमें उत्तरोत्तर धीरे धीरे जैसे ऋतुएं चेंज हो रही हैं उस आधार पर हमको अपने शरीर के बल को ध्यान में रखते हुए अपने भोजन को परिवर्तित करना।
1: डॉक्टर साहब, मैं तो आपको बहुत ध्यान से सुन रही हूँ, श्रोता आप भी सुनिएगा और समझिएगा, बहुत काम की बात है। डॉक्टर साहब, कई बार जून जुलाई के महीने में ऐसा महसूस होता है कि अचानक से हम थक गए या फिर आंखें बंद होने लगती हैं, चक्कर आने लगता है। तो आम तौर पे घरों में ये कहा जाता है, भाई इलेक्ट्रोल पी लो, ORS पी लो, नमक नींबू चीनी पानी खा लो। लेकिन ये जो ऊर्जा है ये तो क्षणिक ऊर्जा हुई। अगर हमें काम करना है तो हमें एक बैक सपोर्ट चाहिए, और आप कह रहे हैं कि ये वही समय है जब आपका बल क्षीण हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन ये सबके साथ तो डॉक्टर साहब नहीं होता है। कुछ ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो इन्हीं महीनों में बहुत काम करते हैं विदाउट स्टॉपिंग देमसेल्व्स, तो ये कैसे होगा?
0: देखिए, मैंने जैसे कहा कि जो बल होता है, ये मैंने तीनों प्रकार के बल बोले, शारीरिक, मानसिक और व्याधि क्षमत्व बल।
1: जी
0: अब बल में भी आप विभेद कर सकते हैं। एक सहज बल होता है जो प्रकृति से आता है। अगर आप सामान्य दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन कर रहे हैं तो आप सामान्य स्वाभाविक रूप से स्वस्थ होंगे और आप इन ऋतुओं में होने वाले परिवर्तन से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और आप सदैव स्वस्थ रहेंगे। तो आपका बल भी कैसा रहेगा? उत्तम रहेगा। भले ही प्रकृति के अनुसार जो है बल उत्तरोत्तर ग्रीष्म ऋतु तक आते आते क्षीण हो रहा है, लेकिन आप अपने आप को ऋतुचर्या और दिनचर्या का पालन करते हुए स्वस्थ रखे हैं और आपका बल जो है सामान्य कार्य करने हेतु उत्तम है। पर अगर आप अपनी ऋतुचर्या और दिनचर्या से डेविएट होते हैं,
1: जी
0: जैसे मैंने कहा कि अगर ग्रीष्म ऋतु आएगी तो आपकी पाचक की जो अग्नि है, पाचन अग्नि, वो क्षीण हो जाएगी। आपने जनमानस में भी देखा होगा, लोग बोलते हैं गर्मी में ज्यादा भोजन नहीं होता हमसे,
1: वो सत्तू पीने लगते
0: वो
1: हैं।
0: हाँ वो इसलिए क्योंकि उस समय आपकी जो सूर्य जब आपका प्रखर बिल्कुल ताप दे रहा है, तो आप ये देखिए कि वातावरण से जो जलीयांश है जिसको हम मॉइस्चर कहते हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है एटमोसफियर, और जो शरीर है उसका बल भी कैसा हो जाता है? क्षीण हो जाता है। पाचन की अग्नि भी क्षीण हो जाती है। तो इस समय अगर ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग हम जो है लाइट डाइट लें, बहुत ज्यादा

0: एक्सरसाइज करने को बिल्कुल मना किया गया है, क्योंकि वो वात की वृद्धि कर देगा उस समय। तो आप
1: ओ
0: सामान्य एक्सरसाइज अगर आप करें, ठीक है,
1: जी जी
0: और डाइट में क्या लें, जैसे कि आप मूंग की दाल का सेवन करें, ठीक है, अगर आप जैसे अपने इस तरफ के क्षेत्र में अरहर की दाल का बहुत प्रचलन है,
1: जी
0: तो अगर हम अरहर की दाल का सेवन कर रहे हैं, तो अरहर की दाल ड्राई होती है, और एटमॉस्फियर में अभी कैसा है, ड्राइनेस है,
1: ड्राइनेस है।
0: तो फिर अगर आपको अरहर की दाल का सेवन करना है, तो आप थोड़ा सा घी डाल के उसका सेवन करिए।
1: वाह।
0: तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान आप रखें। इसके पश्चात सीजनल फ्रूट्स अगर आप लेते रहें,
1: आम है, तरबूज है।
0: आम आएगा, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, तो जलियांश का आप भरपूर सेवन करें।
1: तो डॉक्टर साहब, आपके अनुसार तो इस मौसम में थोड़ा बहुत फैट की मात्रा जरूर लेनी चाहिए लोगों को,
0: अवश्य अवश्य
1: है ना?
0: फैट जरूर लेना चाहिए, लेकिन गुड फैट।
1: गुड फैट मींस व्हाट, क्या समझे हम?
0: देखिए, जैसे तेल और घृत में जो आयुर्वेद कहता है, वो घृत सर्वश्रेष्ठ है, गाय का
1: जी
0: घी जो है वो
1: जी
0: सर्वश्रेष्ठ है।
1: जी
0: तो अगर आप इस समय थोड़ा सा घी का सेवन करें, तो आपके लिए सर्वोत्तम है।
1: डॉक्टर साहब, हर परिवार में जरूरी नहीं कि गाय का घी अवेलेबल ही हो, तो उसका कुछ अल्टरनेट बताते चलें। क्या हम मूंगफली वाला जो नेचुरल फैट हो सकता है उसके अंदर, उस तरह का कुछ खास पी सकते हैं?
0: देखिए, बिल्कुल आपका जो प्रश्न है वो स्वाभाविक है, लेकिन तेल जो होते हैं उसमें
1: हाँ
0: भी जो है ज़्यादा हम लोगों के सेवन के लिए तिल तेल उत्तम है।
1: तिल
0: तिल का तेल का सेवन जो है वो उत्तम है।
1: जी
0: बाकी जो सरसों का तेल जैसे हम सेवन
1: हाँ
0: करते हैं, या मूंगफली का, तो रिफाइंड ऑयल के लिए तो जो है मेरी तरफ से थोड़ा सा कोशिश करके इसको कम करना शुरू करें, और
1: जी
0: बेहतर ये है कि हम थोड़ा सा बाहर निकल के, थोड़ा सा प्रयास करके अपने सामने अगर तेल जो है वो मशीन से अगर निकलवा लें और उसका सेवन करें, तो वो सर्वोत्तम है।
1: जी
0: और घी के लिए भी अगर सुबह सुबह, मैं तो अपने श्रोताओं से कहता हूँ, सुबह सुबह जाइए और दूध लेकर के आइए, उसकी मलाई बढ़िया निकलेगी, उसका जो है वो आप जमा करके दही, आप घी भी निकालिए, और ग्रीष्म ऋतु में तक्र का सेवन भी करिए।
1: तक्र क्या
0: तक्र मतलब मट्ठा जिसको हम बोलते हैं,
1: जी?
0: तो उसमें
1: जी
0: जो है वो आप थोड़ा सा जीरा डाल सकते हैं,
1: जी
0: और जिनको मीठा प्रिय है उनके लिए ग्रीष्म ऋतु में बहुत अच्छा है कि आप दही का सेवन जो है वो चीनी या गुड़ के साथ करिए। इसी प्रकार मट्ठे का सेवन भी जो है आप गुड़ और चीनी के साथ कर सकते हैं, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, बल भी उत्तम रहेगा, और
1: जी
0: मन भी उत्तम रहेगा।
1: वाह। मतलब हल्का फुल्का हम खाएं। और कई बार डॉक्टर साहब क्या होता है, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई दोपहर में सपोज करें कि दाल चावल सब्जी रोटी खाई, थोड़ा जो थाली होती है, उसके बाद उनका पेट अजीब सा, कहते हैं कि वो भाई टाइट हो गया है, ऐसा लगता है
0: जी
1: थोड़ा फूल गया है, स्वेलिंग आ गई उसमें,
0: जी जी
1: तो चलते हैं फिरते हैं और अजीब सी आवाज़, जैसे जैसे हम डकार कहते हैं, तो वो लेने लगते हैं, तो उन्हें परेशानी होती है, फिर वो दवाइयाँ खाते हैं पाचन वाले, एंटी एंजाइम्स टाइप की
0: जी
1: चीज़ें होती हैं। डॉक्टर साहब, इनसे बचने का कोई उपाय बताइए।
0: इसका तो बहुत ही साधारण उपाय है।
1: जी
0: अगर आप ऋतुचर्या का सेवन कर रहे हैं,
1: हाँ
0: अर्थात जैसे मैंने आपसे कहा, ग्रीष्म ऋतु में आपको बिल्कुल लाइट डाइट लेनी है, तो अगर आप लाइट डाइट ले रहे हैं और सामान्य दिनचर्या का पालन कर रहे हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप इनसे बचे रहेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम बाहर चले जाते हैं जैसे आजकल है, और जो है थोड़ा सा हैवी डाइट ले लेते हैं,
1: डॉक्टर साहब,
0: ऑयली
1: आप
0: स्पाइसी डाइट ले लेते हैं,
1: डॉक्टर साहब आप किसका मन नहीं करेगा कि कभी कभी छोले भटूरे और पनीर और शाही पनीर पूरी ना खाई
0: नहीं, बिल्कुल, पर उसके लिए आपको अपनी पाचन को एक बार समझना होगा और देखना होगा। अगर आपकी पाचन क्रिया मजबूत
1: जाए?
0: है, तो अवश्य सेवन करिए, शरीर आपका साथ देगा। और उसमें भी विशेष तौर पे दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है।
1: जी
0: एक तो आप स्वस्थ हों, तभी आप बाहर भोजन करने जाएं। द्वितीय जो है वो मात्रा का ध्यान अवश्य रखें। चरक में एक श्लोक है, बहुत छोटा सा,
1: जी
0: मात्रासी स्यात, जब आप भोजन करें तो मात्रा का ध्यान रखें। तो इसके लिए बहुत सिंपल है कि जितनी भी आपकी क्षुधा यानी भूख है, उसका 1/3 हिस्सा जो है वो सॉलिड डाइट ले लें,
1: अच्छा डॉक्टर साहब, मान लीजिए बाहर गए,
0: और थोड़ा सा
1: हाँ
0: 1/3 भाग जो है वो लिक्विड ले लें, और 1/3 भाग जो है वो आप खाली रखें। मुझे लगता है अगर इसका, दोनों का आप पालन करेंगे, तो ये जो समस्याएं आपने बताई हैं ये नहीं होंगी।
1: मान लीजिए आप कहते हैं कि भोजन जो है सलाइवा के अनुसार भी करना चाहिए,
0: जी
1: जैसे हम लार शब्द कहते हैं, बाहर गए जी, वो बढ़िया सा भोज्य पदार्थ दिख रहा है सामने, खीर भी दिख रही है, पूरी भी दिख रहा है, अब दही बड़े भी दिख रहे हैं।

0: हैं, तो अब सलाइवा तो आने लगा, मुख में लार क्रिएट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है।
1: जी
0: अब जी खाए जा रहे हैं, और अंत में मन कर रहा है कि अब इमरती और रबड़ी से कौन रुके, इसको भी खा लेते हैं।
1: जी जी
0: तो वो स्टॉप बटन कैसे पहचाने कि ये जो लार उत्पन्न हो रहा है और पेट की जो स्थिति है, हाउ वी कैन डिस्क्रिमिनेट?
1: देखिए, इसमें तो मैंने आपसे कहा कि मानसिक बल अगर उत्तम होगा तो उसका तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको भूख लगी हुई है तो आप बाहर सेवन कर सकते हैं, बस मात्रा का ध्यान रखें। अगर हम मात्रा का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जो प्रकृति ने हमको शरीर प्रदान किया है ना, वो बहुत ही कमाल का है। आप इसको जो है वो मात्रा का ध्यान रखते हुए अगर आप आहार का सेवन करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये समस्याएं आने वाली। दूसरा ये है कि
0: हाँ,
1: अगर कभी ज़्यादा आपने खा लिया,
0: एक्चुअली
1: जो आप पूछने वाले हैं मुझे
0: हाँ
1: लगता है,
0: हाँ
1: तो फिर लंघन, हमारे यहाँ व्रत का प्रावधान भी है कि फिर शरीर को समय दीजिए कि वो उसको पचा सके, आप व्रत करिए। आप देखिए ना कि हमारे
0: जी
1: जनमानस में लगातार देखिए इस किस सीजन में कौन से व्रत रखने हैं, वो आपकी पाचन क्रिया को उत्तम करने का सबसे बढ़िया उपाय है।
0: जी डॉक्टर साहब, मान लीजिए किसी को खट्टी डकार सी आने लगी, पेट की स्थिति बड़ी उलझ गई है, ऐसा कुछ
1: जी
0: उपाय बताएं कि पेट राहत में आ जाए।
1: देखिए, सबसे उत्तम उपाय तो ये है अदरक का रस।
0: लेकिन वो
1: ये
0: तीखा होता है डॉक्टर
1: ना
0: साहब।
1: तीखा होता है लेकिन आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप जो है अदरक का रस का सेवन करें, और आयुर्वेद में कुछ औषधियां हैं, जैसे अगर आप जो है अविपत्तिकर चूर्ण एक औषधि आती है, पर मेरा आपको बताने का केवल ये उद्देश्य है कि आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी औषधियां हैं, लेकिन इन औषधियों का सेवन आप अपने चिकित्सक की सलाह से करें।
0: जी
1: इसके अलावा आप थोड़ा सा लंघन की ओर जाएं, और आप जो है अपनी डाइट, जैसे मैंने कहा, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, सॉलिड लिक्विड और फिर एम्प्टी,
0: जी
1: तो टू थर्ड से ज़्यादा अपनी डाइट को ना रखें। थोड़ा बहुत व्यायाम करें, खाने के पश्चात सीधे जो है वो बेड पर न जा करके थोड़ा सा टहलें, थोड़ी देर जो है बैठें, फिर आप जो है विश्राम अवस्था को प्राप्त हों। तो इस सब चीज़ों का अगर आप सेवन करेंगे, और कुछ जो है एक्सरसाइज में योग को भी शामिल करिए, पाचन क्रिया में अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आती है तो थोड़ा सा योग की तरफ भी आप जाएं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो वैसे भी कहा है कि इस ग्रीष्म ऋतु में 21 जून को हम योगा दिवस मनाते
0: जी
1: हैं, और अभी
0: जी
1: मन की बात में उसका जिक्र भी किया है। तो मेरा सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि उनकी बात को ध्यान में रखते हुए हम सभी को उनका अनुसरण करते हुए योग को अवश्य अपने जीवन में अपनाना चाहिए।
0: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और सुनने वालों को इतनी उपयोगी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: हाँ, धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ग्रीष्म ऋतु में कैसा हो आहार विहार, ये वार्ता। वार्ताकार थे डॉक्टर ऋतुराज जी, इनसे बात कर रहे थे नेहा गुप्ता जी।
3: और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को आज के दूसरे गीत की ओर।

0: प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे की ओर और बढ़ते हैं सेहत ज्ञान में। आज सेहत ज्ञान के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए हैं गर्मी में आँखों का कैसे रखें विशेष ख्याल।
1: तो जब गर्मी का मौसम अपने साथ तेज़ धूप, गर्म हवाएं, धूल और प्रदूषण लेकर आता है, जिसका सीधा प्रभाव हमारी आँखों पर पड़ता है, इसलिए गर्मी के मौसम में अक्सर हमारी आँखों में जलन होती है, खुजली जैसा महसूस करते हैं हम, अक्सर लालिमा जैसी देखने को मिलती है, सूखापन या संक्रमण जैसी समस्याएँ भी हो जाती हैं। इसलिए गर्मियों में अपनी आँखों की विशेष देखभाल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले तो तेज धूप में बाहर निकलते समय अच्छी गुणवत्ता वाले धूप के चश्मे, जिन्हें हम सनग्लासेस कहते हैं, का प्रयोग करें और इससे सूर्य की हानिकारक, ये कह सकते हैं यूवी रेज, आंखों की सुरक्षा होती है उनसे, और साथ ही छाता, टोपी, इन सब चीज़ों का उपयोग भी लाभदायक होता है।
0: और अपने साथ पानी की बॉटल ले जाना बिल्कुल ना भूलें श्रोताओं। और गर्मी में शरीर की तरह आँखों को भी पर्याप्त नमी की ज़रूरत होती है। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अपने आहार में मौसमी फल जैसे कि खीरा, तरबूज, खरबूज और अन्य मौसमी फल, और हाँ लीची तो हम लोग भूल ही गए, है ना?
1: हाँ बिल्कुल, इससे इन सभी चीज़ों से ना हमारी आंखें और शरीर हाइड्रेट रहते हैं, और इन सभी बातों के साथ साथ धूल और प्रदूषण से बचने का भी प्रयास करना है। यदि आंखों में धूल चली भी जाए तो उसे रगड़कर नहीं साफ करें, बल्कि साफ और ठंडे पानी से धो लें। बार बार आंखों को छूने से भी बचें, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है।
0: और लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर या फिर टीवी स्क्रीन देखने से भी हमारी आंखों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए बीच बीच में आंखों को आराम दें।
1: और जब बात है आँखों की, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हमारी आँखों में लगातार जलन हो रही है, दर्द है, लालिमा है, सूजन है या धुंधला दिखाई देने जैसी समस्या है, तो स्वयं दवा लेने के बजाय किसी नेत्र विशेषज्ञ, जिसे हम आई स्पेशलिस्ट भी कहते हैं, उन्हें ज़रूर दिखाएँ, उनसे ज़रूर परामर्श लें। और हमारी आँखें, ये हमें याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे आँखें जो हैं वो प्रकृति की अनमोल उपहार हैं ना, तो थोड़ी सी भी सावधानी और नियमित देखभाल से हम गर्मी के मौसम में भी अपनी आँखों को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए हम सभी स्वस्थ आँखें, स्वस्थ जीवन का संदेश अपनाकर इस गर्मी का आनंद लें और अपने श्रोताओं को ले चलें अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, गर्मियों का मौसम आते ही हम सभी का ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का बहुत ही मन करता है ना? बच्चों, बड़ों से लेकर, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़ों हों, चाहे हम सभी, आइसक्रीम सभी की पसंदीदा होती है। और बाज़ार में तो बहुत ही तरह के आइसक्रीम उपलब्ध हैं, लेकिन अगर घर पर बनी आइसक्रीम मिल जाए तो क्या कहने। स्वादिष्ट होने के साथ साथ अधिक स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक भी होती है ये आइसक्रीम, अगर हम इसको घर पर बनाते हैं। तो आज हम बताएंगे चॉकलेट आइसक्रीम। इसकी सामग्री है 2 कप दूध, आधा कप क्रीम, 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर, 4 बड़े चम्मच चीनी। इसकी विधि है, दूध में कोको पाउडर और चीनी मिलाकर हल्का गर्म करें, ठंडा होने पर क्रीम मिलाएं और फ्रीज़र में जमने के लिए रख दें। बीच में 1-2 बार चलाने से आइसक्रीम अधिक मुलायम बनेगी और बच्चों की सबसे पसंदीदा आइसक्रीम होती है चॉकलेट आइसक्रीम, बनकर तैयार है। और दूसरी आइसक्रीम है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। इसकी सामग्री है 1 कप स्ट्रॉबेरी, 1 कप क्रीम, आधा कप दूध, चीनी स्वाद अनुसार और छोटी इलायची भी ले सकते हैं। इसकी विधि है, स्ट्रॉबेरी को पीसकर उसकी प्यूरी बना लें, सभी सामग्रियों को मिलाकर फ्रीज़र में जमने के लिए रख दें। फल

0: और मिठास का बेहतरीन संगम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनकर तैयार है। अगली आइसक्रीम है कुल्फी स्टाइल आइसक्रीम। इसकी सामग्री है 1 लीटर दूध, चीनी, इलायची पाउडर, कटे हुए बादाम और पिस्ता। इसकी विधि है दूध को गाढ़ा होने तक पकाएं, इसके बाद इसमें चीनी, इलायची पाउडर और मेवे मिलाएं, ठंडा करके कुल्फी मोल्ड या फिर छोटे कप में भरकर जमा दें। भारतीय स्वाद से भरपूर कुल्फी स्टाइल आइसक्रीम बनकर तैयार है।
1: वाह पूनम, आपने तो अगर मैं बात करूं आज तीनों आइसक्रीम्स ऐसी बताई हैं कि इसमें सभी वर्ग आ गए हैं। जब आपने चॉकलेट आइसक्रीम के बारे में बताया तो ये बच्चों की मनपसंद हो गई, और जब आपने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के बारे में बताया तो जैसे हम बात करें कि अगर हम फल या बाकी चीज़ें जो अगर नेचुरल हम खाना चाहें कुछ, तो उससे बनी हुई आइसक्रीम आपने बताई स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और कुल्फी स्टाइल आइसक्रीम, ये सबसे ज्यादा पसंदीदा होती है और स्वाद में तो अद्भुत होती ही होती
0: बिल्कुल
1: है।
0: और घर पे बनने के कारण ये बहुत ही स्वच्छ भी होती है।
1: बिल्कुल, और जब घर पर आइसक्रीम बनती है ना तो उसके फायदे भी बहुत है, जैसे कि स्वच्छता और गुणवत्ता का भरोसा होता है हमें, अपनी पसंद के अनुसार हम स्वाद और मिठास का एक कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, कृत्रिम रंगों और अतिरिक्त प्रिजर्वेटिव से हम बचाव कर सकते हैं। कि गर्मी की छुट्टियों में, जब आज हमने आज सारा बात की है गर्मियों के बारे में, खासकर जब हमारा विषय रहा तो गर्मी की छुट्टियों में परिवार, बच्चों और घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर घर पर अलग अलग स्वाद की आइसक्रीम बनाना एक रोचक गतिविधि भी हो सकती है। तो इस मौसम में घर की रसोई को आइसक्रीम पार्लर बनाइए और ठंडे ठंडे स्वाद का आनंद लीजिए और हमारे गीत का आनंद लीजिए।

0: बिल्कुल, हम इसी तरह चले आएंगे जब भी आप हमें प्यार से बुलाएंगे। अपने इस कार्यक्रम को हमेशा आपके लिए हम बेहतरीन और सुंदर बनाएंगे। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही फिर अपने श्रोताओं को एक सुंदर प्रस्तुति के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा ऋतिका का
1: और मेरा पूनम का
0: नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम की लक्ष्मी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 MHz पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 2 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: in annual solar capacity additions. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
4: जनजातीय समुदाय के अनेक गाँव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
1: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित

भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल

0: मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगमाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच

0: चलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लोकगीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत। लोकगीत कार्यक्रम में लीजिए सबसे पहले सुनिए सुखनंदन और साथियों के स्वर में ये लचारी।

0: विकासन पांडे के गाए इस दादरा के साथ ही लोकगीत कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं, ये सभा समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति समीर की गीत रचना, नदीम श्रवण का संगीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें। फिल्म का नाम ये दिल आशिकाना।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाने जा रहे हैं आनंद बख्शी की गीत रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, मोहम्मद रफी की आवाज़, फिल्म का नाम

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ संदेशों के बाद युवजन सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
5: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
4: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
5: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
6: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: पेश कार्यक्रम युववाणी।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी। एंड टुडे वी आर डाइविंग इनटू अ नेम दैट ऑलमोस्ट एवरी इंडियंस ग्रो अप हियरिंग, बट ऑनेस्टली वेरी फ्यू ऑफ अस ट्रूली नो। वी आर टॉकिंग अबाउट गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर।
4: राइट, बिकॉज इफ यू आस्क द एवरेज पर्सन ऑन द स्ट्रीट, दे विल से ओह द गाय हु रॉट द नेशनल एंथम और मे बी द फर्स्ट एशियन टू विन अ नोबेल प्राइज। एंड यस, हिज बोथ ऑफ दोज थिंग्स, बट टैगोर वॉज ऑल्सो अ मैसिव रिवेल, अ स्कूल ड्रॉप आउट, अ ग्लोबल ट्रेवलर एंड समवन हु कंप्लीटली रीशेप्ड मॉडर्न लिटरेचर एंड आर्ट।
3: यस, spread arms gestures, he was the ultimate multi hyphenated before the world even existed. Poet, playwriter, novelist, composer, painter, educator. It's actually a bit

युवजन अभी अपना युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर 6 बज रहे हैं। समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इंपैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें बी

0: S6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेंद्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, पहले आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात 9:30 पर चर्चा का विषय है। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे बरमदीन यादव और साथियों के गाए दो गीत और कमलेश मणि तिवारी से नीति वचन। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में डॉक्टर बद्री नारायण तिवारी से ब्रजेंद्र नारायण की बातचीत का विषय होगा लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण विकास।

रातें नगमे। हमारा ये खास कार्यक्रम सुनिएगा 7:31 पर। वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर।

रात 8 बजे आनंद दीजिएगा चित्रपट संगीत कार्यक्रम का। सबरस कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 8:30 पर। रात 10 बजे होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन प्रसारित किया जाएगा। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना सुबह 6:05 पर। विचार बिंदु कार्यक्रम में 6:30 पर आपको सुनवाएंगे बाल गंगाधर तिलक के विचार। कृषि जगत कार्यक्रम में 6:35 पर कृषक जन सुनेंगे ललित कुमार वर्मा से अरविंद कुमार की बातचीत। जंगली बैंगन में टमाटर की ग्राफ्टिंग किसानों के लिए वरदान। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 पर सुनिएगा डॉक्टर अंबुज त्रिपाठी से की गई भेंटवार्ता, गर्मी के कारण बच्चों में होने वाली सामान्य समस्याएं। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7 बजे और इसके बाद 7:10 पर आपको सुनवाएंगे फिल्मों से ली गई कुछ भक्ति रचनाएं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन। शास्त्रीय संगीत के एक दूसरे कार्यक्रम में दिन में 12:15 पर आपको सुनवाएंगे पंडित डी आर पार्वतीकर का दत्तात्रेय वीणा वादन। और शास्त्रीय संगीत के रात्रिकालीन कार्यक्रम में 10:30 पर सुनिएगा गौरी शंकर का क्लैरियोनेट वादन। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा सुबह 8:45 और 9 बजे से फिल्म संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर कलाकार पामेला नंदी। लोक माधुरी कार्यक्रम में 10:05 पर आपको सुनवाएंगे इंद्र प्रताप सिंह और जूही मिश्रा के गाए कुछ लोकगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आपके लिए प्रसारित किया जाएगा कल सुबह 10:30 पर। जानी मानी सिने तारिका दिव्या भारती पर केंद्रित कल का एक ही कलाकार कार्यक्रम सुनना न भूलिएगा। प्रसारण समय होगा 11 बजे। और 11:30 पर आपको सुनवाएंगे हमारा खास कार्यक्रम बोलते नगमे, वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के।

2:30 पर होगा लोकगीत का कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे रश्मि टंडन, कुंवर सिंह और साथी तथा संगीता मिश्रा को। संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे दोपहर बाद 4 बजे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5 बजे। युवजन अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुन सकेंगे कल शाम 5:15 से। पंचायत घर कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर आपको सुनवाएंगे पन्नालाल यादव और साथियों के गाए लोकगीत तथा मेरी खेती मेरी बात क्रम के अंतर्गत किसान चर्चा के प्रतिभागी होंगे विमल प्रकाश और रामनाथ सिंह। हिंदी कार्यक्रम में शाम 7:31 पर सुनिएगा शैलेश कुमार श्रीवास्तव और डॉक्टर विजयानंद तिवारी का काव्य पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल शाम 7:45 पर आपको सुनवाएंगे दीप्ति चतुर्वेदी के गाए भजन और गीत। रात 8 बजे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम, गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां कल रात्रि 9:30 पर और फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा कल रात 10 बजे। ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है।

संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद कल दिन में 12:30 पर प्रसारित किया जाएगा। पनघट कार्यक्रम में 1:15 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी सावित्री श्रीवास्तव के गाई लोकगीत और प्रीति त्रिपाठी की वार्ता का विषय होगा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 6:20 होने वाले हैं, संस्कृत समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: पारादीप पर्यन्तं त्रिषष्टि अधिक शत किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतद् अतिरिक्तं समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31 अधिक 200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मूः अद्य राष्ट्रिय आदिवासी सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवती। नवदिल्ल्याम् आयोजितायाम् एकीकृत जनजातीय विकास समवायानां तथा एकीकृत जनजातीय विकासायोगस्य च विस्तार विषयिकायां समायोजितायां सभायां राष्ट्रपतिः अवदत् यत् देशव्यापिनः जनजातीय समाजस्य संस्कृतिः अत्यन्ता समृद्धा अस्ति, अतः जनजातीय समुदायस्य उन्नत्यर्थाः विशेष प्रयत्नाः करणीयाः। तया उक्तं यत् विकास कार्याणि अन्तिम गृहं यावत् अन्तिम ग्रामं यावत् च अवश्यं प्राप्नुयुः। राष्ट्रपतिः चिन्ताम् अपि व्यक्तीकृतवान् कृतवती यत् अद्यापि केचन जनजातीय वर्गाः शासनस्य विविधाभिः योजनाभिः अनभिज्ञाः सन्ति।
1: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक तो विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े, अभी भी कोई पेड़ के मंच के रहते रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
0: राष्ट्रपति ही सर्वासाम संस्थानाम हितधारकान आहूतवती यत् जनजातीय युवभ्यः सम्मानजनक जीविकायाः तथा प्रत्येकं जनजातीय बालकाय विद्यालय शिक्षायाः सुनिश्चितीकरणं क्रियताम।
1: ये दूरदराज के लोग जो जंगलों में रहते हैं उन तो एक रोड मैप बनाना चाहिए, आप कौन सी गांव को कवर किया, कौन सी पॉपुलेशन के थे, ट्राइबल के कितने लोग हैं, कहां तक हम पहुंच पाए कहां तक नहीं पाए। पढ़ा लिखा होते हुए भी बहुत लोग बहुत चीजें जानते हैं लेकिन वो खुलते नहीं, लेकिन उनको खुलना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, आदिवासी लोगों को आगे लाने के लिए तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा।
0: कर्नाटकस्य नूतन मुख्यमंत्री डीके शिवकुमारः शपथ ग्रहणं कृतवान्। कर्नाटक राज्ये कांग्रेस विधानमंडलस्य दलस्य नेता डीके शिवकुमारः अद्य बेंगलुरु नगरे राज्यस्य 25वां मुख्यमंत्री रूपेण शपथग्रहणं कृतवान्। राज्यपालः थावरचन्द गहलोतः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं प्रदापितवान्। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर जी परमेश्वरः उपमुख्यमंत्री पदेन शपथं गृहीतवान्। अन्ये च द्वादश मन्त्रिणः अपि मन्त्रिपरिषदि सम्मिलिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्रिणे शुभकामनाः प्रदत्तवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिम बंगालस्य पूर्वसत्तारूढ दले तृणमूल कांग्रेस दले आंतरिक मतभेदाः प्रतीताः। दलात् निष्कासितः टीएमसी विधायक ऋतव्रत बनर्जी इत्यनेन उक्तं यत् तस्य पक्षे प्रायः 60 विधायकाः सन्ति। अस्य कथनस्य कारणेन राज्य विधानसभायां सत्ता संतुलन परिवर्तनस्य संभावनां प्रति चर्चाः तीव्राः जाताः। तस्य समूहेन विधानसभायाः अध्यक्षाय रतीन्द्र बोस महोदयाय पत्रं प्रेषितं यत् स्वदलस्य वास्तविक तृणमूल कांग्रेस इति नाम्ना मान्यतां दातुम् आग्रहः कृतः। अस्मिन् अन्तरे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता नगरे आयोजितायां जनसभायां भारतीय जनता पार्टी इत्यस्य उपरि दलविभाजनस्य षड्यंत्र रचनायाः आरोपं कृतवती। एतेषां राजनैतिक घटनाक्रमाणां प्रति सम्पूर्ण राज्यस्य दृष्टिः केन्द्रीभूता वर्तते। दिल्ली नगरस्य मालवीय नगरे विश्रांति निलये भीषणाग्निकाण्डः 21 जनाः मृताः। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगर क्षेत्रस्य एकस्मिन् विश्रांति निलये भीषणाग्निकाण्डे 21 जनाः मृत्युम् उपगताः, अनेके च आहताः अभवन्। दक्षिण दिल्ल्यारक्षी विभागस्य उपायुक्त

0: पंचो राम राम। आहो रानू भैया, का हाल चाल बा हो भैया?
1: ठीक है हो बैजू भैया, खेती किसानी तो ठीक ही चलत है।
0: धान उन नर्सरी डाला ना है
1: भैया? नर्सरी उर्सरी डलाई गए हो, और अपने अगले बगले अभय मंगरू भैया रहन, उनका अभय ना पड़ा है, खेत तैयार करते हैं।
0: जेकर खेत तैयार जैसे हो तो अपन डालत है भाई। हम तो कही कि नर्सरी जब समय बा डाल के डाल दें भैया, प्रजाति बढ़िया रहे चाहे अशोधित रहे चाहे माटी भी शोधित रहे, तो अगर नर्सरी बढ़िया होए भैया तब धान भी बढ़िया होए।
1: एकदम सही,
0: पता चली कि बेहन ही खराब होएगी, रोगही होएगी, तो कहाँ से फसल बढ़िया होएगी।
1: एकदम सही कहे भैया। और साथे साथे किसान भैया बहनी हरन के चाहे कि जौन भैया खेत अपन है जहाँ माटी के जांच करावे के है, ओके भैया समय से कराई लें। ऐसे भैया कम से खाद जौन है देवे में भैया तनी आसानी रहे।
0: भैया सही कह, माटी के जांच जरूरी होता है कोनो भी फसल ले के पहले जो अन बाटे है ना, हर साल तो कम से कम 2 साल 3 साल में तो कराइन ले के चाहे। अब भैया हो बताओ भी जात रहा था अपने इस कैसे नमूना ले के का करे के बाटे हिसाब से। भैया माटी की जांच कराई लही थी, पता चल जाए कि हमारे कौने खेते में कौने तत्व का कमी बे कौने तत्व का नाही कमी बे, तो वही हिसाब से भैया वो तत्व का मात्रा हमें दिया जाए तो माटी बढ़िया हो जाए। या जो सलाह दें वैज्ञानिक भैया हरे कि हमें ई फसल ले बता जान से अच्छा हो तो फसल लें तो वो फायदा हो भैया।
1: एकदम सही कहे भैया किसान।
0: तो हम कही भैया हो किसान भाई माटी की जांच कराए लें, धान लगाओ।

0: पहले,
1: हाँ
0: आप जौन खेत खाली यहाँ अगर जोताई के छोड़ दें तो धान लगावे में भी बढ़िया रहे।
1: हाँ
0: सबसे
1: हाँ
0: बड़ी चीज़ है कि भैया हो धान लगावे के पहले अपन मेड़ डांड दुरुस्त कर लें,
1: हाँ हाँ
0: हाँ, नहीं
1: हाँ
0: तो भैया हो पता चली कि अपन कमाई माटी उपजाऊ माटी है, बारिश भई तो बह
1: एकदम
0: गया।
1: सही कहा भैया। इससे ये है कि काम से पैदावार भी भैया काम से सही होता
0: सही
1: और
0: कह
1: दूसरे
0: रहे,
1: के साथे साथे अपनों नुकसान ना हो तो भैया।
0: काहे काहे नुकसान ना हो, तो वैसे भी धान का पानी चाहत भैया पता चली कि धान में मेड़ सही ना है तो चला गया वो पानी, तो बिना पानी के तो हो ना धान।
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: कहा
1: हाँ
0: गया ना धान पान और केरा ही पानी के चेरा।
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: भैया हो एक कहा थी ना अपन सब कैले, अब भाई हरी खाद के भी जोन जैसे सनई ढैचा बोआए वहीं मूंग बाटे, तो धान
1: हाँ हाँ
0: लगावे के पहले ओका खूब जोताई होताई के सड़ाई भी लें,
1: एकदम सही
0: तो
1: कहे
0: उससे
1: भैया।
0: माटी जोन वो उपजाऊ हो जाए।
1: हाँ हाँ हाँ
0: आ एक बात वही भैया हो, खेती किसानी है का खाते अपन लड़का का देला बाटे, सबके सेहत अगर बढ़िया रहे तो सब चीज़ बढ़िया होए,
1: एकदम सही कहे भैया।
0: स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वास्थ्य तभी होए अच्छा। भैया हम खाना तो सही से खाते हैं तो साथे साथे मेहनत भी करे के चाहे,
1: हाँ हाँ हाँ
0: और मेहनत ना करवा शरीर से पसीना ना बहे तो भैया हो स्वास्थ्य कभी अच्छा ना
1: ना
0: रहे।
1: रहे
0: तो आज देखा हो विश्व साइकिल दिवस है।
1: एकदम भैया सही कह गया। देखा भैया एकर जो मुख्य उद्देश्य है भैया परिवहन के एक सरल और किफायती भैया ये पर्यावरण के अनुकूल है साधन हो
0: काहे
1: और
0: ना
1: भैया
0: काहे ना।
1: माना भी जाता है कनम से कि ऐसे भैया स्वस्थ शरीर रहता है और भैया कनम से खर्चों को नो ना लगत हो।
0: भैया हो स्वस्थ शरीर रहे, मेहनत होए, घुटना का रोग न होए,
1: हाँ हाँ
0: साथे
1: हाँ
0: साथे भैया कोनो ध्वनि प्रदूषण न होए, न वायु प्रदूषण होए
1: हाँ
0: ऐसे
1: हाँ हाँ
0: हाँ। अब ईंधन का बचत होए, ईंधन भी नहीं लागत है हमें भैया।
1: हाँ हाँ हाँ
0: अब भैया हो आराम से चला जा जहाँ जाए के होए, थोड़ा थोड़ा दूर चाहे आराम कर ले।
1: हाँ हाँ
0: अब बड़ी निक बात बा भैया हो कि 2018 में स्थापना भई रही, तब से जोन बाटे है 3 जून के विश्व साइकिल दिवस मनावा जात बा हमेशा।
1: हाँ हाँ हाँ
0: कई भाई की साइकिल का महत्व बाटे है, हाँ, और साइकिल चलाए से का फायदा हो तो कैसे का बढ़ावा दिया जाए।
1: हाँ
0: अब आज के देखता है तारीख में इधर का जहाँ दिक्कत बताई से हम तो कही कि साइकिल वरदान भी बाटे एक
1: एकदम
0: प्रकार
1: सही
0: से।
1: कह भैया। अच्छा एक बात और रहे हो बैजू भैया। देखे पर्यावरण के अनुकूल होए के कारण कनम से कोनो प्रदूषण भी ना होते और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ा कदम भी
0: कदम
1: हुआ और
0: बाटे
1: साथे साथे भैया स्वास्थ्य लाभ भी है। अगर
0: कहके।
1: आदमी भैया 20 से 30 मिनट साइकिल चला लेता है तो उसे भैया हृदय का भी कनम से स्वस्थ रहता है और साथे साथे भैया वजन जो है वो बहुत नियंत्रित रहता है
0: भाई
1: भैया।
0: हर चीज सही रहत है, अपन लड़कियन के तो जरूरी चलावे के चाहे और सबके
1: हाँ
0: चलावे चाहे,
1: हाँ और तीसरी बात ये भैया कि देखे सबसे सस्ता साधन है
0: सबसे सस्ता और टिकाऊ
1: टिकाऊ
0: साधन।
1: है। तो ऐसे ये है कि भैया किसान भैया बहनी हरण के चाहे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भैया अपने साइकिल का प्रयोग करें
0: सही
1: और
0: कह
1: काम
0: भाई,
1: से।
0: मान लो थोड़ी दूरी जाएगी बाजार
1: हाँ
0: हाट
1: हाँ
0: जाएगी भाई, तो
1: हाँ
0: साइकिल से जा तो अपने सामान भी वही पे लादे आवा जोन
1: हाँ हाँ
0: बाटे, साग सब्जी मान लो पे झोला में धरे आवा, तो भाई
1: हाँ
0: साइकिल बड़ा काम का चीज है। वैसे हम सब देखा भाई पढ़ाई जाते रहे साइकिले से जाते रहे ना,
1: ये तो
0: चाहे जितना
1: सही
0: दूर
1: कह
0: पढ़ाई जाता रहे जोन बा है,
1: हाँ
0: और
1: भैया।
0: एक उत्साह बनत रहा भैया साइकिल जब सीखे के हो तो उत्साह रहे
1: हाँ हाँ हाँ
0: कि भाई साइकिल सीख ले जाए को होए कहूँ भी तो साइकिल मिले
1: हाँ हाँ हाँ
0: चलावे के
1: हाँ ये कहा जाए कि भैया
0: साइकिल
1: 10 पास हुई जावे तो भैया साइकिल होने है।
0: मिले।
1: हाँ
0: हाँ
1: तो ये तो बात सही कहते हैं। अच्छा हम ही कहते रहे हो भैया आज भैया देखे बिना ढोल मजीरा के कुछ निक ना लागत हो
0: बात
1: बैजू
0: सही
1: भैया।
0: कहता है, तो भैया हो ढोल में जीरा बजबे करे ओकरे पहले जान ला कि आज नीति बच्चन है,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: कमलेश स्मृति तिवारी से नीति बच्चन किसान भाई सुनवाई जाए। एक अलावा एक बात बत कही बाटे है
1: हाँ हाँ हाँ
0: लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से हमारे गांव का कैसे विकास होत बाटे, ये पे बात बत कही सुनवाई चाहे
1: हाँ
0: मुनावा
1: हाँ
0: तोहरे मन के बात हुई जाए कि भैया गीत गौनई हो चाहे,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: बरम दिन यादों के संघातिन गाई गौनई व किसान भाई एक सुनई।
1: सुनवाई दे भैया।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
4: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
3: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
4: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
5: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे

0: का साथ दें। प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: जगह जगह
2: हाँ देखा हो बैजू भैया काम से भैया लोकगीत रहन बरम दिन यादव और संघाती के
1: सही भैया ठीक है और कहा थे सनेश भी किसान भाई सुने
2: हाँ हाँ हाँ
1: हम कही हो जोन बात बत कही होत रही भैया हो कि नीति के बात
2: हाँ
1: अपने यहाँ देखा कविता पाठ भी होत है रामायण पाठ भी होत है अब नीति वचन भी होत है
2: हाँ
1: सब में कुछ न कुछ ऐसा सनेश रहा था भैया हो जैसे सामाजिक समरसता भी आ सकत बहुत कुछ सीख भी मिलत है तो आज नीति वचन में देखा श्री कमलेश मणि तिवारी का कुछ कहत बाटे न किसान भाई का सुनई और गुनई जौन बाटे
2: ठीक हो भैया सुनवाए दे।
3: महाभारत के यक्ष प्रश्नों की तरह रामचरितमानस के उत्तरकांड में गरुण जी महात्मा काक भुशुंड जी से जीवन के साथ गंभीर प्रश्न इस प्रकार पूछते हैं।

हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह समझा कर बताइए। पहले तो मुझे यह बताइए कि शरीरों में सबसे अच्छा शरीर कौन सा है। काकभुशुंड जी का उत्तर।

हे तात, मनुष्य शरीर के समान श्रेष्ठ कोई भी शरीर नहीं है। इसकी याचना चर अचर सभी जीव करते हैं। यह नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है एवं कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। उत्तरकांड में यही बात भगवान राम स्वयं अपने श्रीमुख से इस प्रकार कहते

हे पुरवासियों, सभी धर्म ग्रंथों का कहना है कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि यह देवताओं को भी दुर्लभ है। यह सभी साधनाओं का निवास स्थान तथा मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर ही जीव अपना परलोक संवार सकता है। गरुड़ जी का दूसरा प्रश्न।

अर्थात दरिद्रता के समान कोई भी दुख संसार में नहीं है तथा संत मिलन के समान संसार में कोई सुख भी नहीं है। सत्संग सुख की श्रेष्ठता का प्रसंग सुंदरकांड के लंकिनी हनुमान जी

सत्संग। अर्थात हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को तराजू के एक पड़ले पर रख दें और क्षण मात्र के सत्संग सुख को दूसरे पड़ले पर रख दें, फिर भी स्वर्ग अपवर्ग के सभी सुख मिलाकर भी पल भर के सत्संग सुख की तुलना कभी नहीं कर सकते हैं। गरुण जी का तीसरा और चौथा प्रश्न।

अर्थात आप संत और संत के मर्म को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उनके सहज स्वभाव को मुझे अच्छी तरह से बताइए। काकभूषुण जी का उत्तर।

हे पक्षियों के राजा, मन वचन और शरीर से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए स्वयं दुख सहते हैं, जबकि अभागे असंत दूसरों को दुख देने के लिए स्वयं दुख उठाते हैं।

कृपालु संत भोज वृक्ष की तरह होते हैं जो दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अर्थात अपनी खाल तक खिंचवा लेते हैं, जबकि दुष्ट असंत सन के वृक्ष की तरह होते हैं जो दूसरों को बंधन में बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर दुसह दुख से मर जाते हैं। गरुड़ जी का पांचवा और छठा प्रश्न।

श्रुतियों में अहिंसा को परम धर्म बताया गया है और पर निंदा या चुगली के बराबर कोई पाप नहीं, अर्थात अहिंसा ही सबसे बड़ा पुण्य है और पर निंदा ही सबसे बड़ा पाप है। गरुड़ जी का सातवां प्रश्न।

आप सर्वज्ञ हैं और मेरे ऊपर आपकी कृपा भी बहुत अधिक है, इसलिए आप मुझे मनुष्यों के मानस रोगों को अच्छी तरह समझाकर बताइए। काकभुषुंड जी अत्यंत सुंदर रूपकों के द्वारा मानस रोगों की व्याख्या करते हुए गरुण जी को इस प्रकार समझाते हैं।

रूप जई सन्निपात दुखदाई। काम ही बात है, लोह बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध ही पित्त है जो सदा छाती को जलाता रहता है। कहीं ये तीनों भाई अर्थात काम क्रोध और लोभ इकट्ठा मिल जाएं, फिर तो भयंकर दुखदाई सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है।

कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता ही दाद है, ईर्ष्या ही खुजली है, हर्ष विषाद घेघादिक रोग हैं, दूसरों के सुख को देखकर होने वाली जलन ही क्षय रोग है, तथा दुष्टता एवं मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अब इन सभी मानस रोगों से छुटकारा कैसे मिले, इसका एकमात्र उपाय क्या है, इसे एक अत्यंत सुंदर रूपक के द्वारा समझाते हुए काकभुषुण जी कहते हैं।

0: अर्थात भगवान श्री राम की कृपा से ही ये सारे मानस रोग नष्ट हो सकते हैं। यदि ऐसा संयोग बन जाए कि सद्गुरु रूपी वैद्य के वचनों में विश्वास दृढ़ हो जाए, विषयों से विरक्त रूपी परहेज चलता रहे, श्री राम भक्ति रूपी संजीवनी जड़ी जैसी दवा चलती रहे और श्रद्धायुक्त बुद्ध रूपी अनुपान भी चलता रहे, तो निश्चित ही इस उपचार से ये सारे मानस रोग नष्ट हो सकते हैं। नहीं तो करोड़ों प्रयत्न करने पर भी इनसे कभी भी मुक्ति मिलना संभव नहीं है।
1: हाँ भैया रानू,
2: हाँ हो बजू भैया,
1: कहीं देखा ही नीति वचन कितना गूढ़ गूढ़ बात बताएं रामायण से लेके कमलेश मर तिवारी जी।
2: हाँ हाँ हाँ,
1: तो भैया हो बहुत कुछ किसान भाई सुने हो ही गुने ही भाई उनका समझ आई हुए।
2: हाँ हाँ हाँ,
1: अब देखा हो बात बत कही होत रही कि भैया हो लघु कुटीर उद्योग बारे में, अपने यहाँ देखा पुस्तैनी धंधा रहा लघु कुटीर उद्योग।
2: हाँ हाँ,
1: तो आज भी वो कब बढ़ावा दिया जात बाटे, चाहे का कहा थी माटी का काम करे वाले भैया हो या चाहे लोहा का काम करे वाले भैया रहा।
2: हाँ हाँ,
1: तमाम तरह काम अभी से रहा गाँव में ही, देखा पलरा झुआ बिनात रहे ना रस्सी। हाँ, का हाँ, काम हाँ, एक दूसरे से काम चल जात रहा भैया हो, तो बहुत ज्यादा हाई हाई नहीं करे पड़त रहा।
2: ये तो सही कहते भैया, एक बात और रहे मन सरकारों भैया अपन

0: योगदान देता
1: हाँ,
0: है।
1: अब देत बा भाई इत होत बने कि वो था से जान नाम से जाना जाए
0: हाँ
1: जोन
0: हाँ
1: बाटे,
0: हाँ
1: या
0: हाँ
1: माटी के काम बात वो अलग कलाकारी में कैसे कब और अच्छा किया जाए जोन बाटे है।
0: हाँ हाँ
1: तो आज
0: हाँ
1: यही बात बत कही बा कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण विकास,
0: हाँ हाँ
1: डॉक्टर
0: हाँ
1: बद्री नारायण तिवारी से डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण के बात बत कही भाई भाई,
0: हाँ
1: हम
0: हाँ
1: कहीं
0: हाँ
1: किसान भाई एक का सुनई और समझें।
0: सुनवाई दे भैया।
2: श्रोताओं नमस्कार। ग्रामीण विकास आज के भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती बन चुकी है। कृषि का विकास वांछित दर से नहीं हो रहा है, या कृषि के जो लाभ हैं वो उतने नहीं हो रहे हैं जिससे किसान अपने को आत्मनिर्भर समझ सके। ऐसे में एक मार्ग गांव के औद्योगीकरण का दिखाई पड़ता है, खास करके छोटे और लघु उद्योगों के माध्यम से गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की चुनौती आज हमारे सामने दिखाई पड़ रही है। किस प्रकार से ये लघु और कुटीर उद्योग ग्रामीण विकास में सहायक हो सकते हैं, इस विषय पे आज हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो में हैं पंत संस्थान प्रयागराज के निदेशक डॉक्टर बद्री नारायण तिवारी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो लघु और कुटीर उद्योग की बात की जाती है, ये किस प्रकार के उद्योग हैं, इनकी क्या खासियत है, और ये लघु एवं कुटीर शब्द की जो संकल्पना है वो कहाँ से आई है?
3: देखिए, पहले तो मैं थोड़ी सी ये बात इस सीधे इस सवाल के जवाब पर आने के पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो ग्राम, भारतीय ग्राम, यानी अभी भी आंकड़े ये कहते हैं कि हमारे 60% पॉपुलेशन गाँवों में रहती है। पहले 80% कहते थे हम लोग, अब अराउंड 60% गाँवों में रहती है। और ये पॉपुलेशन जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपके
2: जी
3: किसी देश की अगर 60% जनता आगे नहीं बढ़ रही है तो वो फिर आपका GDP प्रभावित होगा, आपका ग्रोथ रेट प्रभावित होगा, आपका सब कुछ प्रभावित होगा। तो सबसे बड़ी चैलेंज अभी हमारे भारतीय समाज और सरकार सबके सामने है कि कैसे इस ग्राम समाज को विकसित करें। और उसमें जो एक अच्छा ये जो ग्राम समाज के विकसित करने की पूरी अवधारणा लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से, वो गांधीयन अवधारणा है। गांधी खुद बहुत छोटे छोटे जो भारतीय जनता के ऑक्यूपेशन हैं, उनके काम हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते थे, और उसके माध्यम से उन्होंने एक यानी बड़ी जो मेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के समानांतर
2: जी,
3: एक जो लघु और कुटीर के माध्यम से आगे बढ़ना है, ये गांधी से प्रभावित जो चिंतन परंपरा रही है भारतीय समाज में, उसने इसको आगे बढ़ाया, उसने इसको रूप दिया। और आप देखेंगे कि कुटीर यानी अगर आप वासुदेव शरण अग्रवाल को याद करें कि गांव में हर क्रिया अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है,
2: जी।
3: तो मिट्टी का बर्तन बनाता है तो उसका वो जो चाका होता
2: चाक होता
3: है,
2: है
3: जो
2: जी
3: छर्रा होता है, और
2: जी
3: पूरी टेक्नोलॉजी है, एक
2: जी
3: रूरल
2: जी
3: टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से ये समूह अपने जीवन जीते रहे हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो प्रोडक्शन है उसको कहीं से भी उद्योग के रूप में देखा जाना जाने का काम बड़े पैमाने पर नहीं हुआ।
2: जी
3: ये गांधीयन अवधारणा ने इसको आगे बढ़ाया और फिर भारतीय सरकार ने इसको पिकअप किया, और अब ये एक भारतीय सरकार के सबसे प्रायोरिटी एरिया में ये है कि कैसे हम लघु और कुटीर उद्योगों को विकसित करें।
2: जी जी जी सर देखा जाए तो जो हमारी परंपरागत अर्थव्यवस्था थी गांवों की, वहाँ समाज का इस प्रकार से विभाजन हुआ था कि जैसे प्रतीत होता था कि ये प्रत्येक कार्य के अनुसार
3: बिल्कुल
2: एक एक वर्ग बने हुए थे, और
3: बिल्कुल
2: वो उस वर्ग में जिस कार्य को किया जाता था उसके वो विशेषज्ञ होते थे।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
2: लेकिन आधुनिक समाज में जैसे जैसे नई तकनीक का प्रवेश हुआ, ये परंपरागत जो हमारे उद्योग थे, छोटे उद्योग या कह लें घरेलू उद्योग या कह लें जो हमारे पुश्तैनी उद्योग थे, उससे जीवन यापन कठिन होने लगा। ऐसे में इस छोटे उद्योग को उद्योग के रूप में अपनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसके लिए आवश्यक नहीं था कि वो परिवार के लोग ही करें, परिवार के बाहर के लोगों की भी भूमिका उसमें
3: हाँ
2: शामिल होती चली गई। तो फिर इस कुटीर उद्योग को और या लघु उद्योग को किस प्रकार से दिशा दी जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो कैसे ये कार्य किया जाए कि ग्रामीण विकास के साथ जो व्यक्ति है

0: उसका भी विकास संभव हो सके। क्या
1: बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न किया ब्रजेंद्र जी आपने। देखिए, भारतीय समाज में लगभग हमारी अनुसूचित जाति में लगभग 40 जातियां हैं
0: जी
1: और ओबीसी में भी लगभग 45 जातियां हैं, जो अपने ट्रेडिशनल हुनर पर,
0: जी जी जी
1: ट्रेडिशनल जो उनका पेशा है,
0: जी
1: पुश्तैनी पेशा, जो अपने आप में एक गृह उद्योग थे,
0: जी
1: उसके रूप में जीते रहे हैं। और आधुनिकता के आगमन के बाद उनके पेशे इररेलीवेंट होने लगे हैं,
0: जी
1: रिडंडेंट होने लगे
0: जी जी
1: हैं।
0: जी
1: तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे जो खादी भंडार का, जो खादी का मॉडल है,
0: जी जी जी
1: जैसे देखिए आप, खादी एक चरखा से कपड़ा बुनने का काम, और उसको किस तरह से गांधीयन जो सोच थी
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: जो
0: जी
1: चिंतकों की, उसने इतना बड़ा आधार बना दिया कि आज खादी एक
0: ब्रांड है एक
1: ब्रांड है।
0: जी
1: और नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद उसको एक ब्रांड का रूप भी दिया, वो
0: जी
1: खुद
0: जी
1: भी उन्होंने खादी पहना और एकदम उसका एक, और आज सब आप देखिए किस तरह से वो चल रहा है, उस पर कितने लोगों की जीविका चल रही है।
0: जी जी जी
1: ऐसे ही हमारे पॉटर्स हैं, जिनका आप देखिए गोरखपुर की पॉटरी,
0: जी
1: हमारे आजमगढ़ की पॉटरी, ये सब अपनी अलग
0: जी
1: अलग
0: जी जी
1: रूपों में हैं। और इन पर कोई बड़ा, अगर हम इस तरह से एक यानी उसको कॉन्सेप्चुलाइज करके उसको, उसका प्रोडक्शन और उसकी मार्केटिंग,
0: जी असली
1: मार्केटिंग जो सबसे बड़ी चीज़ है,
0: जी
1: और मार्केटिंग से जब तक नहीं जोड़ा जाएगा उनको, तब तक वो बना के तो रख लेंगे
0: जी
1: लेकिन वो मार्केट नहीं हो पाएगा।
0: बिल्कुल
1: तो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, उसके बाद उसका चेन, जिसको कहते हैं ना चेन नेटवर्क,
0: जी
1: ये तीन चीज़ को हमें मजबूत करना पड़ेगा, चेन,
0: जी
1: ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग।
0: जी
1: और ये
0: तभी
1: तीन
0: तभी
1: तीन करेंगे तब आधुनिक ढंग से हम इन कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ा सकते हैं और सशक्त कर सकते हैं।
0: जी सर, ये तो बात बिल्कुल सही है कि जब तक प्रोड्यूसर को या जो निर्माता है किसी वस्तु के, उनको ये दिखाई नहीं पड़ेगा कि इस कार्य को करने में उन्हें लाभ होगा, तब तक वो उसमें अपना हुनर दिखाने में सक्षम नहीं होंगे या उसमें बहुत ज़्यादा मन लगा नहीं पाएंगे। यही मजदूर जब इस अपने परंपरागत धंधे को बहुत प्रॉफिटेबल नहीं समझ पाता है, तो वो फिर अपना घर छोड़कर, अपना व्यवसाय छोड़कर दूसरे शहरों में जाता है और वहाँ पे वही काम किसी बड़ी फर्म के लिए करता है और फिर वहाँ उसके जो हुनर है उसका सदुपयोग हो पाता है। क्यों नहीं ये काम हमारे गांवों में हो सके?
1: बिल्कुल
0: इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। आपने बताया अभी कि मोदी जी हो या पूरी सरकार ही इसमें लगी हुई है और लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही है।
1: बिल्कुल
0: वो किस प्रकार के प्रोत्साहन हैं जिनके माध्यम से लघु एवं कुटीर उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा फलित होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभपूर्ण होंगे, उन कुछ प्रयासों के विषय में कुछ
1: ये
0: बताइए।
1: भारतीय सरकार ने आज़ादी के बाद से ही अनेक अनेक योजनाओं के माध्यम से इस तरह के प्रयासों को सपोर्ट करने के लिए जो लोन की सिस्टम
0: जी जी
1: बनाई, जिसमें कोई भी कुटीर उद्योग करने वाला व्यक्ति एक व्यक्तिगत रूप से भी और
0: जी
1: एक
0: जी
1: फर्म बना करके भी
0: जी जी जी जी
1: वो जा करके सरकार से मदद मांग सकता
0: जी
1: है
0: जी
1: और ऐसी योजनाओं से लाभ ले सकता है।
0: हाँ हाँ हाँ
1: फिर उसके बाद जो वो आगे बढ़ता रहा, और आप देखिए आज वो आ गया है जो पूरा पूरा नोशन ऑफ स्टार्टअप है, तो उस
0: जी
1: स्टार्टअप नोशन में भी कुटीर उद्योगों को और रखा गया है कि अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर है, रूरल एंटरप्रेन्योर है, कोई बड़ा काम करना चाहता है, तो वो सरकार उसको लोन देगी और बिना इंटरेस्ट लोन होगा, और उस पर वो अपने को विकसित करे और फिर एक बड़ा सा काम करे।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: ये
0: जी
1: जो पूरा स्टार्टअप का नोशन है, किस तरह से रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं, कौशल को लेकर के
0: जी
1: ये जो हुनर
0: कौशल विकास
1: है,
0: योजना के
1: कौशल
0: तहत
1: विकास की योजनाएं हैं
0: जी जी
1: जिसमें
0: जी
1: उनको ट्रेन करके आधुनिक उसके संचार के साथ जोड़ना, ये
0: जी
1: चल रहा है। पारंपरिक हुनरों पर बहुत जोर है सरकार का,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: पारंपरिक हुनरों के
0: एक एक
1: प्रसार।
0: और प्रयास बहुत सराहनीय माना जाएगा राज्य सरकार की तरफ से, एक जनपद एक उत्पाद की योजना।
1: हाँ
0: हर
1: बिल्कुल,
0: जिले की कुछ पहचान होती है
1: हाँ
0: एक
1: बिल्कुल
0: उत्पाद,
1: बिल्कुल
0: उसे प्रोत्साहित करना, उसकी मार्केटिंग के लिए तमाम प्रोत्साहन देना। कहीं भी जिला में अगर उद्योग मेले लगते हैं या कुछ इस प्रकार के
1: नहीं देखिए,
0: विकासात्मक
1: जैसे जैसे प्रतापगढ़ का आंवला,
0: जी
1: अब उस आंवले से बहुत तरह
0: तमाम तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं
1: और उससे पूरा एक कुटीर उद्योग पूरा एक वो चल रहा है। तो अगर प्रतापगढ़ को आपको आगे बढ़ाना है तो वो वहाँ का वो आंवले का व्यापार आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। लखनऊ के आसपास का आम, उसको इलाहाबाद की अमरूद, ऐसे ही अगर आप देखें तो आजमगढ़ का पॉटरी, जो काली पॉटरी है, गोरखपुर की लाल पॉटरी है, तो इन सबको हमें आइडेंटिफाई किया है सरकार ने और उसके लिए योजना भी लॉन्च करी है आपने।
0: सर ये तो जो हुई कि ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें होती हैं वहाँ ही हो और वहाँ इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन सर कोई व्यक्ति अगर कुछ थोड़ा हुनरमंद है तो वो गाँव में ही अपने ही गाँव में बिना सामूहिक प्रयास के अपने व्यक्तिगत प्रयासों से अगर कुटीर उद्योग लगाना चाहता है तो उसे किस प्रकार के सपोर्ट प्राप्त होंगे, सरकार की तरफ से या भी कोई भी सामाजिक संस्था की तरफ से, कुछ इस तरह की योजनाएं हैं?
1: देखिए व्यक्तिगत रूप से भी कोई एंटरप्रेन्योर अगर अगर अगर अपनी किसी भी हुनर को आगे बढ़ाना चाहता है तो वो लोन ले सकता है बैंक से
0: जी।
1: वो लोन उसके पास आधार होना चाहिए, उसके पास पैन, ये सारी जो बाध्यताएँ हैं वो तो कर

0: वहाँ ही हो और वहाँ इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन सर कोई व्यक्ति अगर कुछ थोड़ा हुनरमंद है तो वो गांव में ही अपने ही गांव में बिना सामूहिक प्रयास के अपने व्यक्तिगत प्रयासों से अगर कुटीर उद्योग लगाना चाहता है तो उसे किस प्रकार के सपोर्ट प्राप्त होंगे सरकार की तरफ से या भी कोई भी सामाजिक संस्था की तरफ से, कुछ इस तरह की योजनाएं हैं?
1: देखिए व्यक्तिगत रूप से भी कोई एंटरप्रेन्योर अगर अगर अगर अपनी किसी भी हुनर को आगे बढ़ाना चाहता है तो वो लोन ले सकता है बैंक से
0: जी।
1: वो लोन उसके पास आधार होना चाहिए, उसके पास पैन, ये सारी जो बाध्यताएं हैं वो तो करना पड़ेगा, लेकिन वो उसको लोन मिलेगा और वो लोन के माध्यम से वो अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। तो सरकार यही कर सकती है कि आपको आर्थिक सपोर्ट दे
0: जी, जी,
1: और शेष चीजें और आपको ट्रेनिंग दे,
0: ट्रेनिंग दे
1: तो उसके ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था है कौशल विकास केंद्र में हुनरों पर बेस्ड करके। देखिए जो व्यक्ति होता है गाँव में वो समूह होता है वो अपने आप में, क्योंकि सामूहिक ज्ञान होता है उसके पास, करेगा व्यक्ति लेकिन वो समूह का ज्ञान होगा। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जैसे जो हमारे अनुसूचित जाति में कई जात, जैसे ये जो हमारे चमड़े के काम करने वाले लोग, ये गांव में उसको उपेक्षा से देखा जाता है, लेकिन यही आगरे में जब जूते के फैक्ट्री में और उसमें काम करते हैं तो वो इंडस्ट्री के हिस्सा हो जाते हैं। तो कैसे हम इनके वर्क को, काम को गौरवान्वित करें और उसमें मूल्य डालें और उसको जो जाति व्यवस्था की शक्ति है
0: जी जी
1: उस सीमा को काटते हुए
0: जी
1: और
0: जी
1: शक्ति को आगे बढ़ाएं, उसकी सीमा को खत्म करें,
0: ये सोच अगर विकसित होती है इस तरह की और हर काम की अपनी प्रतिष्ठा है, अपनी इज्जत है, तो उस तत्व को ध्यान में रखकर अगर समाज इस तरह के कार्य को प्रोत्साहित करे तो निश्चित है कि ग्रामीण विकास होगा और गांव में जो आत्मनिर्भरता की जो जो संकल्पना थी गांधी जी की, आत्मनिर्भर गांव,
1: बिल्कुल आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशिएंट विलेज
0: जी,
1: और वही वही मूल प्राण है भारतीय समाज
0: जी
1: का।
0: जी जी हाँ। तो एक तरह से सारी चीजें फिर गांव में उपलब्ध हो जाएंगी और फिर गांव निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और लोग आत्मनिर्भर होंगे। सर आप हमारे स्टूडियो आए और इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व पर और उनके माध्यम से कैसे ग्रामीण विकास हो। आपका स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया,
3: हाँ हो बैजू भैया,
2: हम कहीं देखा ही इतनी नीक बात कही जोन भाई है, लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण विकास। डॉक्टर बद्री नारायण तिवारी से डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण के बात बत कही किसान भाई सुनिन।
3: हाँ
2: भाई सुनिन तो गुनई हाँ, ये कुटीर उद्योग अपने से कैसे वो आगे बढ़ सके थे, आमदनी हो सकत है, अब भाई देश परदेश ना जाए परे, घर ही में जोन बाटे है काम मिल जाए।
3: आप तो सरकार भैया मन का नाम से अनुदानों देते हैं,
2: अपन काम कई के भैया हो रोजी रोटी अपने तो हो, चार जने को हमें रोजी रोटी दयु सका थी अगर इससे आप काम शुरू कर जाए।
3: कही गया हो भैया, देखे एक बात और रहे हो, देखे गर्मी तेज पड़ता है,
2: कही गया
3: तो भैया का उसे गर्मी में कहा है कि किसान भैया बहनी हरण के साथ आप अपने साथे साथे पशु प्राणी का भी ख्याल रखे के है और साथे साथे अपनी लड़कियां गदेला का।
2: सही कह है, लड़किया गदेला के बात आवे तो भैया हो तो इस समय स्कूल के छुट्टी बा और लड़किया हाँ। दोपहरिया में ना आमे के बगीचा में चला जात बाटे,
3: एकदम सही
2: पता चली सही से कपड़ा पहरे यहाँ कि नहीं पहरे यहाँ, तो भाई गर्मी भी लग सकत है, पानी भी नहीं पिए रहते हैं तो भैया हो वो भी नुकसान कर सकत है। तमाम तरह के देखा वो डिहाइड्रेशन जोन हो जाता है, बीमारी पानी की कमी हो जाता है शरीर, तो भाई उसी बड़ी परेशानी हो जाती है।
3: एकदम सही कह भैया। अच्छा एक बात और है भैया, देखे अपन जो जानवर किसान भैया बहनी हरण के चाहे कि भाई उनकर भी बहुत ध्यान रखें, काहे कि यह वक्त भैया कहा है कि उनके पानी और चारा का बहुत ध्यान देवे के हैं।
2: बात सही कह हो, बेजुबान जानवर हो ना, कहीं हमारे पियास लागबे या भूख लागबे, तो हम सब ताजा पानी समय समय पर उनका जरूर दिखाई जोन बाटे ही। ये पानी कह जाते ना कि हम पानी की पूर्ति बहुत जरूरी बा। दूसरी बात, ये गर्मी से बचे बरे संझा सवेरे नहवाओ भी बहुत जरूरी बा, नहवाए के साथ साथ चारा उनका बढ़िया से दे। एक बात और करें कि हरा चारा अगर देते हैं तो देख लें घामे से काट के आवा हो तुरंत ना दे, भैया हो जहरीला हो सकत है, जहे चरी बोए हो या जौन भी बोए हो वो कर लै हो भैया पानी डाल के पहले ठंडावई, फिर ओका जौन बाटा है कटाई के तब खियाव।
3: एकदम सही कह भैया। एक बात और रहे हो, जहाँ बेजू भैया किसान भैया बहनी हरे बांधत हैं ओहू के बहुत ध्यान देवे के है, काहे कि भैया देखे जहाँ बांधे तही मजबूत रहे।

0: भैया के नाम से जोन खिड़की उड़की रहे भैया ओके जोन बोरा होता है जूट वाला भैया ओके वही से ढक दें और ओकरे
1: मतलब
0: बाद
1: लोग
0: भिगो
1: न
0: दें।
1: आवे,
0: हाँ हाँ
1: धुआं में ना
0: हाँ
1: आवे। एक
0: हाँ
1: बात यहाँ तो सही कहा भैया, छाया में बांधे, जहाँ तक ज़्यादा छाया रहे ज़्यादा अच्छा रहे,
0: हाँ हाँ
1: लूप न
0: हाँ
1: लगे धूप न लगे।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: भैया
0: हाँ
1: हो ही बातन का ध्यान रखिए तो ठीक रहे, या कोनो भी तरीका का हमें अगर दिक्कत आवत है तो डॉक्टर साहब से दिखावे चाहे।
0: हाँ
1: आ
0: हाँ
1: इस समय
0: हाँ
1: भैया हो पशुअन के तमाम तरह के टीका भी लगा थे नावे वाले समय, काहे बरसे बरसात शुरू हो तो पशुअन के तमाम तरह के बीरामी शुरू हो जाए,
0: हाँ हाँ मुँह पका है खुर पका
1: खुरपका
0: है।
1: मुँह पका फारा यह तरह
0: हाँ
1: के बीरामी शुरू हो जाए, तो भैया तो का समय से टीका अगर लगवा लेथिन तो भैया हो उकर रोक दोक हो जाता है। तो
0: एकदम
1: ये
0: सही क्या है
1: बात का
0: भैया।
1: जरूर ध्यान रखें, या वो अपना के भी ख्याल रखें कि भाई इसमें खेती किसानी काम हो तो बाजार भी लोग जात बाटन,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: गर्मी से बचें धूप से बचें, जौन अगर संझा सवेरे हो सकत जाए, अगर दोपहरिया में जाए पड़े तो मोटा सूती कपड़ा पहरे, मूड़े में उछा हाँ,
0: हाँ हाँ
1: और
0: हाँ
1: साथे साथे का कहा पानी पियत रहें। और
0: हाँ
1: समय समय स्कूल निकला गया था, देखा चले के भी बेला होगी तो पंचन साग गया ले जाए, तो पंचो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

ग्रामीणजन अभी अपना पंचायत घर कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब आपको सुनवाते हैं एक देशगान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद सुरों में देश गान। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रादेशिक समाचार की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली है गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में 24 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मंत्री परिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दी है।
1: नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम है और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर है, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्री परिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
0: कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई है। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
2: कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड

0: trucks and buses registered in Delhi NCR to BS6 or EV or CNG vehicles. इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है. सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान. इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा और करीब 16,000 बसेज हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम. इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पॉल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा.
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और उद्यम के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी है. उन्होंने कहा कि साल 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है. इसी का परिणाम है सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.
2: सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है. और सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी भाव के साथ आगे बढ़ रही है. और आज इसी का परिणाम है प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त. 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया. 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है. इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं. लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है.
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का भी शुभारंभ किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं. मुख्यमंत्री ने निर्यात के मानकों पर खरा उतरने पर जोर देते हुए प्राकृतिक खेती पर बल दिया.
2: जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सकें जो निर्यात करने लायक भी हो. और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है भारतवासियों के सामने. गौ आधारित खेती है ये. गौ माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गौ माता की रक्षा भी होगी लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से आपकी खेती को बचाव करने के साथ साथ लागत को कम करने का भी एक माध्यम हो सकता है. हमें इसमें कार्य
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं. इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं. वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी. इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे. पेश है एक रिपोर्ट.
3: बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी. इस दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग एवं ODOP उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी. इस प्रदर्शनी में वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपरा के 6 शिल्पियों के 6 विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित करेंगे. प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुँचाने का अवसर भी मिलेगा. ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा. प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी. मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है. आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है. आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की.
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है. सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है. नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता है.

0: वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। गाजियाबाद के अभिषेक कुमार ने बताया कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिली है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
2: प्रदेश के 36 जिलों में आज और कल टीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली ये परीक्षा आज पहले दिन सकुशल संपन्न हुई। 3,539 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 8,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब पेश है हमारा खास कार्यक्रम बोलते नगमे।

0: संगीतकार है, तब फिर कहना ही क्या है, वो तो ऐसे ऐसे शब्द वहां पर पिरोता है उसकी लड़ियां कि जैसे लगता है कि बहुत खूबसूरत बगीचा फूलों का सज गया हो या कोई बर्फीली जगह है, वो फिर उसमें तरंग महसूस होने लगती है। तो कहाँ आप ले जा रही, पहले ये बताइए।
1: ये जो वादियां है ना, आप कहते हैं कि क्लू मत दीजिए, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं प्लीज। हाँ, मैं आपसे एक विटनेस लेना चाहती हूँ अभी।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत लंबी भूमिका भी हो गई है।
1: रोजा फिल्म आई थी,
0: अरे वाह,
1: मनी रत्नम जी की,
0: जी
1: प्यारी सी मधु और अरविंद स्वामी हैं उसमें हीरो के तौर पर। जब भी वो गाना सुनते हैं और ऐसा लगता है कि ए आर रहमान साहब जब इस गाने का म्यूजिक बना रहे थे तो वो वादियों के बीच बैठे हुए थे अपने साजिंदों को लेकर के, तभी शायद इस तरह की जो धुन सुनाई पड़ती है वो बिल्कुल इसी तरह बनी है। सुनते चलें क्या?
0: चलिए।

0: सच में हम वादियों में जाते हैं तो ये जो दिल की कली है कैसे धीरे धीरे से खिलने लगती है ना
1: जी।
0: हम बिल्कुल अपने हाथ खोल देते हैं, अपने सारे रिश्तों को उस पल में जीना चाहते हैं, क्योंकि पता है वहाँ पे प्रकृति अपने पूर्ण रूप में होती है। उसका जो सौंदर्य होता है बहुत सुंदर होता है, और हम में से बहुत सारे ऐसे मानव हैं जो प्रकृति से उस तरह से लगाव नहीं रखते। तो जहाँ छेड़छाड़ नहीं की गई है, जब आप वहाँ पर धूप को छनते हुए देखेंगे, ऐसा लगेगा जैसे आह, ये गुनगुनाहट जो है वो आपके लिए ही बनी है, और शायद वो मन के दरवाज़ों को खोलती है और फिर एक नए एहसास को जन्म देती हुई सी मालूम पड़ती है।
2: और जो कश्मीर की खूबसूरत वादियां हैं, घाटियां दिखाई जा रही हैं
0: जी,
2: तो नदियों की जो कलकलाहट है, जो आस्था का एक रूप होता है, इतना सुंदर सुरम्य वातावरण है, पवित्रता की छाव में अगर कोई व्यक्ति वहां पर गया है तो पवित्रता का, कोमलता का एहसास उसे छू ना जाए उसके अंतर मन को, ये हो ही नहीं सकता। और ये देखिए किस तरह की बतकही की जा रही है आगे
0: जी,
2: वो हम अपने दोस्तों तक साझा करते हैं।

0: केएस चित्रा जी ने और एसपी बाला सुब्रमण्यम जी ने इस गीत के जरिए बिल्कुल कमाल कर दिया है। एसपी बाला सुब्रमण्यम जी ने जिस तरह से गाया है इसको मीठे से अंदाज में कि छेड़े धुन कोई प्यार की रागिनी, मतलब कितना चढ़ाव है और अचानक से केएस चित्रा बिल्कुल ठहर के गाने लगती हैं। शायद एआर रहमान साहब केएस चित्रा जी एसपी बाला सुब्रमण्यम के ही वश में था कि एक बार हम चढ़ाव की तरफ जा सकते हैं और तुरंत धीरे से शांत हो सकते हैं, दिल की बात हम हौले हौले भी कर सकते हैं।
1: और देखिए नेहा जी, आपने एआर रहमान

0: साहब की बात
1: जी,
0: की है
1: जी,
0: कमाल से भरा हुआ जो उनका संगीत है और कहते हैं कि संगीत फलक पर सर्वथा नई संगीत ध्वनियों को लाकर एक नई दिशा उन्होंने दी है। और ये कहना पर्याप्त नहीं है कि रहमान के संगीत में जैज, रॉक, फंक, पाश्चात्य और भारतीय शास्त्रीय तथा लोक संगीत सभी का रंग आपको उसमें नुमाया नजर आएगा। तो ये देखिए, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे भी तो कुछ बात हो रही है ना
1: जी
0: बातचीत हम भी चुपके से सुने
1: जी।

0: दोस्तों, आप जब इस गाने को गौर से देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि मधु ने बिल्कुल प्लेन साड़ी परिधान के तौर पर पहना है। पूरे गाने में वो सिर्फ रंग बदलता है और उनकी खूबसूरती उस परिधान में बहुत निखर करके आती है। कहते हैं ना कि सौंदर्य के लिए बहुत ज़्यादा श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल मुफीद है। और जबकि इस चित्रा कहती हैं कि देखो, ये संग नहीं टूटना चाहिए, और ये जो पलकों के तले मोहब्बत पल रही है, पाई जा रही है, ये बहुत ख़ास है, इसको क्यों ना बंद कर लें ताकि ये कहीं खुल ना जाए और बिखर ना जाए। ये कितना सुंदर एहसास है ना, कुछ चीज़ों को पकड़ लेने का।
1: शब्दों की जो आँच है वो बर्फीली वादियों में जिस तरह से नुमाया हो रही है, गर्माहट पैदा कर रही है, वो एहसास जो जन्म ले रहा है नेहा जी, उस एहसास के जन्मदाता हैं गीतकार महबूब, उन्हें हम भला कैसे भूल सकते हैं। शब्द शब्द मानो बोल रहे हों ये।

0: जी। अब अगले गाने की ओर चलना है या नहीं?
1: चलिए, मैं तो पीछे पीछे आती हूँ नेहा जी।
0: नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि हम लोग साथ में चलें सब लोग। और पता है, साथ चलने का जो आनंद है ना, वो मुझे लगता है किसी हीरे, सोने या बहुत बड़े महल से कहीं अधिक है। जब हम इस साथ को मिस करते हैं तो फिर वो जो एक अकेलेपन का एहसास भी जागता है, और तब समझ में आता है कि वो जो साथ है वो कितना कीमती है। ऐसा कुछ गाना बना क्या?
1: नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारे गीत बने हुए हैं कि जो इस भाव को प्रदर्शित करते हैं।
0: अच्छा, ओ।
1: बिल्कुल। और देखिए, जब आप साथ की बात कर रही हैं कि साथ में साथी है, साथ साथ चल रहा है, लेकिन उस साथ चलने की जो आहट है वो सुनाई नहीं दे रही है, तो सारी फिजाएं वही होती है, हवाएं भी वही होती है, सामने खुला सा समुद्र भी वही है, लहरें भी वही है, लेकिन कहीं कुछ लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा सा है, कहीं कोई प्यास है अंदर ही, और एक उदासी चेहरे से उतरकर पूरी फिजाओं में जाकर वो फैल जाती है, और तब एक गीत का जन्म होता है। गीत ऐसा कि जब हम उसे सुनते हैं, जैसे कि अभी म्यूजिक सुन रहे हैं हमारे श्रोता
0: जी,
1: और उन्होंने कयास लगाना शुरू कर दिया होगा और उन्होंने समझ भी लिया होगा कि ये गीत क्या कुछ कहने जा रहा है और ये किस फिल्म का गीत है। तो चलिए, उनके साथ हम भी घुल मिल जाते हैं। और आपने कहा है ना कि कौन सा ऐसा कोई एहसास होता है, ऐसा कोई गीत बना है
0: जी।
1: तो ये देखिए, सुनिए और बताइए कि क्या ये वही गीत है जिसकी तलाश आप कर रही थी।

0: वंदना जी, हाँ
1: बिल्कुल,
0: ये वही नगमा है जिसके बारे में मैं सोच ही रही थी जब हम साथ के बारे में बात कर रहे थे। निकाह फिल्म आई थी 80 के दशक में, वीआर चोपड़ा ने इसका निर्माण किया था
1: जी।
0: सलमा आगा थी, दीपक पराशर थे और राज बब्बर। उस समय जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, इस गाने को लोगों ने सुना था, लोगों ने हाथों हाथ लिया था इस गाने को। फजा भी है, हवा भी है, रवा रवा। जरा देखिए रवि जी ने सलमा आगा की आवाज़ को संगीत में कैसे बांधा है ना, बहुत भावुक होती हैं, थोड़ा धीरे गाती हैं और उसी तरह से उन्होंने म्यूज़िक का साथ दिया है उस आवाज़ के साथ। मुझे एक और बात लग रही थी वंदना जी।
1: जी क्या?
0: इसमें वो बात है जिस वजह से सलमा आगा से जब दीपक पराशर कहते हैं कि ये शर्तें हैं और मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, वो उनकी बातों में आती हैं, निकाह हो जाता है और फिर वो बुलंदियां पाने के लिए, नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए मेहनत करने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक पत्नी वो शायद भावनाओं को पकड़ कर बैठ जाती है। वो चाहती है कि जो वादे किए हैं आखिर वो वादे कहाँ गए, क्यों नहीं पूरे हो रहे। और फिर लोग कहते हैं कि ये औरतें जो हैं बहुत तिलिस्मी होती हैं, पता ही नहीं चलता उनके मन में क्या चल रहा है ना?
1: तो चलिए, जो आपने पूछा है मुझसे वो बात आगे करेंगे, क्योंकि अभी ये जो बात कही जा रही है यहाँ पर गीत के द्वारा, उसको पहले हम अपने श्रोताओं तक पहुँचा दें, दोस्तों तक, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं।

0: नेहा जी, जब हम इस गीत को सुन रहे हैं और जो बात आपने गीत के पहले कही थी कि ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं कि स्त्रियां तिलिस्माती होती हैं और सब कुछ तो है उनके पास, फिर भी कहाँ कुछ ऐसी चीज़ है कि जो अधूरापन उन्हें लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपने सारी भौतिक चीज़ें दे दी हैं और हम खुश हो जाएं। एक जो एहसास की बात होती है, जज्बात की बात होती है, वो सबसे बड़ी बात होती है। और कितनी विरोधाभासी जो पंक्तियां हैं कि बुझी मगर बुझी नहीं, न जाने कैसी प्यास है।
1: मैं चाहती हूँ कि इसमें एक और बात जो मेरे दिल को भी छू रही है, वो अगर आप कहें तो कहूँ।
0: जी बिल्कुल कहिए।
1: इसमें जो लास्ट लाइन वो कहते हैं, हर एक पल विसाल का, हर एक पल गुजर गया, बना के दिल पर एक निशान।
0: जी
1: दोस्तों, पता है हर एक पल गुजर रहा है हर एक पल की तलाश में। अगर हम कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, उसके निशान

0: है हमारे दिल पर रहता है। मतलब कैसे हसन कमाल जी ने इस बात को महसूस किया है कि हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी परछाई हमारे जहन में, हमारे दिल पर पड़ जाती है।
1: और नेहा जी, जहाँ पर संपूर्णता इस बात की, इस खालीपन, इस सन्नाटे को मिलती है, जब वो एक लाइन आती है कि लहर लहर के होठ पर वफा की है कहानियाँ,
0: जी
1: बस यहाँ पर ही सारी बात एक तरह से लगता है कि व्यक्त कर दी गई है।

0: वंदना जी
1: जी,
0: बोलते नगमे के सफ़र में जब हम अगली ओर देखते हैं, अगले पड़ाव पर देखते हैं कि हम कहाँ, तो नज़र पता है कहाँ जाके ठहर जाती है,
1: कहाँ
0: फिर से आज हम प्रकृति की ही बात कर रहे हैं। वहाँ पे ऊँचे ऊँचे पर्वत हैं, बड़े लंबे लंबे से पेड़ हैं और पर्वतों पर बर्फ पड़ी है। चार पांच सहेलियाँ जो चुहलबाजी कर रही हैं और एक प्यारे से हीरो, जो शायद उनमें से पांच सहेलियों में से किसी एक को पसंद करते हैं और उनके लिए गाना गाते हैं। वो चारों पांचों सहेलियां ढूंढती हैं कि आखिर वो कौन है, और लास्ट में ये राज खुलता है कि वो है कौन। तो अभी हम भी नहीं बताएंगे कि वो प्यारी सी हीरोइन कौन है और हीरो कौन है।
1: तो चलिए, जो आप कौन कौन कह रही हैं वो आखिर है कौन वो इस गीत की जो पहली लाइन आ रही, मुखड़ा आ रहा है, उससे सब कुछ जाहिर हो जाएगा। तो सुनते हैं।

0: नेहा जी, कौन की बात हो रही थी, तो अब तो कौन वाला सवाल तो गायब हो गया।
1: पूनम ढिल्लो जी।
0: हाँ, पूनम ढिल्लो नजर आ रही हैं, और
1: हीरो
0: और जिनकी तलाश पूनम ढिल्लो कर रही है अपनी सहेलियों के साथ में कि आवाज कहाँ से आ रही, इतनी खूबसूरत सी प्रकृति की अभ्यर्थना करती हुई सी जान पड़ रही है, तो वो तो है कुमार गौरव, बहुत ही खूबसूरत से स्मार्ट।
1: माय गॉड, रियली रियली रियली। और जरा देखिए अमित कुमार जी ने जो गाया है ना, कर्णप्रिय मालूम होता है, एकदम फ्रेश आवाज है, जी करता है कि सुने। अच्छा वंदना जी, एक बात बताइए, आप कभी घुमरी परोवा जानती हैं?
0: हाँ, हाँ, खूब खेला है इस खेल को।
1: क्या है पहले बताइए।
0: जब दो सखियां पकड़ लेती थी हाथ एक दूसरे का और घूमती थी।
1: अब ये बताइए कि जब रुकती थी
0: चक्कर
1: आता था ना,
0: लगता था कि धरती भी चक्कर खा रही है साथ साथ,
1: है ना
0: जी।
1: अब ये गाना कुछ वैसा ही नहीं लग रहा है कि जमीन भी गा रही है, ये आसमां भी गा रहा है। पता है दोस्तों, अगर दोस्ती कर ली जाए इन सभी चांद से, सितारे से, पेड़ पौधे से, पर्वत से, तो यकीन मानिए ये सबसे अच्छे साथी होते हैं और आपकी हर बात को राज बनाकर रखना भी जानते हैं।
0: नेहा जी, बात तो सिर्फ इतनी होती है जो मुझे समझ में आ रही है जब इस गाने को सुन रही हूँ, कि अगर मन में भावनाएं इस तरह की जब जगने लगती है, जब हमें प्रेम की तरफ रुख अपना करना ही पड़ता है, तब हमें हमेशा, क्योंकि हमारे मन का मौसम खिला सा लगता है, तब ये आभास भी हमको होता है कि ये जमीन, ये आसमान, ये पूरा जहां हमारे साथ साथ ही गा रहा है। और संगीत को हम अभी नहीं भूलेंगे, लेकिन हाँ, पहले ये क्या कह रही है ये पंक्ति, पहले ये सुनवा दे, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं।

0: मगर पर्वतों पे घटा छा रही है और प्यार की उम्र शायद करीब आ रही है। मेरा दिल प्यार की यह दास्तान गा रहा है। दोस्तों पता है, पर्वत पर जब बर्फ या बादल उतरते हैं ना, तो बड़े धीरे धीरे पर्वत को भी वो अपने आगोश से ढक देते हैं। और कहीं कुछ चमचमाता हुआ सा होता है, तो कहीं कुछ धुआं धुआं सा होता है। और ऐसे में अगर इस तरह का एहसास जगता है, तो फिर लोग कहते ही हैं कि हाँ, शायद उम्र ऐसी आ गई है क्या। तो किस तरह से जो लेखक है, उन्होंने दिल की बात को पहचाना है।
1: और नेहा जी,
0: जी
1: दिल की पहचान की बात आपने की है, तो संगीत की पहचान की बात आप करते हैं, क्योंकि पिछली बार अभी हमने कहा था जब हम आएंगे तो संगीत की बात जरूर करेंगे। तो संगीतकार आर डी बर्मन साहब, उन्होंने ये संगीत रचा है। और नेहा जी, जब आर डी बर्मन साहब के संगीत की बात आती है, तो ये कहा जाता है कि आर डी बर्मन साहब के साथ फिल्म संगीत का हर पहलू ही बदल गया था। मेलोडी का पुराना ढांचा हो, वाद्य संयोजन की परंपरागत क्रमिक संरचना हो, या ताल की परिभाषा हो, स्वर और ध्वनि के हर शेड के अंदर कई विभिन्न धाराएं एक दूसरे के साथ कभी मिलती तो कभी अप्रत्याशित ढंग से एक दूसरे को काटती हुई सी चलती थी। यहाँ तक कि सलील चौधरी साहब से जब एक बार पूछा गया कि अपने अलावा फिल्म संगीत में किस संगीतकार को वो प्रतिभावान समझते हैं, तो निसंकोच उनका उत्तर था आर डी वर्मा।

0: जब इन धुरंधरों के मैं कहूँ सम्राट जो रहे हैं संगीत के, शब्दों के, एक्टिंग के, जब हम लोग गाने सुनते हैं, देखते हैं, गुनते हैं, तो मालूम पड़ता है कि इन लोगों ने जिंदगी को कितने खिलते हुए से अंदाज में देखा। तो वंदना जी,
1: जी नेहा जी,
0: अचानक से मुझे एहसास हो रहा है कि अब वक्त आ गया है।
1: नहीं, बिल्कुल वक्त आ गया है नेहा जी, लेकिन वक्त के साथ साथ एक बात और भी कहनी है।

0: कि अगर हमने ये जो खूबसूरत सा गीत सुना इसके रचनाकार का नाम नहीं लिया है।
1: हाँ।
0: तो देखिए बहुत ही सरल सादगी से भरपूर जो गीतकार रहे हैं, जिनकी हम हमेशा बात करते हैं नेहा जी, कि जब वो कुछ भी लिखते थे तो सीधे दिल तक वो बात पहुंच जाती थी और हमको कुछ भी उलझाव नजर नहीं आता था कि शब्दों को पहले खोलें, उसके अर्थ को समझें, खंगालें। तो ऐसे गीतकार तो सिर्फ एक ही हुए हैं फिल्म संगीत में, और वो हैं आनंद बख्शी साहब। तो अब चलने की बात नेहा जी।
1: बिल्कुल दोस्तों, आज हम लोगों ने बोलते अनवे कार्यक्रम में प्रकृति की बात की, उससे जुड़ाव की बात की। आपका प्रकृति के साथ किस तरह का जुड़ाव है, लगाव है, हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप हमारा नंबर नोट करिए,
0: 8004926250। तो नेहा जी
1: जी,
0: देखिए जुड़ाव लगाव का ये एहसास आगे भी बरकरार रहेगा हमारा हमारे दोस्तों के साथ। इसी आशा के साथ अब हम लेते हैं दोस्तों से विदा। नमस्कार। बोलते नगमे।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा खास कार्यक्रम बोलते नगमे, वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की थी।
3: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। एक संदेश के बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं कुमार की गीत रचना, रोचक कोहली का संगीत, विशाल मिश्रा और रोचक कोहली की आवाजें, फिल्म का नाम खेल खेल में।

वो चले भी गए तो क्या हुआ, वो चले भी गए तो क्या हुआ, हम तो आज भी वहीं खड़े हैं जहां वो छोड़ गए थे। न सवाल बाकी न जवाब बाकी, न सवाल बाकी न जवाब बाकी, बस एक अधूरी मोहब्बत का हिसाब बाकी।

संतोष आनंद की गीत रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, सुधा मल्होत्रा और अनवर की आवाज़ें इस गाने में आपको सुनने को मिलेंगी। फिल्म प्रेम रोग का गाना है ये।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। पुरवैया बयार ने जब तेरी खुशबू छू ली, पुरवैया बयार ने जब तेरी खुशबू छू ली, मेरे दिल की हर धड़कन ने तेरी आरजू कर ली, हवा के झोंकों में तेरा नाम सुनाई देता है, हवा के झोंकों में तेरा नाम सुनाई देता है, जैसे हर मौसम ने तुझसे मोहब्बत कर ली। पुरवैया चली तो तेरी जुल्फों की याद आई, पुरवैया चली तो तेरी जुल्फों की याद आई, चांदनी ने भी तेरे चेहरे से रोशनी उधार ली। तेरे ख्यालों की महक यूं बसी है सांसों में, तेरे ख्यालों की महक यूं बसी है सांसों में, कि फूलों ने भी तुझसे अपनी रंगत मांग ली।

स्वानंद किरकिरे कबूल, राम संपत का संगीत, श्रेया घोषाल की आवाज़, फिल्म लापता लेडीज का गाना है ये।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं नीरज की गीत रचना, एसडी बर्मन का संगीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें, फिल्म प्रेम पुजारी।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

बाहर की नरम हवाओं ने जब तेरा नाम लिया, बाहर की नरम हवाओं ने जब तेरा नाम लिया, फूलों ने भी मुस्कुराकर मेरा पैगाम दिया। चांदनी रात में जब तारे सजने लगे, चांदनी रात में जब तारे सजने लगे, तेरी यादों के गुलशन मेरे दिल में खिलने लगे। नदी की लहरों में तेरी हंसी की खनक मिली, नदी की लहरों में तेरी हंसी की खनक मिली, पर्वतों की खामोशी में

महकते फूलों ने कानों में ये राज कहा, महकते फूलों ने कानों में ये राज कहा, मोहब्बत वही है जिसमें कुदरत का

समीर की गीत रचना, नदीम श्रवण का संगीत, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें, फिल्म दामनी का दो गाना है ये।

इस गाने के साथ ही आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे अपने साथी उज्जवल सिन्हा के साथ। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपना फीडबैक आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250, यानी 8004926250। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है सबरस। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आप सुनेंगे जगजीत सिंह को।

शफक कहते हैं किरणों को, रेज, और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल।

सबरस कार्यक्रम में अब आपको सुनाने जा रहे हैं हर्ष ब्रह्म भट्ट की रचना भूपेंद्र सिंह की आवाज में।

भूपिंदर सिंह के गाए इस गीत के साथ ही आज का सबरस कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। 8:45 होने वाले हैं समाचार संध्या कुछ ही पलों के बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का

0: हर बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
1: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बैनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश

0: ने अमरीका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
3: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74

0: 1346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
3: ATF price stabilization fund mein,
4: a self-sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
3: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
2: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees, seeks to incentivize owners of trucks and buses registered in the Delhi NCR region that comply with BS4 or earlier emission norms to replace them with BS6 or electric vehicles. Mr. Vaishnav also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradip in Odisha.
3: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जिसका फेज वन आज अप्रूव हुआ है.
4: इन ओडिशा द फेज वन ऑफ द कोस्टल हाईवे वॉज अप्रूव टूडे. इट विल एक्सटेंड फ्रॉम रामेश्वर थ्रू कोणार्क अप टू पारादीप कवरिंग द स्ट्रेच फ्रॉम द सदर्न टिप ऑफ ओडिशा.

0: 21, 22, 20, 21, 15. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Ritwik Agarwal defeated Chinese Taipei's Yang Po Huan and Hu Lingfang. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parameshwar becomes Deputy Chief Minister, while 12 legislators also take oath as cabinet ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खिता मनसूबाबंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली ऋतुव्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डी के शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया है। डॉक्टर जी परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से भी हलफ लिया है। दिल्ली के मालविया नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई है। पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। मौसमियात के महकमे ने कल केरलम और माहे में बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी चीन के वैंग होंग यांग को हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक मर्तबा दी जाने वाली बजट इमदाद के तहत 10,000 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद भारतीय एयरलाइन कंपनियों को उनकी घरेलू और बैन अलाकवामी परवाजों के लिए हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करना है। मगरबी एशिया कशीदगी के सबब ईंधन की कीमत में पैदा होने वाले गैर मामूली अदम इस्तेहकाम के दौरान ये मदद एयरलाइन कंपनियों को ATF की कीमतों को मुस्तहकम करने में मदद की खातिर फराहम की जाएगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये अपने आप में काफी फंड है जो भारतीय तैयारा बरदार कंपनियों को हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मरकजी काबीना ने 9,585 करोड़ रुपए की माली अखराजात के साथ दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने की खातिर कौमी राजधानी खित्ते से मुतालिक मनसूबा बंदी बोर्ड की मदद के लिए एक स्कीम को भी मंजूरी दी है।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
1: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने उड़ीसा के रामेश्वर से पारादीप तक एक नई साहिली शाहरा की तामीर की भी मंजूरी दी है, जिसकी कुल लंबाई 163 किलोमीटर से ज्यादा है।

0: गुज़िश्ता 12 बरसों में हुकूमत ने वसी इस्लाहात के जरिए भारतीय मुतवस्सित तबके को बाख्तियार बनाया है, टैक्स निज़ाम को सहल बनाया, बैंक कारी को मुस्तहकम बनाया और पेंशन निज़ाम ने इस तबके के माली तहफ़्फ़ुज़ को मजीद बेहतर बनाया है। नए टैक्स निज़ाम के तहत 12 लाख रुपए सालाना की आमदनी वाले अफराद को टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया है। इसके अलावा जीएसटी में इस्लाहात के जरिए रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कमी आई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम के तहत करोड़ों अफराद की जिंदगी में नुमाया तब्दीली आई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने कहा कि इस स्कीम से किराए पर रहने वाले अफराद को नुमाया राहत मिली है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं।
0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 हेल्थ कार्ड जारी किए गए जिससे आम लोगों को हिफ्जाने सेहत के शोबे में तहफ्फुज फराहम किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम के तहत जन औषधि केंद्रों पर मयारी जेनरिक दवाएं 50 से 80% कम कीमतों पर दस्तयाब हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बिहार के ब्रह्मदेव ने कहा कि इन केंद्रों पर आम दुकानों के मुकाबले दवाएं निहायत ही किफायती कीमतों पर दस्तयाब हैं।
2: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
0: 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आम आदमी को बाख्तियार बनाने के अमल में एक मजबूत अवामिल साबित हुई है। इस स्कीम के तहत अहल मुस्तफिदीन को अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के कर्जे तकसीम किए जा चुके हैं। जैसे जैसे आमदनी में इजाफा हो रहा है और मौके वसी हो रहे हैं, भारतीय मुतवस्सित तबका मुल्क की तरक्की, उमंग और खुशहाल मुस्तकबिल में फाल रोल अदा कर रहा है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के वजीर आजम के तौर पर लगातार तीसरी बार ओहदा संभालने पर मेटे फ्रेडरिक्सन को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क के दरमियान बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और पायदार मुस्तकबिल के मुश्तरका अज़्म पर मबनी शराकत दारी है। वजीर आजम ने कहा कि वो भारत डेनमार्क ग्रीन कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जनाब फ्रेडरिक्सन के साथ करीबी तौर पर मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। लाओस के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंग सावन फोम विहाने ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों ममालिक के दहरीना सकाफती ताल्लुकात हैं जो बुद्ध मत के मुश्तरका विरसे और रामायण से जाहिर होते हैं। उन्होंने कहा कि सिफारती ताल्लुकात के क्याम के 70वीं सालगिरह का जश्न भारत लाओस दोतरफा ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेलसी एलियोना रॉड्रिग्स कोम्स भारत के 5 रोजा दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं। उमूर खारजा, इक्तिसादियात और खजाना के वजरा और दीगर हुकाम पर मुश्तमिल एक वफ्द भी उनके हमरा भारत तशरीफ लाया है। दौरे के दौरान मोहतरमा रॉड्रिग्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा तबादले ख्याल करेंगी। इस तबादले ख्याल में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के वसी तर पहलुओं का जायजा और तवानाई के तहफ्फुज, तजारत सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, नकलो हमल और काबिले तजदीद तवानाई के शोबों में मजीद तावुन के लिए राह हमवार करना शामिल है। भारतीय कंपनियों ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबे में अहम कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं जिससे दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी तालमेल की अक्कासी होती है। लंका आईओसी पीएलसी ने सापू गासकांडा पावर स्टेशन के प्लांट ए फॉर 2026-27 के लिए 3,16,000 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने का 392.47 मिलियन श्रीलंकाई रुपये की मालियत का ठेका हासिल किया है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने केरलम और माहे में बहुत तेज बारिश के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अंडमान और निकोबार जजायर और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन के दौरान बहुत तेज बारिश की पेशगोई है। महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के वैंग होंग यांग को हराकर शानदार वापसी की है। मिक्स डबल्स मुकाबले में भी भारत के रोहन को

कपूर और ऋत्विका गाडे की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को हराकर एक और जीत दर्ज की है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खत्ता मनसूबा बंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली रीता ब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। डॉक्टर जी राम परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से हलफ लिया। दिल्ली के मालविया नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मानसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
2: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मानसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकी से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको है फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
1: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए, क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि उत्तरी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी तो कौन कौन सी स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय।

0: है, जहाँ तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और आईसीएआर इंस्टीट्यूट हैं जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से किसान कॉल सेंटर 24 आवर काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए। और पानी की जो फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपने मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद है, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कम्पोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कम्पोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पर हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम उपयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलकर क्योंकि काम कर रहे हैं, इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर आईसीएआर इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के दो दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हरास नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मॉनसून का औसत तो ठीक रहता है लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है, इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
2: मॉनसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मॉनसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, जिसमें प्लस माइनस 4% की त्रुटि हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का, उसमें यह है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वही मध्य भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का उससे कम वर्षा रहने की संभावना है, उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से चारों महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके वजह से कई बार फ्लड की सिचुएशन भी देखने को मिलती है, कई बार मानसून ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत

0: मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में दो बार जो अगले 5 दिनों का विवरण किया जाता है। इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है, जिसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो इसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जाए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
2: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट सकते हैं। जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ, तो उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं। उनकी कोशिश होती जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पर बांध बने हुए हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो, और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृत्रिम क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही, अगर धान की सब क्षेत्र नीचे है जिसमें पानी खड़ा होता है तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ, क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें डायरेक्ट सीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकालनी है जिसमें 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30-35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए और जहां पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्थाओं पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए, खासकर जब आपने दक्षिण भाग की बात या मध्य भाग की बात की जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग 1 हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं और किसान को सही समय पर सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए

0: यूज कर रही है
1: जी
0: और किसी कृषि वैज्ञानिक गांव में जा रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है। और
1: बिल्कुल
0: तो वो हमारे प्रयास रहेगी, किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें। मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: जी,
0: करती है,
1: बिल्कुल
0: खास कर
1: रवाज जी,
0: सब्जी और
1: बिल्कुल सही
0: फलों
1: कह
0: में,
1: रहे हैं
0: तो
1: आप
0: उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं।
1: जी।
0: और मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी तौर के तौर पे और उसमें हमारे सक्षम है, और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
0: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है। भारतवर्ष के कहे या अगर सौर ग्रह रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं उन प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है, उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है। इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी एल नीनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो है कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें ये भी समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशन होती है तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर देखें, एक अगर जनरली हम बात करें उसके बारे में, तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है। जबकि एल नीनो कंडीशन यानी कि जो समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए निगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत बृहद सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एल नीनो सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मॉनसून को प्रभावित करते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मॉनसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एल नीनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मॉनसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मॉनसून का सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एल नीनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशंस से एल नीनो की वीक कंडीशंस की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मॉनसून के दौरान एल नीनो कंडीशंस जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है। यानी कि मॉनसून के दौरान एल नीनो कंडीशंस जो है वो डेवलप हो सकती है, प्रशांत महासागर में समुद्र की जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा, और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए यह भी कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यावहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
0: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, इनको तो मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ पोषक तत्व तो ऐसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

0: जिससे कि उनको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम जब बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है, क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमार भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है, और साथ साथ में हमारी मिट्टी का अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है, खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30 से 35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका तो विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है, और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक पाल साल में वार मार रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें, और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराए नहीं। और हमें अपने किसान पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, और आपका जो विस्तार तंत्र है, खासकर मास मीडिया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और साथ में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का, हम इसकी सूचनाओं का, जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह से उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है, और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
2: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है, वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर लेते ह्यूमिडिटी है तो रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरनमेंट की कंडीशन होती है, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसका एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाए रखे।
1: जी डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मानसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है।
0: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है, तो सपनों वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सभी संसाधन होने चाहिए, तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार

0: करने लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान, बासमती धान में आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है। क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है, और गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई है जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके। जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ काफी आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले को सक्षम कर सकते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है, और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है। जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है। और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करें। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं, बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है, जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
2: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में अगर आप पूरे वैश्विक पर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में जो रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रेजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान दिया जा रहा है।
1: जी।
2: इसके साथ साथ में AI का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और AI ML को यूज करके, यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा।
1: जी हाँ बिल्कुल, मानसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मानसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत

0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। चर्चा का विषय है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं सैनिक फिल्म का युगल गीत कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में।

मिलन की रात थी, चांद भी मुस्कुरा रहा था। तेरी बाहों का साया दिल को सुकून दे रहा था। बरसों की तन्हाई का सफर नहीं थम गया, बरसों की तन्हाई का सफर नहीं थम गया जब तू मेरे करीब आया।

मजरू की गीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर फिल्म का नाम पत्थर के सनम

तेरे मिलने से ज़िंदगी में बहार आ गई, तेरे मिलने से ज़िंदगी में बहार आ गई, सोनी राहों में जैसे खुशबू बिखर गई। जिस पल हर नज़र से नज़र का पैगाम आया, जिस पल नज़र से नज़र का पैगाम आया, उसी पल दिल को अपने मुकाम का एहसास हुआ।

समीर की गीत रचना नदीम शरण का संगीत, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें, फिल्म जीत का युगल गीत है ये।

मिलन की घड़ी में वक्त भी ठहर जाता है, मिलन की घड़ी में वक्त भी ठहर जाता है, दो दिलों का फासला पल भर में मिट जाता है। लब खामोश रहें तो भी बातें हो जाती हैं, लब खामोश रहें तो भी बातें हो जाती हैं, मोहब्बत की राहों में रातें भी रोशन हो जाती हैं।

गुलशन बावरा की गीत रचना सोनिक ओमी का संगीत मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर फिल्म का नाम उमर कैद

आनंद बख्शी की गीत रचना कल्याण आनंद जी का संगीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वर। फिल्म का नाम आमने सामने।

तेरे संग मिलन का ऐसा असर हुआ, तेरे संग मिलन का ऐसा असर हुआ, हर ख्वाब हकीकत का सफ़र हुआ। अब न कोई दूरी है न कोई इंतज़ार, तेरी मोहब्बत ने मिला है मुझे पूरा संसार।

अब फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त उज्जवल सिन्हा को इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक आप हमें दे सकते हैं व्हाट्सएप पर, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बांसुरी पर बजाया राग यमन, वादक कलाकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया।

राग यमन में बांसुरी वादन अभी आपने सुना। वादक कलाकार थे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया।

0: as Wang Hong Yang. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Ritvika Gadde defeated Chinese therapies Yang Fu Swan and Hu Ling Fang. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 11:10 में हैं ये सभा संपन्न होती है।